0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: रुचि त्रिवेदी जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, गृहस्थ जीवन में रहते हुए परिकर के प्रत्येक सदस्य के साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन पारिवारिक जनों को संतुष्ट नहीं कर पाती, जिससे मेरा भजन में वो बाधा उत्पन्न होती है। गुरुदेव कृपा मार्गदर्शन करें, मैं अब क्या करूं?
3: उसे कई बार चर्चा की है कि हम असंतुष्ट तभी होते हैं जब हम अपने कर्तव्य को भूलकर सामने वाले के कर्तव्य को देखने लगते हैं। हमारी असंतुष्टता का कारण कहीं ना कहीं हमारी कामना होती है। बड़ा सूक्ष्म ये विषय है कि आप हमारे पति, आपका हमारे प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? आप हमारे अमुख हैं, आपका हमारे प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? वहां हम असंतुष्ट होंगे, और जब हम केवल अपने कर्तव्य को देखेंगे तब हमें कोई असंतुष्ट कर ही नहीं सकता सृष्टि में। जैसे
4: ये हमारे पति, हमारे पति जैसा भी व्यवहार करे, पर मैं इनकी पत्नी हूं, मेरा क्या कर्तव्य? आप निकल जाओगे, कोई आपको द्वंद में नहीं फंसा पाएगा।
3: आप एक व्यक्त संत हैं, आपका क्या कर्तव्य? सब में भगवत बुद्धि देखना, तो हमारा ये सूत्र हमको बचा लेगा। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण मयम जगत, हे सावधान, हे क्रूरापि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यास्य सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। चाहे वो क्रूरता करे, चाहे पाप आचरण करे, चाहे दुष्टता करे, ये बाहरी यंत्र है, आंतरिक जो परम कारण है वो आराध्य देव बैठे हुए हैं, और ये हम देखने के लिए निकले हैं। हमारा मार्ग क्या है? सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरा आराध्य देव विविध रूपों में, कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई हमें अशांत नहीं कर सकता। हम तभी दुखी अशांत होंगे जब हम शास्त्र वाक्य गुरु वाक्य से गिर जाएंगे। पक्का त्रिभुवन में कोई पैदा ही नहीं हुआ दुख देने वाला, अशांति पैदा करने वाला। हमारी वृत्ति ही हमको अशांत करती है। हम सबको संतुष्ट करने के लिए नहीं निकले, अपने आचार्य और गुरुदेव को संतुष्ट करने के लिए हम उपासना कर रहे हैं। उनका हर वाक्य हम व्यवहार में वैसे उतारें जैसे वो करें, खत्म खेल। अगर आप अपनी राग द्वेष की वृत्ति के अनुसार आरोप करके असंतुष्ट हो रहे हैं, उसमें हमें कुछ नहीं। हमारे द्वारा कोई ऐसा आचरण ना बने तो हमारा हृदय आनंदित रहेगा। आप जो सोचो सोचते रहो, वो आपकी वृत्ति है ना जो आपको दुख दे रहे। हमारी वृत्ति कारण आपको दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तो अब गृहस्थ धर्म में माता पिता सास ससुर भाई भांजे विविध रिश्ते नाते आए हुए अतिथि अगर सही ढंग से कर्तव्य निर्वाह कर ले जाए तो जो एक यति को प्राप्त होती गति वही एक गृहस्थ को प्राप्त होती, बिल्कुल अंतर नहीं होगा। पर गृह कारज नाना जंजाला त्येति दुर्गम सहल विशाला, बड़ा कठिन होता है ना, क्योंकि जैसे आप व्यवहार सदव्यवहार कर रहे हैं, उनको सुख पहुंचा रहे हैं और वो कट वचन बोल रहे हैं,

काली चादर में कोई रंग नहीं, वो अपना ही रंग रहता है। जो पापा चरण में अनुराग रखते हैं उनको तो इन सब बातों से मतलब ही नहीं है। जो थोड़ा सतमार्ग में चलते हैं, थोड़ा धर्म से चलते हैं, उनके लिए बातें हैं। तो हमें लगता है कि हम केवल अपने कर्तव्य का ही चिंतन करें, उनका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है ये चिंतन करने पर हमें दुख पहुंच सकता है। कोई शिष्य है वो अभद्र व्यवहार कर रहा है, चाह रहे हैं कि सतमार्ग में चले, नहीं मान रहा है। अब इसी सूत्र को देखो प्रभु, आपका और हमारा संबंध गुरु शिष्य का है। हम आपसे एक बार शिक्षा रूप में निवेदन करते हैं, आपको ऐसे आप जो मार्ग से वो ठीक नहीं है, बस इसके बाद तुरंत भगवत बुद्धि। अगर शिष्य बुद्धि रही तो गए, कोई शिष्य नहीं, कोई गुरु नहीं, वही गुरु वही शिष्य वही खेल हो रहा है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। किसके लिए है ये? अपने लिए है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, किसके लिए? अपने परमार्थ के लिए है। तो फिर चेला कौन हुआ? बस स्वांग दिया गया है जिसको, वो स्वांग निर्वाह कर लो। स्वांग है सत्य नहीं, सत्य तो एक ही परम वस्तु है, न कोई अधम है, न कोई उच्च है, न कोई जड़ है, न कोई चैतन्य है, वही एक है भगवान। इसलिए बहुत जन्मों की साधना के बाद ये अनुभव होता है कि समस्त जगत भगवान वासुदेव है। बहु नाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवाश्रमित समात्मा सुदृढ़। ये बात और ये बहुत जन्म हमारे हो गए, हमें इंतजार नहीं करना है। बहुत जन्मों के बाद तो मनुष्य जन्म मिला है, हो गए बहुत जन्म। बात समझनी है, मान लो तो जान जाओगे। ज्ञान मार्ग में जान करके मानना और भक्ति मार्ग में मान के जानना बहुत सरल है। मान लिया और वही है। देखो मानने पर ऐसे चरित्र देखे गए कि न भगवान का श्री विग्रह है, न कोई शालिग्राम है, पत्थर का टुकड़ा दे दिया, भांग बांटने का सिल दे दिया, उससे मुरली मनोहर ठाकुर प्रकट हो गए। कहो सो कहा जा प्रभु ने, मान लिया ना कि मेरे गुरुदेव ने दिया, ये मेरे भगवान है। सिलपिल्ले बाई का चरित्र आता है, धन्ना जी का चरित्र आता है, मान ले तो मान लो आपके पति साक्षात भगवान है, आपके सास ससुर में भगवान है, आपके बेटे के रूप में वात्सल्य सुख पाने के लिए भगवान आए है, अब समस्या ही नहीं। हमें सेवा भाव करना है उनके प्रति, उनसे हमें अपनी अनुकूलता की चाह नहीं करनी, सिद्ध पुरुष का लक्षण है। अब यही तो साधना है इसे। अब फिर मनमानी आचरण चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दुर्गति भोगनी पड़ेगी। ये गृहस्थी विरक्ति से कोई नहीं बचता, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। निरंतर परमार्थ के पथिकों की वाणी सुनता रहे, एक नई ऊर्जा शक्ति मिलती है। भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों से एक अद्भुत सामर्थ्य जागृत होती है। मतलब जो बड़े बड़े व्रत नियम तप तीर्थ याटन और धर्मानुष्ठान से नहीं हो सकता, वो भगवत प्रेमी महात्माओं के क्षण मात्र वचन से हो सकता है। बस उसे, क्योंकि सर्वसंगो पहो हिमा, खास बात क्या होती है? भगवान ने जो बताया, वृतांत यज्ञ छंदान से तीर्था नियमा यमा यथा वरुण धीत सत्संगा सर्वसंगो पहो हिमा, उस सर्वसंगों का त्याग कराने की सामर्थ्य होती है। अर्थात जो सर्व शब्द है वो माया में है, एक ही है, उस सर्व रूप में भास रहा है, यही सर्वसंगों का त्याग हो जाएगा। एक चरण रास चित्त मनंत ही से युंजीत तद व्रतिसु साधुश्चेत प्रसंगा। चौधरी जी कह रहे हैं जिसकी चित्त की वृत्ति एकाकार प्रभु में हो गई, संग तो बोध संपन्न तद व्रतेशु, भगवत व्रत धारण करने वाले प्रेमी महात्माओं का संग, नहीं तो असंगो हम, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, सूत्र तो सूत्र है, बस जीत गया निकल जाएगा। जैसे कहते ना कि हम नाम जप करेंगे और काम कोई नहीं करेंगे, एक तो निषेध ही नहीं किया गया आपकी क्रियाओं के कर्म के लिए, कहीं निषेध नहीं किया गया। भगवान तो कह रहे मामनुष्मर युद्ध च, तो निषेध तो किया नहीं गया। अगर नाम जप करते हुए कार्य करोगे तो उसका जो फल मिलेगा तुम्हें वो होगी क्षमता, वो लाभ हानि नहीं होगी, समता मिलेगी। जो कर्मयोग का फल है वो समत्व है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया। ये जो है यही परम धन है। अब आप पूरे विश्व का

0: शासन भी कर सकते हो, विश्व का भरण पोषण की सेवा भी कर सकते हो, लेकिन आप में अहंकार नहीं आएगा और कोई भी दुख द्वंद स्पर्श नहीं कर पाएगा। यही कला सीखनी। मान लिया जाता है ना कि हम गृहस्थ हैं, हमारे लोग 5-7 लोग 8 लोग हैं, तो आप देखो संतों के पास हजारों लोग हैं जो अपना सब सर्वस्व त्याग कर उनके संरक्षण में भगवदीय स्थिति प्राप्त करते हैं, भगवत वार्ता भगवत चिंतन में निमग्न रहते हैं। तो वस्त्र कपड़ा लत्ता बिजली जिसके लिए तुम जी कर नाना प्रकार के प्रयासरत हो, अनायास वो सब पूर्ति हो रही नहीं हो रही, मतलब आश्चर्यमय। आप तो पीछे से भी देखे हैं और यहां भी देख रहे, आश्चर्य में प्रभु का विधान होता है, सर्वाश्चर्य में चुकी है ना, आश्चर्य वही आपके ऊपर भी है। पर जितना आप अहम रखेंगे उतना उस विधान से अपरिचित रहेंगे, और जितना आम समर्पण होता रहेगा उतना ही आप उसके विधान का परिचय प्राप्त कर पाएंगे। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह। निश्चिंत हम न गृहस्थ है न विरक्त हैं, भगवान के निजंश उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। भरोसो दृढ़ इन चरणन, दृढ़ भरोसा और नाम जप त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लूंगे। चाहे जो हो आप, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, मूर्ख हो विद्वान हो पवित्र हो अपवित्र, भगवत आश्रय में जितनी पवित्रता उतना किसी तीर्थ में पवित्रता नहीं। हृदय से आप स्वीकार किए, हे नाथ मैं आपका, ये महामंत्र ये जितना पवित्र है इतना पवित्र और कुछ है ही नहीं, बात समझना। क्योंकि ये सत्य वस्तु है, जो मेरा स्वरूप है वो अमल है, कभी मलिन हो ही नहीं सकता, उसकी विस्मृति ही सबसे बड़ा मल है। ये चेतन अमल सहज सुखराज, तो जहां अपने अंशी का आश्रय जो है उसे स्वीकार किया तो आप पवित्र होने लगे। और नाम, नाम से बढ़कर कोई पवित्र नहीं। अपवित्र पवित्रो वह सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर सुचि। पर उसको मतलब लोक में ऐसा समझते हैं, बोले जल ले छिड़क ले पवित्र हो गए, बात उसकी समझो, मंत्र क्या कह रहा है। तुम अपवित्र हो या पवित्र हो, जिस समय कमल नयन अरविंदाक्ष भगवान श्री हरि का स्मरण किया तुम बाहर और भीतर से पवित्र हो गए। नाम जब चल रहा और भगवत आश्रय है, अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ निष्ठा है, वो गृहस्थ हो या विरक्त हो वो परम पद का अधिकारी हो गया। इसके अलावा फिर तो सब प्रपंच ही है, हमने तो इतना किया उसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसी में फंसाए माया। माया का काम है भगवत विस्मरण करा करके राग द्वेष की वृत्तियों का जाल बुनकर समय नष्ट करना। चतुर वही है विवेक की कैंची से पटाख से काटे, राधा राधा राधा, समय नहीं तेरे विचार करने का। अब वही होगा जो प्रभु ने विधान कर रखा है, कर्तव्य हम कर रहे हैं, परिणाम की चिंता नहीं, राधा राधा राधा मंगलमय हो जाएगा।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टेबलेट इंजेक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज और गठिया टीका पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासिक खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंता और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
6: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 90977062।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
9: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
10: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
10: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
10: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 84710309 या 9765065750।

राम की रट लगाते हुए दशरथ जी उस पक्षी की भांति बेहाल हो रहे हैं जिसके पंख काट दिए गए हों। वो मन ही मन कामना कर रहे हैं कि किसी प्रकार सवेरा न हो और इस वज्राघात का संदेश राम तक न पहुंचे। किंतु प्रकृति के कार्यकलाप भला किस भांति रुक सकते हैं। राजा के विलाप करते करते सवेरा हो गया और नित्य की भांति राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख ध्वनि होने लगी। भाटों द्वारा विरुदावली और गवैयों के गायन की ध्वनि दशरथ जी के हृदय में बाण की भांति मर्मांतक पीड़ा देने लगी। राजद्वार पर मंत्रियों तथा सेवकों का समूह महाराज के अब तक न जगने से चकित विस्मित हो रहा है। महल में भयानक शांति छाई देखकर मंत्री सुमंत्र अंदर प्रवेश करने में डर रहे हैं। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। अंत में असमंजस छोड़ वे उस महल में गए जहां कैकेयी और महाराज थे। दशरथ जी की दशा देख वे स्तब्ध रह गए। मुखमंडल का रंग उड़ा हुआ, सोच से व्याकुल राजा यूं पड़े थे जैसे जल से उखड़ कर कमल धरती पर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत्र को कुछ पूछते न बन पड़ा। तब कैकेयी ने अशुभ संदेश सुनाया कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया किंतु इसका भेद नहीं बताते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब समाचार पूछना। किसी कुचक्र की आशंका से ग्रस्त सुमंत्र श्री राम के महल की ओर चले।

मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्री राम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्री राम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे, मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने, जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी, बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भारत राज्य पाएंगे ये तो मेरा परम सौभाग्य है।

कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातः काल कैकई का आदेश पाकर सुमंत्र श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुई और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथे पन में अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाएं। अवधरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं,
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
11: Studio 5, an Islamic record label. For more updates, subscribe channel and press bell icon. So

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
0: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
0: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
0: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
0: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
7: खाली डब्बा खाली बोतल।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
6: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अवैध अस्पतालों पर जिला प्रशासन ने की छापेमारी। नीट की परीक्षा को लेकर जोर शोर से चल रही है तैयारी, जिला पदाधिकारी ने की बैठक। 4 गुमशुदा किशोरियों को दिल्ली और लखनऊ से पुलिस ने किया बरामद। वन स्टॉप सेंटर पर जिला पदाधिकारी ने की कड़ी कार्रवाई। और पशु तस्करों को पुलिस ने दबोचा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कुचायकोट प्रखंड क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और जांच केंद्रों तथा कथित फर्जी चिकित्सकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुशांत कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने प्रखंड मुख्यालय स्थित करीब आधा दर्जन निजी अस्पतालों एवं क्लिनिकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्याम सुंदर कुमार भी मौजूद रहे। निरीक्षण की सूचना पहले ही फैल जाने के कारण अधिकांश निजी अस्पताल संचालक अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर मौके से गायब हो गए थे। वहीं जो अस्पताल और क्लिनिक खुले मिले, वहां अधिकारियों ने पहुंचकर पंजीकरण संचालन संबंधित दस्तावेजों तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों की जांच की। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों की संचालन व्यवस्था और अभिलेखों की उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी जुटाई गई। इधर जांच के बाद स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यदि कहीं कोई संचालक जांच में सहयोग नहीं करता है अथवा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराता है तो जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि लंबे समय से कुचायकोट क्षेत्र में अवैध अस्पतालों, जांच केंद्रों और बिना मान्यता प्राप्त चिकित्सकों द्वारा इलाज के नाम पर लोगों से धन वसूली करने की शिकायत मिल रही थी। आरोप है कि कुछ लोग अपने प्रतिष्ठानों पर बड़ी बड़ी चिकित्सकीय डिग्रियां भी प्रदर्शित कर मरीजों को भ्रमित कर रहे थे, जबकि उनके पास वैध प्रमाण पत्र नहीं है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद प्रखंड मुख्यालय सहित आसपास के बाजारों में और अस्पताल संचालकों तथा कथित फर्जी चिकित्सकों के बीच हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आगामी नीट परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बैठक की। उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक के दौरान संबंधित विभिन्न प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने, अभ्यर्थियों को सुगम एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने तथा परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने जिले में संचालित वन स्टॉप सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि जिला पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण की मांग की थी। इस पर श्रम बल प्रदाता एजेंसी प्रनेजा एनवायरो केयर एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को जारी कार्यादेश रद्द कर दिया गया है और महिला हेल्पलाइन वन स्टॉप सेंटर की परियोजना प्रबंधक नाजिया मुमताज तथा जिला मिशन समन्वयक सुबोध कांत सिंह की संविदा भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। बताया बताया जा रहा है कि जिला पदाधिकारी ने जांच किया था, जिसमें पलना घर के संचालन पर सरकारी राशि तो खर्च की जा रही थी, पर वहां एक भी बच्चा पंजीकृत नहीं था। इसके बावजूद केयर वर्कर और सहायक केयर वर्कर की नियुक्ति, मानदेय, भुगतान और संचालन संबंधित प्रक्रियाएं कागजों पर चल रही थी। जांच में मिली गड़बड़ी के बाद अब इनके लाइसेंस को रद्द किया गया और वहीं इसमें तैनात दो पदाधिकारियों के संविदा को भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। जिला पदाधिकारी ने इसमें और भी गहराई से जांच कर आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। नगर थाना क्षेत्र से चार किशोरियों के गायब होने की सूचना नगर थाना की पुलिस को मिली थी। पुलिस ने त्वरित संज्ञान लिया और इस मामले में आवश्यक जांच पड़ताल करते हुए मानवीय और तकनीकी टीम का गठन किया गया, जिसमें आसूचना संकलन और अन्य तकनीकी सूत्रों से जानकारी करते हुए पुलिस ने तीन किशोरियों को दिल्ली से सकुशल बरामद किया और एक किशोरी को लखनऊ से बरामद किया गया। चारों किशोरियों को सकुशल आज गोपालगंज लाकर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से इनके बयान दर्ज कराने के बाद इनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। इस दौरान गोपालगंज पुलिस ने जनता से अपील किया है कि बच्चों एवं किशोर किशोरियों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखें तथा किसी भी संदिग्ध परिस्थिति की सूचना तत्काल निकटतम थाना या पुलिस हेल्पलाइन नंबर 90-318-27-299 पर दें। पुलिस अधीक्षक ने भी लोगों से अपील किया है कि लोग अपने बच्चों पर विशेष नजर बनाए रखें, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे कई तरीके के गलत स्टेप उठा लेते हैं, जिनसे परिजन और प्रशासन सबको परेशानी होती है। इसलिए अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी बनाए रखें, बच्चों को आवश्यक सुझाव देते रहें और बच्चों से बातचीत करते रहें, ताकि बच्चों की सभी गतिविधियों की जानकारी समय पर आपको मिलती रहे। इधर बैकुंठपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ी मोड़ के पास एक पिकअप वाहन से अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान 10 मवेशियों को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने इस घटना में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, बताया जा रहा है कि वह अपना नाम सद्दाम हुसैन बताया है, जो सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र के बेलौर गांव के मियां तलब मियां का पुत्र है। पुलिस ने इसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है और 10 मवेशी तथा उसकी पिकअप गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर आरोपी गाड़ी लेकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़ कर इसको पकड़ा और गाड़ी तथा मवेशियों को जब्त कर अब आरोपी पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। माझा थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह आरोपी पिछले साल से ही फरार चल रहा था। पकड़े गए आरोपी का नाम पिंटू शाह, पिता विसर्जन शाह, जो माझा के भोजपुरवा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इसको गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना और निष्पादन के लिए आवश्यक पदाधिकारियों को निर्देशित किए। प्रत्येक दिन पुलिस अधीक्षक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने कार्यालय में लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का निपटारा करने का प्रयास भी कर रहे हैं। आज उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी 403 पैकेट बंटी बबली शराब के साथ एक ई रिक्शा को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने यह कार्रवाई विशंभरपुर थाना क्षेत्र के सीसवा टोला में की, जिसके बाद चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। शराब और ई रिक्शा को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही उत्पाद पुलिस ने विशंभरपुर के विनोद मटिहिनिया में भी कार्रवाई की। यहां 15 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया आरोपी संजय कुमार परशुराम प्रसाद बताया जा रहा है। यह अहिरौली दान थाना तरया सुजान कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले परशुराम प्रसाद का पुत्र है। गिरफ्तार आरोपी के पास से मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। अब इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कटिया पुलिस ने कल्याणपुर गांव में हुई मारपीट से संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर ली है। बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है और खूनी संघर्ष हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराई। इस संबंध में दोनों पक्षों ने कटिया थाने में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब इस मामले में पुलिस ने दोनों आवेदन पर केस दर्ज किया है। साथ ही एक पक्ष से नामजद आरोपी राम अवध भगत पिता जमुना भगत और शास्त्री भगत पिता राम अवध भगत को गिरफ्तार किया है और दूसरे पक्ष से नामजद अभियुक्त लक्ष्मी शाह पिता स्वर्गीय विश्वकर्मा शाह तथा एक विधि विरुद्ध बालक को पुलिस ने पकड़ा है। अब इन चारों पर पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने भी शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे दो प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 18 लीटर देशी शराब भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी सुनील सिंह पिता स्वर्गीय कृष्णा सिंह साकिन सरया वार्ड नंबर 13 राजवाही कॉलोनी थाना नगर को गिरफ्तार किया गया है और उसके घर से विधिवत पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के बाद एक दूसरे मामले में आरोपी राजन कुमार पिता लुहेली बीन साकिन सासामुसा बिन टोली थाना कुचायकोट को भी गिरफ्तार किया है। इसके पास से 18 लीटर देशी शराब मिली है। इन दोनों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कुचायकोट पुलिस ने हत्या के प्रयास में भी फरार चल रहे चार प्राथमिकी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसमें एक आरोपी अशोक प्रसाद, दूसरा शैलेंद्र प्रसाद, ये दोनों विष्णु प्रसाद के पुत्र हैं और ऋतिक कुमार ये अशोक प्रसाद का पुत्र है और एक महिला भी इनके साथ पकड़ी गई है। ये सभी आरोपी मतिया टोला गुमान राय के निवासी हैं। कुचायकोट पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना के द्वारा बिहार के गया जी जिले के टनकुप्पा प्रखंड अंतर्गत गजाधरपुर एवं बरसौना गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य किसानों के बीच टिकाऊ कृषि पद्धतियों, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक डॉक्टर मणि भूषण एवं वैज्ञानिक डॉक्टर घोष अली द्वारा तथा कृषि विज्ञान केंद्र गया के डॉक्टर अशोक कुमार ने किसानों को संतुलित एवं विवेकपूर्ण उर्वरक उपयोग, एकीकृत पोषण तत्व प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व और वैज्ञानिक तरीके से मृदा नमूना संग्रहण, हरी खाद के उपयोग तथा रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अवैध अस्पतालों पर जिला प्रशासन ने की छापेमारी। नीट की परीक्षा को लेकर जोर शोर से चल रही है तैयारी, जिला पदाधिकारी ने की बैठक। चार गुमशुदा किशोरियों को दिल्ली और लखनऊ से पुलिस ने किया बरामद। वन स्टॉप सेंटर पर जिला पदाधिकारी ने की कड़ी कार्रवाई और पशु तस्करों को पुलिस ने दबोचा। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे ने कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने राजसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
12: ठक ठक
13: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा मिला ही नहीं
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
13: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
14: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
15: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
16: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
17: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
18: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395-651 या 97-0-97-06-575।
19: ये है मेरी कहानी।
20: बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां आप कहां से आए हो, किस जाति के हो, किस धर्म को मानते हो, कितने पढ़े लिखे हो, ये सारी बातें मायने नहीं रखती। कई बार तो फैमिली बैकग्राउंड और स्टार पेरेंट्स भी काम नहीं आते। यहां बात बनती है तो सिर्फ टैलेंट से, पहचान बनती है तो सिर्फ यादगार काम से, और शायद इसीलिए ही हजारों लाखों लोग पूरे विश्वास के साथ यहाँ मेहनत करते हैं कई सालों तक, ये मानकर कि अगर उनमें कोई भी काबिलियत है तो यहाँ जरूर कुछ न कुछ बात बन जाएगी। और ऐसे हर टैलेंटेड स्ट्रगलर की इंस्पिरेशन होते हैं इसी रास्ते पर चलकर खुद को साबित कर चुके कुछ स्टार्स, जैसे कि चंपारण बिहार के एक छोटे से कस्बे से आए हमारे आज के मेहमान मनोज बाजपाई।
21: आसमान में थूकने वालों को ये नहीं पता कि पलट के थूक उन्हीं के ऊपर गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। मैं मनोज बाजपाई ऑन।
20: आइए जानते हैं मनोज की कहानी में फिल्में कहां से और कैसे आईं, किन फिल्मों और किरदारों ने उनके बचपन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया।
22: हमारे शहर में पुरानी फिल्में ही अफोर्ड कर पाता था सिनेमा हॉल वाला, कम पैसे पे लेके आ जाता था वो। नई फिल्म अमित जी की फिल्म जो है वो बहुत महंगी आती थी, तो लेके जल्दी आता नहीं था जब तक पुरानी नहीं हो जाती थी। तो साहेबी भी गुलाम चल रही होती थी और कई बार जाके देख लेता था मैं। मतलब मेरे हिसाब से उस तरह की कहानी अभी आनी बाकी है, उस तरह का जो इतने सारे किरदार है उन सबके बीच की जो रिश्ते हैं वो अभी हिंदुस्तानी सिनेमा पर अभी तक आया नहीं है। उसके बाद
23: सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है।
22: आप पसंद, मतलब जब हम बड़े हो रहे थे अमित जी की फिल्म देखी बचपन में, और वही फिल्म थी जिसने दिमाग पे ऐसा छाप छोड़ा था कि लगा था कि एक्टर ही बनना चाहिए, तो और उसका उसी का ये डायलॉग है और हमेशा याद आता रहता है।
24: मैं फिर से जंजीर का सुनाना चाहूंगा, क्योंकि उस वक्त का विजय अब बदल चुका है। उस वक्त का विजय अब ईमानदार होने के लिए कई सारी बेईमानियां भी करता है, उस वक्त का विजय अब झूठ भी बोलता है, लेकिन अब ईमानदार होने की परिभाषा बदल चुकी है, तो इस वक्त के विजय को देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। पुराने डायरेक्टर्स में राज कपूर बहुत ज्यादा, एक्चुअली मुझे लगता है कि इतने अलग अलग तरीके के किरदार, अलग एकदम समाज के सारे चरित्र चित्रण ऊपर सामने लेके आ जाते थे और उसको मेन स्ट्रीम कर देते थे। वो काबिलियत जो है वो राज कपूर साहब में थी। आवारा कोई अगर आज भी बनाए तो ये नहीं कह सकता है कि मेन स्ट्रीम सक्सेसफुल फिल्म होगी, लेकिन वो राज कपूर साहब का अपना जादू था, अपनी समझ थी, उनकी काबिलियत थी। या कोई भी फिल्म आग ही ले लो आप, मतलब कोई भी फिल्म ले लीजिए आप, प्रेम रोग जैसी फिल्म ले लीजिए जो कि उनके जीवन के सबसे बाद की फिल्म है, बाल विवाह पे उससे बढ़िया फिल्म कोई बनी ही नहीं है।
19: ये है मेरी कहानी।
20: इन अ वे वो अमिताभ बच्चन साहब से ही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए एक्टर बनने के लिए। आइए जानते हैं कि डाई हार्ड अमिताभ फैन से अब उनके को एक्टर बनने का ये सफर कैसा रहा उनके लिए।
24: सिवाय अमिताभ बच्चन के और कोई ख्वाहिश ही नहीं थी, और मिले भी तो ऐसे जैसे कि उस समय में अंदर सत्या फिल्म की का ट्रायल चल रहा था अमित जी के लिए, और का परिवार पूरा परिवार देख रहा था, और बाहर मैं गाड़ी में बैठा हुआ था राम गोपाल वर्मा जी के साथ, और इंतजार कर रहा था कि शो खत्म हो। ये कभी भी प्लानिंग नहीं थी कि मैं सामने जाऊंगा, क्योंकि सामने उनके जाते हुए मुझे मैं बहुत ही डर रहा था। और अचानक शो खत्म हुआ और राम गोपाल वर्मा और खालिद मोहम्मद जो बहुत बड़े क्रिटिक थे वो लोग खींच के मुझे ले गए, और मैं एक हाथ छुड़ा के भाग गया और टॉयलेट में जाके छुप गया। और मैं बाहर निकला तो अचानक से सामने अभिषेक आके खड़े हो गए, और अभिषेक को मैं देख रहा था, बात कर रहा था, अभिषेक की बातें सुन रहा था, तभी अचानक एक लंबा आदमी उनके बगल में आके खड़ा हो गया, और वो मेरे हाथ को पकड़ करके कुछ बोलने लगा। और मैं उस व्यक्ति को देख रहा था और मैं समझ ही नहीं पाया कि वो आदमी बोल क्या रहा है। मेरे लिए दुनिया एकदम फ्रीज कर गई थी। वो अमिताभ बच्चन थे। तो उनसे मिलना बड़ा करिश्माई रहा और बहुत ही यादगार भी रहा, क्योंकि जिस व्यक्ति को हमने बचपन से आइडलाइज किया हो वो अचानक से सामने आके खड़ा हो जाए तो कैसा लगेगा, ऐसा ही कुछ हुआ था।
0: तो कुछ मायनों में जो है मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि कुछ एक चीज तो अमित जी ने की जो पहली बार मेरे सामने की है। अक्स की शूटिंग के दौरान ही पहली बार जो है टेलीविजन पे अमित जी जा रहे थे, और तो हमेशा बातचीत ये करते रहते थे कि कैसे उस शो को करेंगे, कैसे अप्रोच करना चाहते हैं। तो एक जद्दोजहद जो उस समय की मुझे बहुत अच्छे ढंग से याद है कि राकेश मेहरा से कभी बात करते थे, कभी हम लोग बैठे होते थे साथ में तो हमेशा इसका जिक्र छिड़ जाता था कि कैसे टेलीविजन को अप्रोच करेंगे। लेकिन कौन जानता था कि वो एक कल्ट टेलीविजन शो होगा, अमित जी उसे बना देंगे। जब अकेले ही मिलते हैं अमित जी से बातें करने की बहुत इच्छा होती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारी बातें हो नहीं पाती। तो अकेले में कभी हम लोग मिल जाते हैं तो मैं इनको परेशान करता हूँ। जिम जाते हैं, कार्डियो करते हैं, ज्यादातर कार्डियो पे अमित जी रहते हैं, और फिर जिम में हम लोग एक ही बार मिले थे और मैंने परेशान कर दिया, मैं बात ही करता रहा अमित जी से, तो इनका पूरा जो इनकी पूरी एनर्जी थी उसका जो समय था मैंने बर्बाद कर दिया था। अमित जी लगातार अपने प्रशंसकों के संपर्क में रहते हैं। एक बार वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा अरे यार तुम्हें ट्विटर पे पता है क्या लिखा किसी ने? मैंने कहा क्या? कि प्रकाश जी इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? तो प्रकाश जी क्राउड कंट्रोल कर रहे थे उस समय, तो क्राउड में कोई बहुत सारे थे जो अमित जी को मैसेजेस भेज रहे थे, ट्वीट कर रहे थे वो।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
9: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
9: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
9: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
10: मैं मनोज बाजपेयी। ऑन
11: मनोज बाजपेयी 3 बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से रिजेक्ट हुए, पर थिएटर्स करते रहे और 90s में कई छोटे मोटे रोल्स भी किए। उनका पहला बड़ा मौका उन्हें दिया राम गोपाल वर्मा ने 1998 में आई अंडरवर्ल्ड बेस्ड फिल्म सत्या में, जिसमें मनोज ने भीकू मात्रे के किरदार में जान भर दी। इसकी बदौलत न सिर्फ उन्हें रातों रात पूरा देश जानने लग गया, पर उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फॉर द फिल्म भी मिला।
12: सत्या का हुआ था, पता नहीं कैसे हुआ था, मेरे ख्याल से मैं नया था इसलिए ऐसा हुआ था। और इस तरह के फिल्म, इस तरह की आप, इस तरह की परफॉर्मेंसेज जो पूरी फिल्म में थी, वो पहली बार हिंदुस्तान की जनता को दिख रही थी, शायद इसलिए इस तरह का हंगामा हुआ था। अदरवाइज इट वॉज नथिंग स्पेशल, ही वॉज नॉट अ विलन बाय द वे। विलन जो विलन जिस तरह से आप स्लॉट करते हैं विलेन को, उस हिसाब से जो है आप कह सकते हैं कि आरक्षण में कह सकते हैं या फिर अक्स में,
13: ना कोई मरता है ना कोई मारता है, ये मैं नहीं कहता, गीता में लिखा है।
12: अक्स में वो जो ईवल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, उन लोगों का क्लैश चलता है कि आदमी में वो गुड ज्यादा रहेगा या ईवल ज्यादा रहेगा, दोनों के बीच का क्लैश था वो।
14: नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मैंने तो हमेशा एक मिक्सचर को लेकर के आता रहा हूँ, लेकिन जब आप रोल देखते हैं तो हमेशा ये देखते हैं कि इसको मैं करना चाहूंगा कि नहीं। नेगेटिव और पॉजिटिव बात की बातें होती हैं, वो मेरे ऊपर है कि मैं अच्छा रोल है कि नहीं है, लूं कि नहीं लूं, ये तो मेरे ऊपर है। ये इतना चुनाव का अधिकार ये इंडस्ट्री आपको देती है।
12: मुंबई का किंग कॉन्ग भीकू मात्रे।
15: शुक्रगुजार हूँ उस कैरेक्टर का, उस फिल्म का, कि उसके कारण मुझे एक लाइफस्टाइल मिली, मुझे कंफर्ट मिला, मुझे हर वो चीज मिली जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक स्टारडम मिला, आज आज आज तक जो कुछ मिल रहा है मुझे सब उसी के बदौलत मिल रहा है। दो साल तक लोग मेरा नाम नहीं जानते थे, आज आज वो चीजें खत्म हो गई। अब मनोज वाजपेयी के लोग नाम से जानते हैं। दो साल तक मुश्किल था, तो उस नाम को जब बताने के लिए मुझे अपने तरीके की फिल्में करनी पड़ी। अगर मैं भी उसी रट में फंस जाता तो शायद आज तक निकल नहीं पाता। क्या है कि डार्क फिल्में लोग ज्यादा ऑफर करते हैं मुझे, ऐसा नहीं है कि मेरी ये फेवरेट जॉनर है। अगर आप मुझसे सच में पूछें तो एक्शन सीक्वेंस जब होता है या गन उठानी होती है तो मैं दूर भागता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है सब चीजों से। मेरी फेवरेट टेरिटरी है मनी है तो हनी है टाइप की फिल्में। फिल्म जिसने भी देखी थी उसने मेरे काम को सराहा था, लेकिन लगातार करते रहने पे कहीं जाके एक फिल्म कोई हिट होती है। और मैं चाहूंगा कि ऐसी कोई फिल्म करूं जो चले कि लोगों, क्योंकि यहाँ चलने के बाद ही आप साबित कर पाते हैं कि यू आर गुड एट इट और यू कैन सक्सीड इन अ पर्टिकुलर जॉनर।
16: मैं मनोज बाजपेयी ऑन FM बोले तो रेडियो सिटी।
17: मनोज अपने करियर में कई डायरेक्टर्स और कई फिल्म्स के साथ एसोसिएट हुए और एक के बाद एक यादगार किरदार करते चले गए। इनमें से सबसे पावरफुल एसोसिएशन रहा मनोज बाजपेयी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश झा का, जो राजनीति से शुरू हुआ और फिर आरक्षण, चक्रव्यूह और सत्याग्रह जैसी कई यादगार फिल्मों तक चला।
15: मेरा हम दोनों एक ही क्षेत्र के हैं, एक ही इलाके से हैं, और मेरी हमेशा से इच्छा थी कि इनके साथ काम करूं, क्योंकि काबिल निर्देशक हैं, पढ़े लिखे हैं और उस तरह की फिल्में बनाते हैं जिस तरह की फिल्मों के साथ मैं जुड़ सकता था, जहां से हम दोनों के दिमाग मिल सकते थे। तो उस इच्छा की पूर्ति एक ऐसी फिल्म के साथ हुई जिसे प्रकाश झा जो है वो अपनी मोस्ट कम्प्लीट फिल्म मानते हैं, और व्यक्ति के तौर पे बहुत ही हम्बल हैं, बहुत थोड़ा कभी कभी जो है चीजें उनके हिसाब से नहीं जाती हैं तो थोड़ा गुस्सा करते हैं, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज्ड आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। राजनीति की शूटिंग के दो शेड्यूल के बीच में जाकर के अपना चुनाव भी लड़के आ गए, और इनके अपने कंस्ट्रक्शन का भी काम चलता है, टेलीविजन चैनल है, इतने सारे काम करते हैं ये, लेकिन उसके बाद भी एक दिन भी शेड्यूल डिले नहीं होता है किसी भी दिक्कत की वजह से। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ है, ये फॉलो करने के लायक इंसान है। पांच साल पहले मैं जब नेशनल अवार्ड लेने गया था पिंजर के लिए, तब वहां पर इनसे मुलाकात हुई थी, जब ये मेरे ख्याल से गंगा जल के लिए नेशनल अवार्ड लेने आए थे, और वहां पर जिक्र किया था इन्होंने कि वो एक महाभारत से कुछ चरित्र लेकर के आज मॉडर्न डे की स्टोरी में फिट कर रहे हैं और उसमें वो चाहते हैं कि मैं काम करूं। आई हैव शोन माई एक्साइटमेंट टू हिम, लेकिन बात आई गई खत्म हो गई, क्योंकि पांच साल एक लंबा वक्फा होता है। उसके बाद अचानक इन्होंने फोन किया मुझे कि मनोज स्क्रिप्ट रेडी है, सुन सकते हैं क्या? एंड आई आस्क्ड हिम कि कौन सी स्क्रिप्ट सर, यार महाभारत की बात की थी मैंने तुमसे, तुम आ जाओ सुनने के लिए। देन उन्होंने एक्चुअली मुझे दो रोल कहा, ऑफर किया कि इनमें से दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो तुम। मैंने उसमें से एक चूज किया जो मैंने किया इस फिल्म में, बिकॉज दुर्योधन आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ हिज लाइफ, बिकॉज उसको हमेशा ईविल माना जाता है, उसको माना जाता है कि उसने महाभारत शुरू कराई थी, लेकिन दुर्योधन भी सही था, दुर्योधन का भी अपना एक गुड साइड था, एंड दिस इज महाभारत सेज ऑल्सो दैट एवरीबडी इज गुड, एवरीबडी इज इन ईविल, बट इन द एंड एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन ड्यूटी एंड दे ड्राई आउट आफ्टर। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में जोड़ना चाहता था दुर्योधन के साथ में।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-89693।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84-710-30-992 या 90-65-65-750। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22-567 या 97-714-86-164।
7: हाय, मैं मनोज वाजपेयी।
8: आइए अब जानते हैं कि सत्या के भीखू मात्रे से लेकर गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरदार खान तक कई पावरफुल रोल्स प्ले कर चुके मनोज वाजपेयी अपनी एक्टिंग के बारे में खुद क्या सोचते हैं और कैसे प्रिपेयर करते हैं खुद को इतने वर्सेटाइल रोल्स के लिए?
9: रिसर्च ही नहीं करता, किसी फिल्म के लिए नहीं किया। मेरे सामने एक स्क्रिप्ट होता है, मैं उसी को पढ़ता हूँ और जो भी समझ में आती है, जो नहीं समझ में आती है वो डायरेक्टर से बात करके उसको समझ लेता हूँ। फिर आई ट्राई टू वर्क ऑन इट ऑन माई सेल्फ, मतलब ज्यादा वो झोपड़पट्टी की कहानी तो झोपड़ी में जाकर के सर्च करने वाला मैं हूँ नहीं। मुझे लगता है कि जिंदगी इतनी देखी है कि सब सारी चीजें, सब सारे रेफरेंसेज हैं, सारी यादें हैं, तो उसमें जो है और कुछ कल्पना। मैं किसी भी तरह के काम से कंफर्टेबल होता हूँ अगर ये पर्दे पे हो रहा है तो, पर्दे के सामने कुछ भी जायज है, तो मैं अपनी सारी चीजें जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो है वो घर पे छोड़ के आता हूँ मैं, और बस डायरेक्टर जो बोलता है मैं करता हूँ। इसलिए लंगोट भी पहन के खड़ा हो गया, भिगा दिया कि लंगोट खोल दी, वो भी उससे भी मुझे कोई एतराज नहीं, आप पै दो काम दो चलता है। I really feel that very few people are talented in the job that they are doing. क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम करते हैं, बहुत सारे लोग आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन जो जो टैलेंट जिसमें है बहुत कम लोगों में होता है हर जॉब में। एंड टैलेंट अकॉर्डिंग टू मी इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, वो इस भगवान का दूसरा रूप है। अगर आप में टैलेंट है तो कहीं ना कहीं आप में भगवान बस रहा है। एंड इट इज बीन इट नो, तो मैं इसीलिए बहुत ही सेल्फिशली साथ में बैठ करके लोगों के सीखने की कोशिश करता हूँ, और उनकी कदर मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मेरा भगवान में बहुत विश्वास है।
10: बहुत सारे एक्टर्स हैं यार, मतलब हमारे अंदर में बहुत सारे इंसान हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, क्योंकि इन लोग इतने लोगों की फिल्में देखी, इतने लोगों से हम प्रभावित हुए हैं। किसी एक को देख पाना सिर्फ बहुत मुश्किल होगा, चाहे वो गुरुदत्त साहब हो, चाहे वो दिलीप साहब हो, चाहे वो मोतीलाल साहब हो। मैं मोतीलाल साहब से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा हूँ। मैं बलराज सहनी साहब हो, या संजीव कुमार, या नसरुद्दीन शाह, या फिर ओम पुरी, अमिताभ बच्चन, तो आप प्रभावित तो होते रहते हैं लोगों से। इंसान में बहुत सारे पाता हूँ अपने अंदर में, इंसान बहुत ज्यादा, मतलब किसी आदमी से मैं बात कर लेता हूँ कुछ देर तक और वो इंसान मुझे कुछ प्रभावशाली लगता है या कुछ विचित्र लगता है, तो कुछ दिन तक मैं उसी तरह से रहता हूँ। एक्चुअली भूतनाथ में ज्यादा हूँ अपने अंदर में, इसलिए मैं प्यासा का वो किरदार नहीं हूँ जो परेशान है या हताश प्रेमी है, मैं भूतनाथ ज्यादा हूँ अपने अंदर में।
9: हाय मैं मनोज वाजपेयी। हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये ऐलान किया जाता है कि कल रात वसेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। हजरात, अगले 3 घंटे के अंदर लड़की अपने घर नहीं पहुंची, इस इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, और रामाधीर सिंह के पूरे खानदान से दीप का नाच नचाएंगे। हजरात हजरात हजरात।
8: जाते जाते आइए जानते हैं मनोज वाजपेयी की पर्सनल लाइफ, उनकी वाइफ और उनके सबसे बड़े क्रश के बारे में।
9: बड़ा शर्मिला था यार, मैं बहुत ही शर्मिला था। मैंने एक लड़की थी, उसका नाम रुखसाना था, और मैं जब 11th क्लास में था तब मैं उसको दूर दूर से देखता था। बाद में ठीक मेरे सामने उसकी शादी भी हो गई और सब कुछ खत्म हो गया मेरे सामने। फिर दूसरी एक लड़की आई, फिर उस पर दिल आया, तो बायोलॉजी के लेबोरेटरी में जाते थे, फिर उसको दूर दूर से देख, फिर शादी, उसकी भी शादी हो गई। फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, तो एक लड़की थी थिएटर में जहाँ पे हम लोग हिंदू कॉलेज के लिए नाटक करते थे, उसमें एक लड़की थी, फिर उसको दूर दूर से देखता था, दूर दूर से देखता था। फिर मैं पास आउट भी हो गया, फिर मैं मंडी हाउस में नाटक करता था, बैरिज के साथ लड़की थी, दूर दूर से देखता था, दूर दूर से देखता था, उसकी भी शादी हो गई। बाई चांस आई एम मैरिड। सारे मर्द बीवियों से डांट खाते ही खाते। सबसे ज्यादा अगर मैं बोल दूं कि आधे घंटे पहुंच रहा हूं, अगर नहीं पहुंचा तो गति बताते क्यों नहीं, क्योंकि वो प्लान कर लेती है सारा आगे की चीजें, चाहे जितने बड़े तीस्मार खां क्यों ना हो, चाहे इस देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे मनोज वाजपेयी हो, चाहे कोई हो, अपने सब बाहर ही शेर होते हैं, घर जो है बीवियों के हिसाब से चलता है।
11: एक चांस तो दे दे मेरी जान फिर उड़ान देखना,
9: चुटकी बजाओ।
11: चांस तो दे दे मेरी जान मुझे उड़ान देखना।
10: माधुरी दीक्षित के अलावा मुझे ख्वाबों में और कोई नहीं आया है। जब माधुरी भी मिली थी मुझे एक डॉक्टर के पास, मैं अपनी वाइफ के साथ गया था, तो माधुरी को मैं डॉक्टर के पास बैठा देख के मैं ऐसा दंग रह गया कि डॉक्टर ने कहा कि आप जाकर के बाहर, मनोज सब बाहर वेट कर लो, मैं 2 मिनट में माधुरी से खत्म करती हूँ बातचीत, फिर मैं आप आ जाना, दूसरे कमरे में आपको ले जाएंगे हमारी नर्सेस। मेरी वाइफ जाने के लिए दरवाजे पे खड़ी थी और मैं सिर्फ माधुरी को देख रहा था। मेरी वाइफ ने मेरा हाथ खींच करके मुझे बाहर किया। उस दिन तो तलाक होने ही वाला था मेरा।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।

0: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ।
3: श्रोताओं, इस खूबसूरत से गीत के साथ दीजिए इजाजत सर फिरोजी और तन्वी को, कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
4: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
3: नमस्कार।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
3: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
5: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
7: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिससे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
8: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
7: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
9: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
7: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
10: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: बिहार के मुजफ्फरपुर गोरखपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस योजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
11: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
3: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
12: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋतव्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में 7 सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोकसत्ता ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
3: धन्यवाद सर फिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
14: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
15: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
14: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
15: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
14: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
15: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
14: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
16: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238478 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
17: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
18: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
17: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
18: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
17: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
1: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
0: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।
7: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो।

0: चला तो गाना बजा दूं।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
8: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
9: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
8: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
9: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
8: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
9: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
8: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
9: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
8: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
9: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी, गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: तब भौजी आज सुबेरही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 90971602।

0: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि आम लोगों को डिजिटल सेवाओं से जुड़ने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी।
1: सूचना प्रावैधिकी विभाग का एजेंडा था जिसके अंतर्गत बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।
0: अपर मुख्य सचिव ने बताया कि एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि आय सीमा बढ़ने से अधिक मरीजों को योजना का लाभ मिलेगा।
1: स्वास्थ्य विभाग का एजेंडा था जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को इलाज के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर उसे 4 लाख रुपए करने की स्वीकृति दी गई।
0: राज्य मंत्रिमंडल ने बक्सर के नबीनगर औद्योगिक क्षेत्र में पेय पदार्थ उत्पादन इकाई को वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति भी दी है। एक अन्य फैसले में कैमूर जिले के मोहनिया स्थित दादर मौजा की 7 एकड़ अर्जित जमीन पर डेयरी और दुग्ध उत्पादन संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने कुल 13 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। केंद्र सरकार ने बिहार में एनएच 31 और एनएच 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नयन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत 144 किलोमीटर लंबी सड़क का अपग्रेडेशन किया जाएगा। इस पर 3,936 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पूर्णिया शहर में ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण किया जाएगा।
2: खगड़िया से पूर्णिया सेक्शन को लिया गया है। इस सेक्शन की लेंथ है 144 किलोमीटर और कॉस्ट आएगी 3,936 करोड़ रुपए। 4 लेनिंग होगी और प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा। एग्जिस्टिंग 2 लेन रोड है जिसको कि अपग्रेड किया जाएगा 4 लेनिंग से। बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है ये और आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी भी इसी से जुड़ती है।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की प्रस्तावित नीति 10 दिनों में तैयार हो जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत शिक्षकों के साथ ही प्रधान अध्यापकों और प्रधान शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला इस महीने शुरू होगा। इसके लिए समानुपतिकरण का कार्य 10 जून तक पूरा हो जाएगा।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है विभाग उसको टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए महिलाओं का ट्रांसफर, पुरुषों का ट्रांसफर और इसको लेकर के हमारी नीति अगले 10 दिन में हम पूरा करेंगे और जून महीने में ट्रांसफर से जुड़े हर प्रकार के समस्या का समाधान हो जाएगा। जब हमारे विद्यालय खुलेंगे तो हमारे सभी शिक्षक जिनको ट्रांसफर को लेकर समस्या रहती थी वो अपने जिस विद्यालय को अब उन्होंने ऑप्शन दिया होगा उस विद्यालय में वो नजर आए।
0: एक अन्य सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही नया कोचिंग कानून लागू होगा। नए कानून के लागू होने के बाद कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि कोचिंग कानून के लिए बिहार कोचिंग संस्थान विधेयक 2026 लाया जाएगा।
3: एक नीति भी बनाएंगे आने वाले दिनों में। ये कोचिंग संस्थान अगर आपस में प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के साथ इस प्रकार की स्थिति करेंगे और उससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होगी तो इसको रोकने के लिए एक नीति भी बनाएंगे। कोचिंग संचालकों के लिए एक नीति बना करके और उस नीति के अंदर में इनको बैन करें।
0: उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और होटलों के निर्माण के लिए 31 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की गई है। पटना में बिहार औद्योगिक

और गेस्ट हाउस की जांच 15 जुलाई तक पूरी करने का आदेश दिया गया है। पहले चरण में 15 जून तक इन जिलों के सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र के होटलों की सूची बनाकर पुलिस उपाधीक्षक को सौंपनी होगी। वहीं दूसरा चरण 15 जून से 30 जून के बीच चलेगा, जबकि तीसरा चरण 15 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। अनुसंधान अपराध विभाग सीआईडी ने गोपालगंज में जदयू विधायक आनंद सिंह और अमरेंद्र कुमार पांडे के खिलाफ दर्ज अलग अलग कांडों की जांच शुरू कर दी है। दोनों विधायकों पर आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक स्तर के दो पदाधिकारियों के नेतृत्व में अनुसंधान किया जा रहा है। गौरतलब है कि जिले के मीरगंज थाने में एक कार्यक्रम के दौरान मोकामा के विधायक आनंद सिंह की मौजूदगी में समर्थकों द्वारा हथियार लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं कुचायकोट थाने में जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे पर जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला दर्ज है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आज सुबह आगलगी की घटना में 3 मरीजों की मौत हो गई, वहीं 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार आग अस्पताल के ICU में लगी और पूरे अस्पताल में फैल गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने काफी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात सामने आ रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश मिश्र ने कहा कि इस मामले में लापरवाही के दोषी सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
1: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट पर। तो कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सासाराम और गया जी सहित राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अधिकतर स्थानों पर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है।
2: अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं कैमूर का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस, वाल्मीकि नगर का 40.2 और पटना का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर विभाग ने सीमांचल और कोसी क्षेत्र के कुछ जिलों में आज आंधी बारिश की आशंका भी जताई है। भागलपुर स्थित विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर निर्मित बेली ब्रिज पर 7 जून से यातायात सेवा शुरू हो जाएगी। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि पुल पर वाहन परिचालन का ट्रायल सफलता के साथ पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अप्रोच रैंप का निर्माण कार्य भी अगले 2 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। श्री पाल ने कहा कि परीक्षण के दौरान 2.5 टन वजन वाले 4-पहिया वाहन को 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाकर पुल की मजबूती और सुरक्षा का आकलन किया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों के अनुसार परीक्षण पूरी तरह सफल रहा और पुल पर यातायात संचालन के लिए आवश्यक मानकों की पुष्टि हो गई है। इसके बाद 7 जून से वाहनों का नियमित परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। बेली ब्रिज के चालू होने से भागलपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। कटिहार रेल मंडल में चल रहे दोहरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य के कारण

रेलवे ने 12 जून को सहरसा सियालदा हाटे बाजार एक्सप्रेस के परिचालन मार्ग में बदलाव किया है। इस दिन ये ट्रेन पूर्णिया बनमनखी मधेपुरा मार्ग की जगह मानसी नौगछिया कटिहार के रास्ते संचालित होगी। मालदा रेल मंडल के एडीआरएम एके मौर्या ने जमालपुर का दौरा कर विभिन्न रेल परियोजनाओं और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। एडीआरएम ने डीजल शेड के पास निर्माणाधीन नई पिट लाइन, एग्जामिनेशन लाइन, सर्विस बिल्डिंग समेत अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में जिले में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा पेंशन योजना की समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में डीडीसी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने एचआईवी एड्स से बचाव के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया। जिले में 17 अगस्त तक विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर एड्स, सिफिलिस और अन्य बीमारियों की जांच निःशुल्क की जाएगी। पश्चिम चंपारण के जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह, बगहा के पुलिस अधीक्षक, एसएसबी कमांडेंट और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान जमीन विवाद को लेकर स्थल निरीक्षण किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में किसी विवाद और संवेदनशील गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सारण जिले के रिविलगंज प्रखंड में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। छपरा स्थित सदर अस्पताल की मनोचिकित्सक डॉक्टर निधि कुमारी ने लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। राजस्थान में कल से आयोजित होने वाली 36वीं जूनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। पटना में आयोजित ऑल इंडिया महिला टेनिस टूर्नामेंट में पटना की भार्गवी शर्मा ने उत्तर प्रदेश की इराम जैदी को पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भार्गवी का सामना तमिलनाडु की सिलेश्वरी से होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, राज्य मंत्रिमंडल का फैसला, मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से अब 4 लाख रूपये तक आय वालों को भी सहायता। दैनिक जागरण लिखता है, स्कूली बस में अनिवार्य रूप से लगाना होगा सीसीटीवी, जीपीएस और पैनिक बटन। प्रभात खबर ने सरकारी टेंडर में हेराफेरी से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, ऋषु श्री के ठेके में क्यों बनाए पेटी कॉन्ट्रैक्टर। अखबार लिखता है, होगी जांच। दैनिक भास्कर ने आरबीआई के हवाले से लिखा है, सोना बेचने की खबर भ्रामक, 1 साल में भंडार बढ़ा। आज अखबार का शीर्षक है, बिहार में क्यूआर कोड यूपीआई से जमा होगा ई चालान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर आईटी सेंटर स्थापित करने का फैसला किया। कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की नीति 10 दिनों में तैयार हो जाएगी। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आज सुबह अगलगी की घटना में 3 मरीजों की मौत, 20 से अधिक लोग घायल। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सासाराम और गया समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अधिकतर स्थानों पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन 2:00 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: नमस्कार, क्या गाना सुनना है?
1: जी, कौन सा गाना सुनना है?
2: गाना सुनना है आरती में होकर सवाल के लिए, मैं तू अपनी साजन की द्वार के लिए।
1: जी
2: हाँ, खलनायक खलनायक फिल्म का गाना है।
1: ओके,
2: यही गाना सुनना है।
1: और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
2: सभी आदमी को सुना, सभी आदमी सुनेंगे ये गाना को।
1: अच्छा, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैम, राधे राधे।
1: राधे राधे, क्या नाम है आपका?
0: सुरेश कुशवाहा बोल रहे हैं।
1: और कहाँ से?
0: श्यामपुर से बोल रहे हैं
1: जी। क्या हाल है आपका?
0: बहुत बढ़िया, अपना सुनाइए।
1: क्या हो रहा है अभी?
0: अभी तो ऐसे बैठे हैं खाना वाना खाकर। आपका खाना वाना हो गया है?
1: जी। फिर बताए क्या फरमाइश है आपकी?
0: फरमाइश जादूगर फिल्म का गाना सुनवा।
1: और कौन सा सॉन्ग जी बताए, कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
0: कोई भी
1: जादूगर मूवी का कोई भी सॉन्ग
0: जी।
1: और ये गाना आप

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
10: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
11: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
10: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
11: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
10: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
13: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
14: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
15: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
13: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
15: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
15: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
13: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
15: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
13: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
16: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
17: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
18: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Now pick your phone up, hello. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: हेलो,
20: सलामुअलैकुम।
19: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
20: मैं अहमद अली, शरियाबाद नंबर 1 से।
19: जी कैसे हैं आप?
20: हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं मैम?
19: मैं बढ़िया हूँ।
20: तबीयत अच्छा है ना?
19: जी तबीयत मेरा ठीक है, आप अपना बताएं।
20: हम लोग का भी अच्छा है।
19: फिर क्या हो रहा है अभी?
20: ड्यूटी में है मैम, पेंटिंग का काम करते हैं।
19: जी
20: ड्यूटी में है।
19: फिर बताएं गाना?
20: आज गाना आज मेरे को सुनना है कसूर फिल्म का, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे जिंदगी बन गए हो तुम, है ना?
19: जी
20: हाँ, वही गाना सुनना है और सुनाना है सबसे पहले आपको।
19: जी
20: और मेरी वाइफ है अख्तरी, उसको, दागो जी को, कमरान जी को, दिलीप भाई को और शबनम को, रानी को और जो भी रेडियो टीम जहाँ सभी सुन रहे हैं सभी को, और आपको भी है।
19: जी
20: हम लोग का भी दिल नहीं लगता है।
19: जी चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे।
20: ओके मैम,
19: रेडियो रिंगटोन करने के लिए आपका धन्यवाद।
20: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो मैम, कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगकिंग के कार्यक्रम हेलो माई वॉइस में।
0: हम सबसे जल्दी आगे चलो। सर,
1: क्या हाल है आपका?
0: जी हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ। क्या
0: मैं मेरे को अभी तो आपसे बात हो रही है। जी मैम, तो मुझे तो गाना सुनना है।
1: जी बता दे कौन सा सॉन्ग सुनना है।
0: काटिए गाना नहीं, गाना है, गाना का नाम है इश्क ना इश्क से गाना है ना।
1: जी हाँ,
0: वही वाला गाना सुनना हो पूरा सुनाइएगा मैम।
1: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
0: सबसे पहले तो आपको।
1: जी
0: अभी जितने भी सुनने वाला है सभी को।
1: ओके चलिए फिर, ठीक है, सुनते रहे सबके साथ रेडियो में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
0: ठीक है, धन्यवाद।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
9: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ के टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
12: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम में।
15: नमस्कार।
14: नमस्ते
15: जी, क्या हाल चल रहा है? बोलिए।
14: मेरा हाल बढ़िया है, आप अपना बताएं।
15: जी, बहुत अच्छा है। और भाई,
14: क्या नाम है आपका?
15: तो कुमार, कोटवा से।
14: अच्छा जी, क्या हो रहा है अभी?
15: अभी क्या हो रहा है, तो मौसम आपको पता है, जब कोई बाहर निकलने देता है।
14: जी, मौसम तो अभी बहुत गर्म है।
15: बहुत बहुत ज्यादा ऐसे गर्म पड़ रहा है।
14: जी,
15: बैठे हैं घर में ऐसे पर। और सब सुनाइए।
14: हाँ, सब बढ़िया है।
15: अच्छा ठीक है, हमको गाना सुना दीजिएगा। आप वही गाना जो उस दिन बोले थे, प्यासे को पानी पिलाया। जी,
14: यही गाना सुनना है आपको?
15: हाँ हाँ, यही सुनेगा।
14: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
15: जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कद्र करना हो वक्त रहते ही कर लो, स्थिति की कद्र करना हो वक्त रहते ही कर लो, सूखे पेड़ में पानी डालने से हरा की उम्मीद रखना बेकार है। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैं कमरा मसीद विलेज पकड़ी सुल्तान।
1: अच्छा, क्या हाल है आपका?
0: मेरा तो हाल ठीक है, अपना सुनाइए आप कैसी?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: नाश्ता हो गया आपका?
1: जी हाँ, मेरा हो गया। और आपका?
0: हाँ मेरा भी हो गया। मुझे भी गर्मी का मौसम ज्यादा है। गर्मी?
1: जी गर्मी तो बहुत ज्यादा है और गर्मी तो बढ़ती जा रही है।
0: हाँ अभी तो और बढ़ेगा।
1: जी
0: तो वही चल रहा है, जून जुलाई अगस्त पूरा गर्मी, इसमें तो बच के रहना ही ठीक है।
1: जी गर्मी में बच के रहिए।
0: अब धूप में ज्यादा घूमना अच्छा नहीं है, नींबू पानी पीना चाहिए इसमें। तो आपका नाम क्या हुआ?
1: मेरा नाम भारती है।
0: अच्छा हाँ हाँ, हम तो बिल्कुल चला भाई, कोई भारती नाम के आई है।
1: हाँ।
0: और सब बढ़िया है?
1: जी मेरा बढ़िया है। फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
0: फिल्म का नाम है कुली नंबर वन।
1: जी
0: फिल्म का नाम कुली नंबर, सॉन्ग है जेठ जेठ दुपहरी में पाँव जले।
1: जी
0: हाँ यही सॉन्ग में है, डेडिकेट है सबसे पहले आपको।
1: जी
0: और आयशा अफ्तारी, अहमद अली, शाहजहाँ, सबीना, सब्बा सिद्दीकी, समीर आलम, गुलाम हुसैन, अजाद अंसारी सऊदी, अजीर आलम अंसारी, रानी हरखवा, भास्कर बरजू, मुखल सोनी, रानी हरखवा, सलम सिद्दीकी और जितने लोग सुन रहे हैं सबको सुन, देवेंद्र भाई, उमा शंकर भाई, हेना हाजरा, सबको सुनाएगा। नमस्कार। चलो
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999। तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
12: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
12: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
13: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
14: Now pick your phone up.
15: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो।
17: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
17: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं MP से।
16: जी कैसे हैं आप?
17: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे,
3: रेडियो रेंजन सुनते हुए मैम फोन लगा रहे थे, फोन भी लग गया मैम।
16: अभी तो फोन लग गया ना?
3: जी जी जी जी मैम, फोन तो बहुत जल्दी लग गया मैम।
16: फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
3: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म हीरो और गाने के बोला तू मेरी जानू, यही हम सुनवाएंगे। कितने रेडियो और इंजिन बहुत लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
16: ओके फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे।
3: धन्यवाद
16: पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: थैंक यू।
0: क्या नाम है आपका?
1: अनिल बात कर रहे हैं छोटपुर से।
0: अच्छा, क्या हाल है आपका?
1: बस बढ़िया, अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। क्या हो रहा है?
1: अभी काम पे हैं।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: हम एज ए केमिस्ट मेडिकल हॉल पे काम करते हैं।
0: अच्छा जी, फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश है कुली नंबर वन मूवी से हुस्न है सुहाना। और
0: आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: आपको और सारे लिसनर्स को।
0: जी बिल्कुल।
1: और रेडियो रिंगम से इतना गहरा जुड़ाव ही है। चलिए, आपसे भी बात करके अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि ये सिलसिला ठीक ठाक ही चलेगा।
0: जी बिल्कुल, पूरी कोशिश रहेगी मेरी।
1: जी जी,
0: ओके।
1: आप भारती जी है ना? नाम यही ना? हाँ, चलिए तब ठीक है, याद है अभी।
0: ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रिंगम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला, सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94512-11001।
12: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
11: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
10: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
11: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
10: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
11: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
10: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
11: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
10: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611।
11: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
10: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
13: Now pick it up,
14: hello.
13: Now pick your phone up,
14: hello.
13: Pick it up,
14: hello.
13: Now pick your phone up.
15: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो
17: जी, नमस्ते।
16: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
17: बाल भी सुंदर तो
16: जी, कैसे हैं आप?
17: ठीक है, अपन बताइए।
16: मेरा भी ठीक है।
17: जाना नहीं है कोको कोला वाला, बहुत गर्मी है।
16: जी, गर्मी तो है। कौन सा गाना बोले एक बार और बता दे।
17: कोको कोला वाला नहीं है,
16: भोजपुरी सॉन्ग है।
17: जी जी,
16: ओके।
17: अमन आशीष कौन राव अधी दंगराज,
16: इन सबको सुनाना है आपको गाना।
17: जी जी,
16: ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
17: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: मेरा नाम तो है गोपाल रॉय, उससे डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट सिलीगुड़ी का नाम सुना है आप? दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का
0: जी,
1: सिलीगुड़ी के जाने के टाइम में सिलीगुड़ी से और पीछे में एक जगह रास्ता है, वो जो विधाननगर बोलते हैं उसको, इस्लामपुर का नाम सुना है ना?
0: जी
1: इस्लामपुर के बाद एक घंटा का रास्ता है, विधाननगर बोलते हैं। यहाँ पर जो मेरा हम लोग के यहाँ पर अनारस मतलब पाइनएप्पल फेमस है।
0: अच्छा,
1: वही से मैं बात कर रही हूँ, विधाननगर से।
0: जी फिर बताएं कैसे हैं आप।
1: हम तो अच्छे हैं, बराबर ही फोन करके अच्छी रहती हूँ, इसलिए तो आप लोगों का प्रोग्राम मैं सुनती हूँ।
0: अच्छा,
1: आपका नाम क्या बोला?
0: भारती। फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी।
1: मेरा तो फरमाइश है, मैं तो पुराना फिल्म ही सुनती हूँ गाना,
0: जी
1: तो
0: बताएं।
1: आज पुराना नहीं सुनूंगी, आज से आप नए आदमी से बात करें, इसलिए नया फिल्म के ही गाना सुन रहे हैं। नया मतलब की कैसे नया बोलिए, तो जैसे 90s का जो फिल्म है ना, वो उस तरह का फिल्म का, जैसे सदन फिल्म का गाना सुना दीजिए आपने।
0: बताएं कौन सा सॉन्ग।
1: बहुत ही प्यार करती है तुझे डांस,
0: जी बहुत प्यार करते हैं
1: जो इस अनुराधा पटेल का आवाज में जो गाना है ना,
0: जी,
1: और भी एस पी बालासुब्रमण्यम की भी है, सुना दीजिएगा।
0: ओके, और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
1: आप रेडियो जी परिवार को और आपको भी सभी को डेडिकेट करती हूँ।
0: ओके,
1: अच्छा, ये प्रोग्राम के वही दिन में 5 बजे से शाम में?
0: शाम में 5 से 7 बजता है और सुबह 9 से 11।
1: ओ अच्छा अच्छा वही टाइम है ना,
0: जी
1: का टाइम है, तो गाना सुना दीजिएगा आप।
0: जी बिल्कुल, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके ओके, आपको भी धन्यवाद, थैंक यू।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18-744।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
12: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
13: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
14: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
15: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
14: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
16: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
17: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो,
19: सलाम अलैकुम।
18: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
19: जी मैम, मैं गाना सुनूंगा।
18: जी गाना सुनाएंगे, नाम बता दे अपना।
19: मुंबई से बोल रहा हूँ, मुझे गाना सुनना है।
18: ओके, और कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
19: मुझे गाना सुनना है जुदा अपने दिल भर को होने लगी है मोहम्मद।
18: अच्छा, और ये गाना आपको किसको सुनाना है?
19: सबसे पहले आपको भाई, भाई, प्रिंस भाई, लक्की भाई और रुबीना जी, दीप्ति जी, हीना जी, गुड़िया जी, सज्जा जी, शबनम जी और अरीसा सभी को सुनवाना चाहता हूँ।
18: ओके चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
19: थैंक यू मैम।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: मैं राजू बोल रहा हूँ
0: जी।
1: हम तो एक गाना सुनना है।
0: और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, हम लुधियाना से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ। फिर बताएं क्या हो रहा है?
1: बस काम हो रहा है, सिलाई कर रहे हैं यहाँ पे।
0: बढ़िया है।
1: आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं 5 बजे से।
0: जी जी
1: हाँ, 7 बजे तक।
0: फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
1: मेरा एक फरमाइश है, कोई राजू प्यार न करियो, दिल छूट गया था।
0: अच्छा जी, फिर ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: जी, एक मेरा मंजीत दोस्त है, उसको सुनाना चाहते हैं और आपको सुनाना चाहते हैं। आप जो इतना रेडियो सुन रहा है, सबको सुनाना चाहते।
0: ओके, ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070 32042 पे।
6: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल।

0: पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
1: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
7: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: हेलो,
11: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
12: अस्सलाम वालेकुम।
11: वालेकुम अस्सलाम।
12: मैं थारी पट्टी से

0: खातून।
1: अच्छा जी, कैसी हैं आप?
0: आप कहा मैम?
1: मेरा भी ठीक है। फिर बताएं। हाँ मेरा हो गया। आपने कर लिया?
0: नाम रोजा बनी।
1: अच्छा हाँ,
0: कल बकरीद।
1: हाँ हाँ,
0: गाना सुना दे, हिंदी गाना है, आप आने की खुशी एकदम निकलना जाए
1: जी। बिल्कुल। और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
0: आपको सुनाएंगे और जितना लोग सभी को।
1: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। जी नमस्कार।
0: हाँ जी, संजीत बोल रहे हैं लुधियाना पंजाब से।
1: जी कैसे हैं?
0: ठीक है जी, आप कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ। क्या हो रहा है अभी?
0: अभी तो काम हो रहा है फैक्ट्री में।
1: अच्छा, बताएं कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
0: हीरंगा का रब ने बनाया जो मुझे काफी लिए गाना।
1: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
0: आपको सभी इंजन टीम के सभी श्रोता को सुनाएंगे।
1: फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंगीन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9852784088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
8: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
6: और 9097-6160-02।
9: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम क्या हाल चाल कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो झिम 90.4 FM पे। समय 9:22 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने का फरमाइश करनी है तो आप लोगों को पुराने गाने की फरमाइश करनी है। और यहाँ पे कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। तब तक अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का। और हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे भेजने का। यहाँ पे सबसे पहला मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है। शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया दीपक एंजेलर जी। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आप ही के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, आप तो कभी पूछते हैं नहीं, चलो हम ही पूछ लेते हैं क्या हाल है आपका। तो बढ़िया है और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। लिखी है हाय अस्सलाम वालेकुम, आज मुझे एक सॉन्ग सुनना है, दुनिया में आए हो तो लव कर लो। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और इस मैसेज को करती हैं शबीना खातून फ्रॉम दुलुलिया से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्ते नमस्कार कैसे हैं आप, मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूं। तो बिल्कुल मैं भी बढ़िया हूं और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, बने रहे हमारे साथ। और इस मैसेज को करते हैं रोहित जी देहरादून से और कहते हैं कि आज देहरादून का मौसम बहुत ही सुहाना है क्योंकि आज बारिश अच्छा हुआ और गाना सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और थोड़ा सा सब्र करें और आप जहाँ हैं वहीं पे स्थिर रहें। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो हाय सर नमस्ते, सॉन्ग दिल कहता है चल उनसे मिल, नुशा निशा सुकुलवा से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने का फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज हाय हेलो सर, मैं निर्मला कुमारी जादवपुर से और मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने का फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज सोनू भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैसेज करते हैं दिलीप राम जी दिल्ली से और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मैसेज करने वाले लिखे हुए हैं कि मैं भी जुड़ गया हूं MP महमूद केरला से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और कहते हैं कि और सब ठीक है ना सोनू भाई। बिल्कुल ठीक ठाक आप सभी के बीच उपस्थित है कार्यक्रम को लेकर और कार्यक्रम स्टार्ट हो गए हैं, आप सब बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं अब गाने के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पहले गाने के फरमाइश प्ले करते हैं दीपक एंजेलर जी की। और इनकी दुख अभी ख़त्म हुई नहीं और अभी शुक्रिया अदा करने पर लगे हुए हैं, तो चलिए इनके गाने के साथ शुक्रिया अदा किया जाए और इंजॉय किया जाए रेडियो रमझम 90.4 FM पर।

कमाल के शौक रेडियो 94.4 FM पे सुन रहे हैं हम सभी और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि पुराने गाने या 90s के गाने की फरमाइश करना है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश करती है शबीना खातून फ्रॉम दिल्लीया से, तो इनके गाने हम प्ले करेंगे। और कुछ मैसेज है तो देख ले, फिर इनके गाने हम प्ले करते हैं। यहाँ पे मैसेज आगे पहुँचा हुआ है, हेलो, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, लेकिन आप कौन है आगे तो मैसेज सेंड करें। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो, हाय सर जी, प्रणाम सलाम मेरे तरफ से प्यारे प्यारे अलिश्नर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ निशा भारती विलेज उजवलिया उचका गांव प्रखंड से, और बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहती हैं कि दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, यूँ हम किसी पे फिदा नहीं होते, प्यार से बड़ा है दोस्ती का, क्योंकि दोस्ती कभी बेवफा नहीं होते। मस्त सैड सॉन्ग। और आगे मैसेज अभी टाइप हो रहे हैं तो बिल्कुल करते रहे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे मैसेज में लिखा गया है कि सर कल मैं सॉन्ग भेजी थी पर नहीं आप सुनाए, तो बिल्कुल कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी डिवाइस में, जिसके कारण जो भी मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए थे वो क्लियर ओपन नहीं हो रहे थे, जिसके कारण हम कुछ ही मैसेज शामिल किए और कुछ ही गाने प्ले कर पाए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरी रोल नंबर 5 पे है, देखते हैं आप कब तक कोशिश करके गाना सुनाते हैं। बिल्कुल कोशिश है सबकी फरमाइश पूरी करने की, जितना समय मिला है उतना ही में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप, और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और आज मैं भी जुड़ गई हूँ शो से और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए नाइस सॉन्ग। मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नमस्ते भाई, कैसे हैं, ठीक है, सभी दोस्त कैसे हैं, ठीक है, मुझे गाना सुनना है भाई, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबिता चौहान गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, हाय सर जी, नमस्कार सर जी, कैसे हैं सर जी, और मैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और लग रहा है कि दिल टूटा हुआ है। बिल्कुल दीपक भाई जी एकदम टूट चुके हैं, अभी शुक्रिया अदा करने पर ही लगे हुए हैं, और तो भाई है तो साथ तो देना ही पड़ेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है, हेलो भैया आप कैसे हैं, और सलदान सारी मिर्गंज से, तो बिल्कुल बढ़िया, और आपको स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज अभी कई टाइप हो रहे हैं तो फिलहाल आप लोग मैसेज करते रहें और हम आगे बढ़ते हैं। अगले गाने की फरमाइश प्ले करते हैं शबीना खातून की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, दुनिया में आए हो तो लव कर लो। टिटकिट आपको एंड शबा अपी, अफसाना अपी, रोशनी अपी, सजदा जी और गुड़िया जी, हाजरा सिस्टर, खुशी जी, निशा जी, शफाक जी, हिना जी, शाहजहाँ जी, शिल्पी जी, सोनी जी, समीर भाई, कमरान भाई और इरफान भैया, साहिल भाई, दीपक भाई, दिलीप भैया, वीरेंद्र भैया, लवली भाभी, सावन शर्मा जी, और जो छूट गए उन सभी को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपको पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमछम 94.4 FM पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेमझिम 94.4 FM पे शो चल रहा है SMS फरमाइश का। आगे मैसेज कई पहुंचे हुए हैं और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है अगली गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे रोहित जी की और यह मैसेज देहरादून से किए हुए हैं और गाने की फरमाइश करते हैं पुराने और गाने का बोले आज जाने की जिद ना करो। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे ओरिजिनल सॉन्ग के साथ फरीदा खानून गजल्स सॉन्ग है। तो आगे कुछ मैसेज पहुंचे हुए तो देख ले फिर आपके गाने हम प्ले करते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि फूल है गुलाब का सुगंध लेते रहिए, मन है समुंदर नहाते रहिए, प्रेम है रेडियो रिमझिम हमें सा मुस्कुराते रहिए, नमस्ते नमस्ते कागज है गुलाब का मोहब्बत है प्यार का, दिल तो उसी पे मचलता है जो रेडियो रिमझिम पे नाम भेजता है, गाना लिखे जो खत मुझे और तेरी याद में। सभी श्रोताओं के साथ सावन शर्मा जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सुनो भैया, मैं आदित्य राजीव नगर पोस्ट ऑफिस गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में आदित्य जी, आपकी भी फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, तो बिल्कुल आपकी हाजिरी लग चुकी है और गाने की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है निशा जी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि आज मेरी किस्मत अच्छी है, मैं अपना गाना सुन रही हूँ 3 सप्ताह बाद, थैंक यू आपको सॉन्ग सुनाने के लिए और दुनिया में आए हो तो लव भी जरूरी करना चाहिए और लव में ब्रेकअप भी होना चाहिए वरना जिंदगी जीने का मज़ा नहीं आएगा। और कहती हैं कि गर्मी आ गई है दोस्तों, थोड़ा संभल कर रहना क्योंकि गर्मी पूरी कोशिश करने वाली है कि हमारी शक्लें आधार कार्ड से मैच करवाने की, बिल्कुल संभल के रहना ही चाहिए, धूप बहुत निकल चुकी है और लगता है कि आगे कई दिनों तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सबीना सिस्टर मुझे सॉन्ग सुनाने के लिए दिल से शुक्रिया सजदान सारी मैसेज करती हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज करते हैं गुलाम हुसैन जी, ये तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, कहते हैं कि आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले, आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले, लोग कहते हैं मोहब्बत गुनाह है, काश कोई रोक लेता गुनाह होने से पहले। तो ये तो खुद की अंदर ही एक इंसान बसा हुआ है जो हर कुछ कराता है, ये रोकने वाले और कराने वाले एक ही इंसान के अंदर दो इंसान बसा हुआ है, जो एक कहता है कि आगे बढ़, एक कहता है कि अभी रुक। तो जैसा आदेश मिलता है वैसे तीसरा इंसान करता है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, मैं सनी राज पटेल हरियरपुर से और सॉन्ग, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू सॉन्ग सुनाने के लिए सबीना सिस्टर, और मैसेज करती हैं रोशनी मानिकपुर से। आगे बढ़ते हैं, अब आगे गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं रोहित जी की और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

रेडियो MGM 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का, और यहाँ पे मैसेज हमारे श्रोतागण करते हैं रोहित जी, और कहते हैं कि दूसरी गाने। तो चलिए अब आगे हम सभी तो गाने एंजॉय कर चुके हैं, अगले सप्ताह ये गाने प्ले करने की कोशिश रहेगा। और ये गाने हमको दिखाई दिए थे, लेकिन आपने जो अंतिम लाइन लिखा हुआ है कि जाने की जिद ना करो, इसी के कारण इस गाने को हमने प्ले कर दिया। हमें लगा कि यही गाने हैं। सो चलिए आगे अब अगली बार एंजॉय किया जाएगा इस गाने को। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि भैया एक खुशखबरी है, मैसेज देखिए। तो कौन सी खुशखबरी है? और मैसेज जो आए हुए थे वो मैंने तो शामिल कर ही दिए हैं, और कुछ तो दिख नहीं रहा है। मैसेज करती हैं सजदा, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज करती हैं निर्मला कुमारी, और गाने की फरमाइश करती हैं दिल लगैनी जितनी बार, धोखा पैनी उतने बार। उदित नारायण जी की आवाज़ में भोजपुरी गाने की फरमाइश करती हैं। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो MGM 90.4 FM पे।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा

0: 9765665750।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क 9993365923।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
1: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी, आप सभी के बीच हाजिर हो चुकी हूँ आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस के साथ। और आज के शो में हम बातें करेंगे बहुत सारी और सुनेंगे आपकी फरमाइश के गानों को। तो चलिए, अगर जुड़ना चाहते हैं आप भी और सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गाने तो शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप इस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 98527288291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं या फिर कॉल करिए हमें 72-77-16-65-96 पे और जुड़ जाइए अपने सो योर वॉइस योर चॉइस से। और जब भी आप लोग मैसेज कर रहे हैं अपना नाम पता जरूर मैंसन करिए, ये मेरा आप सभी से अनुरोध है। और दूसरी बात कि आप जब भी गाने की फरमाइश कर रहे हैं अच्छे गाने की फरमाइश करिए, कोई भी आपत्तिजनक गाने की फरमाइश नहीं करिए, कोई भी अश्लील गाने की फरमाइश नहीं करिए, बाकी आप सारे गाने की फरमाइश कर सकते हैं। आप सभी से ये मेरा अनुरोध है क्योंकि रेडियो पे गाने फरमाइश सिर्फ आपकी होगी, भले पसंद ही आपका हो लेकिन सुनने वाले आप अकेले नहीं हैं, तो सबके बारे में सोच समझ करके गाने की फरमाइश किया करिए। तो चलिए आज के शो की आगाज़ करते हैं बिना देरी किए। आप सभी तब तक अपनी फरमाइशें भेजिए, अपनी बातें भेजिए, अपनी मैसेज को भेजिए। तब तक इंजॉय करते हैं इस प्यारे से गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो 90.4 FM पे। मिलते हैं इस गाने के बाद आप सभी से यहीं पे।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। 12:09 होगी स्टूडियो घड़ी में और अभी से लेके शाम को 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। कॉल से जुड़ने के लिए नंबर है 98527788291 पे कॉल करिए या फिर रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करिए और अपने गाने की फरमाइश को सुनिए। आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर है 98527788291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। और कॉल सिर्फ वही लोग करें जो कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नहीं यूज करते हैं, कॉल सिर्फ उनके लिए है। और बिना देरी किए यहाँ व्हाट्सएप की तरफ अपना रुख करेंगे और यहाँ काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और आज का पहला मैसेज जो हमारे पास पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं छोटी छोटी बात पे नाराज मत हुआ करो, गलती हो जाए तो माफ़ कर दिया करो, नाराज तब होना जब रिश्ता तोड़ देंगे और ऐसा तब होगा जब हम दुनिया छोड़ देंगे। क्या बात है, लिख रहे हैं हेलो हाय नमस्कार गुड आफ्टरनून जय माता दी सबको बोल दीजिएगा, बिल्कुल बोल दिए हैं। और लिख रहे हैं कि कल वाला सॉन्ग मेरा रह गया था तो आज सुनवा दीजिएगा बिल्कुल, और डेडिकेट है सबको और सबसे पहले आपको और प्रमुख भाई को, निर्मला जी को और सभी लिसनर को जय माता दी। मैडम जी शिवसागर दीवाना जम्मू एंड कश्मीर से बहुत बहुत स्वागत आपका भी और बिल्कुल आपकी यानी कि जो फरमाइश है कल वाला छूट गया था मैं आज जरूर प्ले करूंगी और आगे बढ़ेंगे। यहाँ दिनेश मिश्रा जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, लिख रहे हैं सोनी मैम आपको प्यार भरा नमस्कार। और आगे लिखते हैं कि गुलाब खिलते रहे जिंदगी की राह में, गुलाब खिलते रहे जिंदगी की राह में, हंसी चमकती रहे आपके निगाह में, खुशी की लहर मिले हर कदम पर आपको देते हैं ये दिल दुआ बार बार आपको हो। और दिनेश मिश्रा जी की तरफ से ये लाइन पहुंचा हुआ है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सॉन्ग सुनवा दीजिए, बिल्कुल सॉन्ग सुनवा देंगे। और नई मंसारी है जामतारा से और लिख रहे हैं कि कितने चिट्ठी, कितना मैसेज, कितना फ़ोन पे बात करी गाने की फरमाइश के साथ है, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एमडी महमूद जुड़ चुके हैं केरला से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, सत्येंद्र कुमार जुड़ चुके हैं इराक से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका और गाने की फरमाइश के साथ है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे, थोड़ा सब्र करिए। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, हम गोल्डन टेलर तिनफड़िया से जुड़ चुके हैं और गाने की फरमाइश है, लिख रहे हैं प्रोग्राम से जुड़ गए हैं और हमारा भी हाजिर लगा दीजिए और गाना सुनना है सुनवा दीजिए, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, बहुत बहुत स्वागत आपका भी और गाने की फरमाइश है, बिल्कुल प्ले करेंगे। यहाँ लिख रहे हैं कि हाय मैम, निषाद मास्टर ग्राम धनाव से कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, क्या हालचाल है मैडम जी बताइए और मौसम का क्या हालचाल है। तो मौसम की बात करें तो काफ़ी कड़ाके वाली धूप हुई है इधर और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, आपके तरफ का मौसम कैसा है ज़रूर बताइए। अली अख्तर जुड़ चुके हैं कश्मीर से, बहुत बहुत स्वागत, और लिख रहे हैं कि गाना सुनना है तो बिल्कुल सुनाएंगे और लिख रहे हैं पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई, तो लगन तो शुरू हो गई बटे। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, नौशाद अली जुड़ चुके हैं मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। जहूर आलम अंसारी है कुवैत से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि टूटा हुआ आईना किसी ने जोड़ा है क्या, टूटा हुआ आईना किसी ने जोड़ा है क्या, क्या मोहब्बत ने किसी को छोड़ा है क्या, तुम क्या हंस रहे हो मेरी शायरी पर, तुम्हारी भी दिल किसी ने तोड़ा है क्या। और इस मैसेज के साथ है राम पुकार कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी और फरमाइश है, तो बिल्कुल बने रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, टीवी के हाय मैम, रेहान खान टाटा जमशेदपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और लिखते हैं कि हसीन जुल्फे दिल का साक है, हुस्न शर्फा जी हुस्न सरफे जमाल था, एक वफा की कमी थी, और सखी यार तो बे बड़ी कमाल था। और इस मैसेज के साथ हैं
रेहान खान जी टाटा जमशेदपुर से, और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ और पहली फरमाइश की तरफ। आज की और पहली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, वो है जम्मू एंड कश्मीर से। शिव सागर दीवाने जी जुड़े हुए हैं और इनको सुनना है गाना, रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं। तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं। फिलहाल अभी दिन है और अभी से मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को, और अपने गाने को एंजॉय करिए।

चार रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे थे सुशागर दीवाना जी की फरमाइश थी जम्मू एंड कश्मीर से और लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजाने के लिए और साथ में गुनगुनाने के लिए। और यहाँ राम पुकार जी हैं लिख रहे हैं कि आप मेरा मैसेज पढ़ें लेकिन नीला नहीं हुआ चैट, क्या कोई दिक्कत है आपके व्हाट्सएप में या फिर व्हाट्सएप सेटिंग में? तो भैया ना ही मेरे व्हाट्सएप में दिक्कत है ना ही व्हाट्सएप सेटिंग में दिक्कत है और मैसेज आपका शामिल हो गया, बस यही देखिए और बाकी सब रहने दीजिए। कमलेश्वर कुशवाहा जुड़ चुके हैं जम्मू से, बहुत बहुत स्वागत कमलेश्वर जी आपका भी, बने रहिए साथ में। और यहाँ वारिस खान आ चुके हैं कतर से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं कि आती है जब याद तेरी तो तेरी यादों में हम खो जाते हैं, आजकल तुझे सोचते सोचते सोचते जाते हैं हम। और इस मैसेज के साथ है वारिस खान जी और लिख रहे हैं कि कर सितम कितना भी मुझ पर, इस दिल में धड़कन तेरे नाम की है। कर सितम कितना भी मुझ पर, इस दिल में धड़कन तेरे नाम की होगी। ख्वाहिश तो अधूरी बहुत सी है मगर आखिरी ख्वाहिश तेरे दीदार की होगी। गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग वारिस खान जी है, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका, बने रही हमारे साथ। और एक यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि ऐसे गाते रहिए और पानी पीते रहिए। और मैसेज के साथ है धनीश मिश्रा जी, बिल्कुल आपकी बातों का ख्याल रखेंगे और आप सभी भी गर्मी का मौसम है तो पानी पीते रहिए और धूप में निकलने से बचिए, खास करके 12 से 3 के बीच जब तक जरूरी काम ना पड़े आप सभी बाहर नहीं निकलिए। और यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ रुख करेंगे तो यहाँ भी मैसेज है लिख रहे हैं कि किसी का जिंदगी खुशहाल हुआ है तो किसी का जीना तक मुहाल हुआ है। उसने मेरा हाल तक नहीं पूछा जिसके वजह से मेरा ये हाल हुआ है। और इस मैसेज के साथ है प्रसन्नजीत जी परमानिक झारखंड से जुड़े हुए हैं नमधी रघुनाथपुर से और गाना सुनना है पवन सिंह की आवाज़ में थोड़ा राजा जी के दिलवा टूट जाए। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर दिया, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को और प्रसन्नजीत जी की फरमाइश को एंजॉय करते हैं हम सभी मिलकर।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोप्राइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ इंस्टाग्राम मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है, लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, क्या हाल चाल है। और मेहताब सिद्दीकी जुड़ चुके हैं दुबई से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मेरा हाल चाल बिल्कुल बढ़िया है, आप लोग बताइए आप कैसे हैं और आपके उधर मौसम कैसा है। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज नहीं आई है केनाई लुहा का, बिल्कुल आ गए हैं। और प्रमुख जी हैं लुधियाना पंजाब से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी हाजिर लगा दीजिए और मेरा भी गाना है सुनवा दीजिए, बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। अली अख्तर जुड़े हुए हैं कश्मीर से और लिख रहे हैं हमको गाना सुनना है, पंडित जी बताएं ना ब्याह कब हुई। तो बिल्कुल आपकी बारी आते ही हम आपकी गाने की फरमाइश है प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि तोरा राजा जी के दिलवा टूट जाई, ऐसा गाना बजवाने वाले भाई को मौसम में तो गर्मी की, अच्छा ऐसे गर्मी के मौसम में गर्मी आएगी नहीं। जी हाँ बिल्कुल। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और यहाँ मैसेज अभी पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि गाने की फरमाइश है सोनी जी, गाने का लिंक भेज दिया हूँ, प्लीज़ गाना सुनवा दीजिए। तो थोड़ा इंतज़ार करिए, सभी परिवार के साथ हैं, आपकी बारी आती है हम आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से, और कॉल कट चुका है। तो चलिए अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। और अगली फरमाइश हमारे पास है यहाँ नईम है जान तारा से जुड़े हुए, और इनको सुनना है गाना कितना चिट्ठी, कितना मैसेज, कितना फोन पे बात करी। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम पे।

0: 90.4 रेडियो रमजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे नई मंसारी जी जाम तरह से, और लिख रहे हैं कि जी थैंक्स गाना बजाने के लिए, बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और हाँ, व्हाट्सएप मैसेज लिख रहे हैं कि हम भी वी हैव ऑल्सो ज्वाइंड, और प्रमुख जी हैं लुधियाना पंजाब से। एक और यहाँ मैसेज है और गाने की फरमाइश है, पहली बार शो से जुड़े हैं, लिख रहे हैं हेलो मैडम जी नमस्ते, अरविंद कुमार जी हैं और सुपौल बिहार से जुड़े हुए हैं, गाने की फरमाइश है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की कोशिश है, थोड़ा इंतजार करिए, आपकी बारी आते ही हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। फिलहाल अगली फरमाइश हम यहाँ लेंगे, कॉल के माध्यम से कॉल पहुँचा हुआ है, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: नमस्ते।
0: हेलो,
1: हेलो, मुझे गाना सुनना है।
0: गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
1: अखिलेश कुमार, गौरीनंद।
0: अच्छा,
1: जिला गोपाल।
0: तो कौन सा गाना सुनवा दे अखिलेश जी आपको?
1: प्रमोद प्रेमी का कोई सॉन्ग सुना दीजिए, बेवफाई।
0: प्रमोद प्रेमी का कोई सा भी बेवफाई। और क्या हो रहा था अभी?
1: कुछ नहीं, कॉल लगा रहे थे, कॉल लगाए कितना बजे नहीं,
0: तो गाना चल रहा था इसलिए कॉल नहीं रिसीव हुआ।
1: ठीक है, मैं बजा दूँ।
0: ओके, गाना प्ले कर दिया आपकी।
1: थैंक यू,
0: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल किया।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

बहुत बहुत स्वागत रेडियो 94.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ अपना रुख करेंगे और मैसेज है लिख रहे हैं तू ना समझे तो समझाऊं कैसे, अपनी चाहत का एहसास दिलाऊं कैसे, तू तो अपनी दुनिया में खुश है लेकिन मेरा क्या हाल है तेरे बिना बताऊं कैसे। और मेरा नाम है पोसो, झारखंड से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी और गाने की फरमाइश है। नैना लागे नेह के सागर, बिंदिया लागे चांद, तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है। प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। आपकी बारी आते ही हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ सन्यासी रंजन बाबा जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि नमस्कार सोनी जी, हम भी जुड़ गए, हमारा भी आज लगा दीजिए। बिल्कुल लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और यहाँ सन्नी जुड़ चुके हैं, विद्यासागर आंध्र प्रदेश से, लिख रहे हैं कि खाई के पान बनारस वाला गाना सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी हम लोग गाना जल्दी बजा दी, तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और चलिए अगली फरमाइश आप ही का करने वाले हैं, फिलहाल बने रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि एक कविता लिखा हूँ आपके लिए, इजाज़त हो तो भेज दो। बिल्कुल भेजिए प्रमुख जी, हैं लुधियाना पंजाब से, और बिल्कुल भेजिए, हमें भी इंतज़ार है कि आखिर आप लिखे क्या है। और यहाँ आगे एक और यहाँ मैसेज है, वॉइस पहुँचा हुआ है, और लगातार 3 वॉइस पहुँचा हुआ है, तो कौन सा गाने वाली वॉइस है ज़रूर बताइए, और अपना नाम पता ज़रूर मैंसन करिए आप कौन है कहाँ से। और आगे यहाँ एक और मैसेज है,

कहते हैं कि आई लव यू इतना, यू लव मी जितना। आई लव यू तब से, यू लव मी जब से। आई लव यू तब तक, यू लव मी जब तक। और यू लव मी ना जाने कब तक, बट आई लव यू मरते दम तक। और इस मैसेज के साथ हैं वारिस खान जी कतर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है। मंजेश सोनी जुड़ चुके हैं जमसर बाजार से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि इतनी प्रचंड गर्मी है, कोई भी जान सेवक, कोई भी जन सेवक, जुझाड़ू युवा नेता, कूलर पंखा बांटते नहीं दिख रहा। और 40 वाला कंबल तो पूरे मार्च तक बढ़ता था। जी हाँ बिल्कुल। और इस मैसेज के साथ है सन्यासी रंजन बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी मेरा भी गाना बजा दीजिए, इंतजार कर रहे हैं। हेलो। और मैसेज करने वाले हैं कमलेश्वर कुशवाहा जी जम्मू से, बिल्कुल आपके भी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। थोड़ा सा सब्र रखिए और इंतजार करिए। और यह अगली फरमाइश जो हम प्ले करेंगे, हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है मोतिहारी जिला से नौशाद अली जी, और इनको सुनना है गाना। तो चलिए अगली फरमाइश जो है प्ले कर दी है, आपकी पसंद का गाना यार मत जा के, यार मत जा। और गाने की फरमाइश इंजॉय करिए नौशाद अली जी की फरमाइश पे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, नौशाद अली जी की फरमाइश थी मोतिहारी जिला से, और इनकी तरफ से मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुनी जी हमारा गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, मैसेज है, लिख रहे हैं कि जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, अंदर से खुश नहीं कर सकती। गुड आफ्टरनून सोनी जी, मैं भी जुड़ गया हूँ, आप बताइए ठीक है ना। बिल्कुल मैं बढ़िया हूँ, और आप बताइए आप कैसे हैं। और अनिल जी हैं जोधपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, और प्रमुख जी की तरफ से कविता पहुँच चुकी है, लिख रहे हैं कि आरजे सोनी जी मेरी दोस्ती निराली है, कंजूसी में लगती सबसे मतवाली है, चाय पिलाने की जब भी आती बारी है कह देते हैं अरे आज तो जेब है खाली है, पार्टी की बात हो तो पीछे हट जाते हैं, बिल देखकर तुरंत नजरें चुराते हैं, फिर भी उसकी बातें सबको है भाती, हंसा हंसा कर महफिल पूरी सजाती है। और गाना मस्त चल रहा है मैडम जी। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा कविता लिखने के लिए, बने रहिए साथ में। और आगे बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश कॉल के माध्यम से है, कॉल पहुँचा हुआ है, तो चलिए बात करते हैं। हेलो और कॉल कट गया, फिर से आ चुका है। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में। हेलो,
1: गाना सुना है मैम, एक
0: गाना सुनवाएंगे, नाम बताइए अपना और कहाँ से।
1: खुशी कुमारी हाजीपुर से।
0: खुशी, कैसी हैं खुशी जी?
1: अपना बताइए।
0: हम भी बढ़िया है, क्या हो रहा था?
1: कॉल लगा रहे थे आपके पास।
0: खाना पीना हो गया?
1: हो गया है मेरा, अपना बताइए।
0: मेरा भी हो गया है, तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
1: तो आप, मेरी मम्मी आपसे बात करेगी।
0: जी बिल्कुल करवाइए।
1: हेलो
0: जी। हेलो, नमस्ते आंटी जी,
1: आप ठीक रहिए? भोजपुर गाना सुना दीजिए।
0: जी बिल्कुल सुनवा देंगे, बता दीजिए कौन सा गाना सुनवा दे आपको।
1: कोई भी गाना बजा दीजिए भोजपुरी।
0: आपको अगर भोजपुरी सुनना है तो कुछ तो सोच के रखी होंगी ना आप।
1: नील कमल वाला बजा दीजिए।
0: नील कमल की आवाज में कौन सा?
1: कोई भी सैड सॉन्ग।
0: अच्छा, सैड सॉन्ग सुनना है। चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
1: थैंक यू,
0: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने कॉल की।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रंगजन 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करेंगे, व्हाट्सएप की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमने के गाना नाबाजी का मैडम जी, सबके ही बैठल बानी सन इंतजार करता इंसान, बिल्कुल आप सभी के गाना बाजी। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना सुनवा दीजिए, करीना पांडे की आवाज़ है और मंजिल सोनी है जमसर बाजार से, बिल्कुल आपके यानी कि फरमाइश से प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। और बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं खुद तेरी यादों का गुलाम कर दिया, खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, तेरे खातिर खुद को बदनाम कर दिया, क्या सबूत दूं तुझे अपनी मोहब्बत का, सही में एक दिल था वो भी तेरे नाम कर दिया। और इस मैसेज के साथ है वारिस खान जी। और आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि पुलिस तो ये राय देता नहीं लोग की जिंदगी एक, अच्छा लिख रहे हैं कि पुलिस लोग ये राय देता नहीं कि जिंदगी एक नहीं क्या झंड करा, जन चढ़ा था टावर पर ओकरे के लिया के जेल में बंद करा, गर्मी एक नहीं के नहीं खेल लागत इतना ऊपर चढ़ा तारा सन, पहले तो खाली लैका चढ़ा सन, अब तो लैको टावर पर चढ़ा तरी सन, टावर पर जैसे चढ़ा तारा सन, जियरा एक नहीं के जुड़

0: जाता, एकनी के तो शादी हो जाता, लेकिन पुलिस लोग पेरा जाता। जाना के टावर पे चढ़े के रहता, वो रात भर जागल बाड़े सन। सवेरे पुलिस लोग के पता चला था टावर पर टिप्टी लागल आता। हरी कविता लिखे में हम ठेस ना पहुँचावत बानी, जय जवान ई लोग कांड कैले बा लिख के हम बताओ तनी। और मैसेज करे वाला बानी सन्यासी रंजन बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और यहाँ मैसेज बा, लिख रहे हैं कि क्या हाल चाल है। और संजय यादव जी जुड़ चुके हैं दुबई से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि खुद को किसी पर फिदा ना करे, खुद का किसी पर फिदा ना करे, करे तो क्यामत तक जुदा ना करे। ये मना कि कोई मानता नहीं जुदाई में, मगर जब भी तो नहीं जी भी तो नहीं पाते तन्हाई में। और बारिश खान जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास वॉइस के माध्यम से पहुंचा हुआ है। सत्येंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं इराक से, तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं। आवाज़ पहुँच रही है, गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।
1: मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, मैं करवला रिफाइनरी प्रोजेक्ट इराक से बोल रहा हूँ। और मुझे गाना सुनना है कि साजन साजन तुझको पुकारे आज, आप प्लीज ये गाना हमको सुनवा दीजिए। और जो भी सुनने वाले दर्शक उनका सुनवाना चाहता हूँ। और मैं इराक में हूँ, और हो सकता है कल मेरा इधर से फ्लाइट हो जाएगा इंडिया के लिए। मैं सलेमगढ़ बाजार के रहने वाला हूँ। मैं आपका रिमझिम कार्यक्रम बराबर इधर इराक में सुनता रहता हूँ। प्लीज़ ये गाना हमको सुनवा दीजिए, क्योंकि कल यहाँ से फ्लाइट है हमारा, और ये गाना मैं बराबर सुनना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ से लास्ट गाना सुनने के लिए आपको मैसेज किया है, और बाकी गाना जो है मैं इंडिया में आके दो हफ्ते के लिए ही वेकेशन मिला है, तो बाकी गाना इंडिया में सुनेंगे दो हफ्ता, फिर मैं इधर इराक में आ जाएगा। प्लीज़ ये गाना सुना दीजिए।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है, लिख रहे हैं कि फेसबुक पे ना कीजिए प्यार मिलन की आस, चैट करोगे तो तुलसी से निकलेगा तुलसीदास। और सन्यासी रंजन बाबा हैं इस मैसेज के साथ। और यहाँ मैसेज है, अभी गाना सुन रहे थे, सत्येंद्र कुमार जी की फरमाइश थी इराक से और उनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुँच गया, तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं ये।
1: थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए। मैं गाना सुन रहा हूँ, गाना मैं सुन रहा हूँ, मेरा लास्ट सही सॉन्ग है इराक का। इसके बाद इंडिया में सुनेंगे। और सब ठीक है, हम लोग भी यहाँ पर ठीक हैं, कोई दिक्कत वक्त नहीं है। बस एक साल पर मिला है, 15 दिन का छुट्टी कंपनी दिया है।
0: और यहाँ आगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो लिख रहे हैं कि प्यार को जब प्यार से प्यार हुआ तो प्यारे प्यारे को प्यार से पूछा प्यार कैसा होता है, तो प्यार ने प्यार को प्यार से कहा जो इस प्यारी सी शायरी को पढ़ रहा है प्यार उसके जैसा होता है। और इस मैसेज के साथ है मनीष रजाक जी फाजिलनगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और लिख रहे हैं कि हमारा भी हाजिर लगा दीजिए। और हम भी जुड़ गए हैं रेडियो रिमझिम से, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ सचिन कुशवाहा जुड़ चुके हैं पुणे से, बहुत बहुत स्वागत। और लिखते हैं कि पैसा भी क्या मस्त चीज़ है, बचपन में मांगना पड़ता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में यही छोड़ कर जाना पड़ता है। और इसी मैसेज के साथ है सचिन कुशवाहा पुणे से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। निजामुद्दीन जी जुड़ चुके हैं सऊदी अरब से, लिख रहे हैं कि अपने कविता बहुत ही अच्छा अच्छा सुना रहे हैं, और गोपालगंज के मौसम कैसा है आप बताइए, जैसा जरा गर्मी तो आसमान छू रहा होगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ गर्मी बिल्कुल आसमान छू रहा है, धूप जो है 8 बजे ही ऐसी हो जा रही है जैसे कि दोपहर का 1 बज गया हो, बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा है, इतना कड़ाके वाली धूप है और हवा का तो नामो निशान नहीं है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, निजामुद्दीन जी बने रही है साथ में। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सन्यासी रंजन बाबा के भोजपुरी में कविता भेजने के लिए दिल से धन्यवाद है, सुनकर मज़ा आ गया। और नरेश मिश्रा दिल्ली से बढ़ेंगे आगे। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना सुनवा दीजिए, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। और आगे बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, और मैसेज है लिख रहे हैं कि यार ये सोनी की बातें बड़ी निराली हैं, हंसी के साथ उनकी मस्ती भी मतवाली है, माइक पकड़ ले तो महफिल जम जाती है, चुप रहे 1 मिनट ये बात खलती है। और मैसेज के साथ है लुधियाना पंजाब से प्रमुख जी। और यहाँ आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ मैसेज है, और शिवम यादव जुड़ चुके हैं लकड़ी दरगाह सिवान से, लिख रहे हैं कि मेरा भी दुकान है एक साइबर कैफ़े वाला, ऑनलाइन काम करता हूँ आदित्य साइबर कैफ़े के नाम से, और शो से जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और गाना सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आपकी आने की फरमाइश प्ले करेंगे। फिलहाल आज की अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है जमसर बाजार से मंजीत सोनी जी को, और क्यों सुनना है करीना पंडे की आवाज़ में गाना, तो चलिए आपकी आने की फरमाइश जो है प्ले कर दिया, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।
2: आई बिट्टू भैया का स्पेशली हो।

कि हमर आग्रह बा कि हर भाइयन के रंगदार रहे के चाहिए अपन बहिनन खातिर आ जेकरा के खबर मिली कि हमनी के भैया रंगदार बन सके के खोके के हिम्मत होई हमनी के सामने तब मुकेश भैया के अभी मेहरान में लगल रहे थे व्यस्त बनी हो आज के दिन तो हम खुद नाराज बने कि ठीक बा सभी जनता भी आबा भाई लेकिन

हेजा से हम भैया भौजी का कहल चाह ए भैया यही तरह टूट जा भौजी के कह कि तनी ननदो पर ध्यान देवे के बाद में ननदिए काम आई और कोई कम ना आई। जब ससुराली में आई तो ननदिए काम आई और कोई कम ना आई। हम चाहब कि भैया के लेके तनी आज भैया रोड़े चल तनी का पढ़ा देली भाई खेती में कैसे कहा तनी।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। सो में जुड़ना चाहते हैं, सो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज है। और सन्यासी रंजन बाबा जी हैं, लिख रहे हैं कि परेशान मत होना दोस्त, जिस तरह कुछ दिनों के लिए हमारे घर साली आती है और कुछ दिन रहकर चली जाती है, उसी तरह ये भी गर्मी भी चली जाएगी। और इस मैसेज के साथ है सन्यासी रंजन बाबा जी यहाँ बिल्कुल। और यहाँ राकेश भाटी जी जुड़ चुके हैं बक्सर से, बहुत बहुत स्वागत, लिख रहे हैं कि समय मिले तो रितेश पांडे की आवाज़ में गाना सुनवा दीजिएगा और जाए चंदा ले आवा खबरिया गाने की फरमाइश के साथ है। तो बिल्कुल पूरी कोशिश है हम आपकी यानी कि फरमाइश जो है प्ले करें। और इनके साथ में है इनके दोस्त बलराम यादव जी और मंगरू यादव जी और हरिंदर जी, सभी के साथ सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बनी रहिए साथ में। और यहाँ एक और मैसेज है, निजामुद्दीन जी है सऊदी अरब से, लिख रहे हैं कि सोनी जी, जो भाई ये वाला निर्गुण सुनवाए हैं वो बहुत, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। और मैसेज के साथ है निजामुद्दीन जी सऊदी अरब से। और आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग थैंक्स गाना बजाने के लिए, मंजेश सोनी अजमसर बाजार से। आगे यहाँ हजरत अली जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, घर रामपुर से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आपकी बहुत बहुत स्वागत है। एक और यहाँ मैसेज है, बोल रहे हैं मेरा भी गाना बजा दीजिए, बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है आपकी बारी आते ही प्ले करेंगे। अरविंद कुमार जी जुड़े हुए हैं, विजय कुमार जुड़ चुके हैं पनौल से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से ही पहुँचा हुआ है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं गाने की फरमाइश के लिए। और गोल्डन टेलर है तिनफेड़िया से, उनको सुनना है गाना, तो वॉइस पहुंचा हुआ है, तो चलिए प्ले करते हैं, सुनते हैं कौन सी। और वॉइस डिलीट हो चुका है, लिख रहे हैं तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, गाने की फरमाइश के साथ है। तो चलिए आपकी फरमाइश प्ले कर दी है, इंजॉय करते हैं गोल्डन टेलर की फरमाइश पे, इनके पसंद का गाना सिर्फ और सिर्फ रेडियो रंजन पे।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे हम सभी, गाने की फरमाइश करने वाले थे गोल्डन टेलर टिन फरिया से, और लिख रहे हैं कि गाना सुन लिया इन्होंने और बढ़ेंगे आगे। यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सोनी जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। उमाशंकर मिश्रा दिल्ली से जुड़ चुके हैं, और यहाँ संजय यादव है दुबई से, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि जून तो हम लोगों को भून ही, और लिख रहे हैं कि ये जून तो हम लोगों को भून के ही मानेगा। ऐसा बात नहीं है, आप धूप में बाहर नहीं निकलिए, नहीं भूनेगा। और यहाँ आगे एक और मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी जी, कैसी हैं आप? और मैं भी शोर से जुड़ गया हूँ, रोहित जी हैं देहरादून से, और लिख रहे हैं कि खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, तेरी खातिर खुद को बदनाम कर दिया, क्या सबूत दूँ तुझे अपनी मोहब्बत का, सीने में एक दिल था वो भी तेरे नाम कर दिया। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, और संदीप दिखा रहा है नाम प्रोफाइल पे, तो अपना नाम ज़रूर मेंशन करिए कि आप कौन हैं और कहाँ से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है इंस्टाग्राम पे, और झारखंड से फरमाइश पहुँचा हुआ है, फरमाइश करने वाले हैं काजल जी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से, और गाने की फरमाइश है नैना लागे नेह के सागर। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, एमडी फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है। मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बाल मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: ब्रेक हो गया खत्म। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। और हाँ, व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। संदीप शर्मा जुड़े हुए हैं। संदीप जी सासाराम बिहार से और लिख रहे हैं कि ठीक पानी नो। जी बिल्कुल, हम ठीक पानी। और आगे लिखते हैं कि एक सॉन्ग सुनना है, सुना दीजिए। अपना ओढ़नी पे हमार नाम लिखल बा गाना के सॉन्ग के साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और फरमाइश है, बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, आपकी बारी आती है, हम आपकी आने की फरमाइश प्ले करेंगे। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि गनवा बजा दी राधे श्याम रसिया की आवाज़ में। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि चांद की होगी सूरज से मोहब्बत, इसलिए तो चांद में दाग है। चांद ने की होगी सूरज से मोहब्बत, इसलिए तो चांद में दाग है। मुमकिन है चांद से भी हुई होगी बेवफाई, इसलिए तो सूरज में इतना आग है। और मैसेज करने वाले हैं मनीष रजाक जी, फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास कॉल के माध्यम से है, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है, कहाँ से, और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: हम रामाजी प्रसाद बोल रहे हैं से।
0: क्या हाल चाल बा?
1: हाल चाल ठीक बा, रोड पर चला बा, बोल चला बा।
0: तो चप्पल पहन के निकली
1: तो
0: कौन गाना गोर जा रहा वाला सुने के बाद?
1: ठीक है, दोपहरी है ना, गोरा बाजा रहा ला, राम गोरा बाजा रहा ला, तनी हमके गुलिया उठाए ला मोरे मितवा। कल जान बस खुला रहा सुपर फास्ट, वही मैं सोनू सर बैठा नहीं बिना टिकट के आके मुकेश वाला पकड़ा गई, नहीं तो उनके जाए छुड़ावे पड़ल।
0: अच्छा, तो मतलब छुड़ा लेनी ना।
1: हाँ, कहनी कि ना छुड़ाम तो तू ना चली रात खान तो कैसे समझ ली।
0: जी बिल्कुल, छुड़ाव जरूरी रहे। तो गाना प्ले कर दे बानी।
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल के लिए।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे रामाजी प्रसाद थावे से। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि कभी कभी और आगे मैसेज है लिख रहे हैं कि नजरों को तेरे प्यार के इनकार नहीं, नजरों को तेरे प्यार से इनकार नहीं, मुझे किसी और का इंतजार नहीं, ये तो वो वजूद है मेरी खामोशी हूँ, पर तुम यह समझना मुझे तुमसे प्यार नहीं। और इस मैसेज के साथ है सोनू कुमार जी, गौसिया से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिख रहे हैं मैं भी जुड़ गया हूँ सभी को, गुड आफ्टरनून बोलिएगा, बिल्कुल बोल दिए हैं। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि गाना बजाने के लिए धन्यवाद, बहुत ही अच्छा गाना। और एक और यहाँ मैसेज है, राधे राधे मैम और श्याम रसिया जुड़े हुए हैं, राधे श्याम रसिया जुड़े हुए हैं और सॉन्ग सुनना चाहते हैं राधे श्याम रसिया की ही आवाज़ में, तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। नाम मेंशन करिए कि आप कौन है, कहां से, और प्रोफाइल पे नाम तो दिखा रहा है राधे श्याम रसिया। फिलहाल बढ़ेंगे आगे यहाँ अगला मैसेज की तरफ और अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे फरमाइश करने वाले हैं कमलेश्वर कुशवाहा जी जम्मू से, और इनको सुनना है गाना, वॉइस पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: नमस्कार मैडम जी, कमलेश्वर कुशवाहा जम्मू से, हमको गाना सुनना है भंवरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गए राजकुमार, और सुनाना चाहते हैं सबसे पहले आपको रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को, और जम्मू में हमारे दोस्त हैं मुकेश, विक्की, जीवन, मिठू, और आपके साथ सुनना चाहते हैं मैडम जी, सुनवा दीजिएगा, थोड़ा गुनगुना दीजिएगा गाने में।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एस पी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एस पी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एस पी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एस पी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
7: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
7: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
8: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
8: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी 1:55 हो चुकी है स्टूडियो घड़ी में और यहाँ काफ़ी सारे मैसेज है, फरमाई से भी पहुँच रही है और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है लिख रहे हैं कि यही तो सोनी मैम की खासियत है और टैलेंट है, सारे लिसनर की बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा करती हैं फरमाइश को। और मैसेज करने वाले हैं धनिश मिश्रा जी हाँ बिल्कुल। और एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हजरत अली हैं अंसारी, और हजरत अली अंसारी मेरा नाम है बिल्कुल। और फरमाइश है और राधा श्याम रसिया की आवाज़ में गाना सुनना है, तो राधा श्याम रसिया की आवाज़ में कौन सा गाना सुनना है ज़रूर बताइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रंजन को। और यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि मेरा दुख सुनोगे तो रो पड़ोगे, घर वाले मुझे बेचकर एसी लगवाने की बात कर रहे हैं। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन बाबा जी, तो आप ये बताइए कि आपको बेच के एसी मिल जाएगा, एसी तो मिल जाएगा, फिर उसका बिजली बिल भरने के लिए फिर किसको बेचेंगे।

0: और रेडियो रंजन 90.4 सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे सनी जी की फरमाइश थी आंध्र प्रदेश से, और इनकी तरफ से मैसेज भी पहुंच गया, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद गाना सुनाने के लिए। पढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्कार सुनी जी, राधे राधे। और आगे लिखते हैं कि टूटे हुए दिल ने भी कभी बद्दुआ नहीं दी, बस इतनी सी खास थी कि हमने उनकी खुशी के लिए अपनी वफा तक मिटा दी। सुजीत कुमार जी जुड़ चुके हैं प्रेम नगर वस्त्रा राजा लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं अपने गाने की फरमाइश के लिए। और प्ले करेंगे, फिलहाल यहाँ कॉल पहुंच चुका है, तो चलिए बात करते हैं कौन है, कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: हम बरारी जगदीश से बोलते हैं, रविंदर माथे
0: जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक बा, अपन कहीं?
0: हम लोग बढ़िया बा, का होता?
1: हम ठीक, का होता, गर्मी में रवेनु कहते नहीं घर रहे के।

0: बाहर निकले का नहीं किया है
1: जी जी, तो इतना धूप में कहाँ निकले बताएं।
0: तेज धूप निकाले
1: जी जी। तो निकली 3 बजे के बाद निकली, अभी तक काफी तेज धूप बा।
0: धान के बिया गिरा 4 बजे से निकल जाये।
1: तो बिना बारिश में धान के बिया गिराए फिर कैसे? फिर तो पानी डाले के पड़त हुई
0: डेली
1: न, तो फिर इतना धूप में तो सब बिया जर जाये।
0: गाना सुनवा दी
1: जी? बिल्कुल बता दी, कौन गाना सुने के
0: गर्मी के मौसम कोला गाना सुनवा दी
1: खेसारी के।
0: हाँ सुना के बाद रामा जी प्रसाद के अकाल हुआ कहत रवि के जीरो बैलेंस तेल डलाता पैसा से तेल मिलते नहीं के।
1: वो जीरो बैलेंस पे तेल के बात ना कहनी है, वो गाड़ी के बात कहनी है।
0: काल के कहत रवि।
1: हाँ हाँ काले के बोलत रहे कि एक्सप्रेस खुलाती है जीरो बैलेंस
0: पर। तो बिना वो कैसे जाएगी बस?
1: अब ओकर जिम्मेदारी रामा जी प्रसाद के बा कि वो तेल फ्री में डलवाएंगे चाहे पैसा के।
0: बगले के पानी सोन एक के पंचायत वहां ले बात हमरा ले।
1: अच्छा अच्छा
0: ना खींचे अब वहां के आए भेंटो उठो वाला।
1: हाँ तो मतलब एमए खिसियाई के का बात बा? हंसी मजाक के बात बा, तो खिसियाई वाला कौन बात में मैं
0: ना खिसियाई वाला कौन बात नहीं छे।
1: और ज्यादा खिसियाई तो बगले में बानी जाके मना ले। चली ठीक बात है, गाना प्ले कर देले बानी राउ।
0: हाँ ठीक बा सुना दी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सो में कॉल के नी।
2: अरे ई का हो
3: रउआ? तो बोली मत हमरा से। तो
2: अरे त मुंह का हालत का लगाड़ू
3: रउआ? बात मत करी हमरा से, कोनो मतलब है हमरा से? रउआ तो अपने धुन में रहे के बा।
2: अरे बतिया का भल में बताइबे कि बेलमुंड बिगड़बे हमार ना मनबे? बताओ का भइबा।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86164।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
12: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
13: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-651 या 97097-06-575।
14: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रंजीम 90.4 FM में, आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ काफी सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं, और मैसेज है विजय कुमार जी जुड़े हुए हैं पौना लरहर नवादा से, और लिख रहे हैं कि आपके प्रोग्राम से जुड़ गया हूँ, अभी समोसा बना रहा हूँ। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, और गाने की फरमाइश के साथ है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे। तो फिर समाचार के बाद बने रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो रंजीम को, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत दिन बाद जुड़ा हूँ, मेरा भी गाने की फरमाइश है, प्ले कर दीजिए। पहली बार गाना भेजे हैं, और पिछली बार भेजे थे तो नहीं बजाई थी, बिल्कुल आपकी भी फरमाइश दोपहर समाचार के बाद पूरा करेंगे। और एक यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, शकील अहमद जुड़े हुए हैं मुंबई से, और गाना सुनना है सिर्फ तुमसे, तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, लेकिन सिर्फ तुमसे कौन सा गाना सुनना है बताइएगा, और दोपहर समाचार के बाद हम आपकी गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैडम जी, मैं मुकेश यादव बठेला मोहम्मदपुर से जुड़ा हूँ, बलेठा मोहम्मदपुर से, और सॉन्ग सुनना है, सुना दीजिएगा, लिंक भेज रहा हूँ। बिल्कुल लिंक भेजिए, हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिख रहे हैं कि हमारा नाम हजरत अली अंसारी है, और गाना सुनना है पवन सिंह के आवाज़ में, तो आप जो गाने की फरमाइश भेजे हैं मेरे पास, हम आपके गाने की फरमाइश जो है नहीं प्ले कर सकते। गाने की फरमाइश जब भी करिए, अच्छे गाने की फरमाइश करिए आप सभी, मेरा बार बार ये अनुरोध है आप सभी से, लेकिन आप सबको ऐसा लगता है कि सुनाई नहीं पड़ता है या फिर समझ में नहीं आता है। और यहाँ एक और मैसेज है, आगे लिख रहे हैं कि पड़ोसन के दादी को स्प्लेंडर पर बैठा के दवाई कराने जा रहा था, पड़ोसन के दादी को स्प्लेंडर पे बैठा के दवाई करावे जात रहनी, और का जाने कौन फोटो खींच के डाल देले बावे, कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन बाबा जी बनेंगे आगे। यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मैं अनुराधा गुप्ता थावे से, और गाना सुनना है आदमी खिलौना है। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रमजिम को। और यहाँ राम पुकार कुमार हैं और इनकी गाने की फरमाइश थी, और लिख रहे हैं कि धोखेबाज हैं आप, और आप से अच्छा दिव्या मैम थी, और मेरा गाना नहीं बजाया तो हम आपको मैसेज किए हैं कि अगली गाना आपकी है नेक्स्ट गाना, और आप तो गाना जो है फरमाइश ही डिलीट कर दिया, तो फिर मैं आपके गाने की फरमाइश कैसे प्ले करूँ? आपकी जब बारी आएगी हम तभी प्ले करेंगे। अब इसके लिए आप गुस्सा होइए या फिर कुछ भी, आप लोग खुद समझना है, क्योंकि एक साथ में काफ़ी सारे फरमाइशें पहुँचती है और सारी फरमाइशें एक ही साथ तो पूरा नहीं की जा सकती, तो थोड़ा तो इंतज़ार करना होगा सभी को। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से तबीयत ख़राब हो जाएगा मैडम जी, और गर्मी बढ़ गया है, दोबारा कोको कोला बज गया तो नहीं, शो में दोबारा नहीं बजाया, शो में पहली बार ही बजाया गाना। और उमा शंकर मिश्रा है दिल्ली से, और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज थोड़ा लेट हो गया शो में जुड़ने के लिए, लेट से ही सही, जो मैं शो में जुड़ चुके हैं गणेश कुमार हैं पिपरा नारायण से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और लिख रहे हैं कहा अलबादी, तो बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, और गाना सुनना है ओढ़निया पे हमारा नाम लिखता, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे दोपहर समाचार के बाद, क्योंकि 2:15 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, और समय हो चुका है दोपहर समाचार का। तो मिलते हैं आप सभी से इस दोपहर समाचार के बाद, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो रमजिम 90.4 FM। और जिनकी भी फरमाइश से बची है एक बार मैसेज करिए, हम आपके गाने की फरमाइश ज़रूर पूरा करेंगे दोपहर समाचार के बाद।
15: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल

0: ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है। इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जायेगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
4: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
5: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
1: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
0: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
1: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
0: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
6: तो देर मत कीजिए,
7: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
12: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
12: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
14: रेडियो रिमझिम।
13: सुनो दिल।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
3: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-714-86-164।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84-710-30-992 या 90-765-65-750।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 2:45 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, और अगर आपको भी शो से जुड़ना है, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 98-527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं, या फिर कॉल करिए हमें 72-77-16-65-96 पे और जुड़ जाइए अपने सो योर वॉइस योर चॉइस। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ रुख करेंगे, मैसेज यहाँ लिख रहे हैं कि सुंदी टाइम मिले तरी से रितेश पांडे जी की आवाज़ में सॉन्ग सुना दीजिएगा। बिल्कुल, और राकेश भारती हैं बक्सर से, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और यहाँ मुन्ना ठाकुर जुड़ चुके हैं जादवपुर से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, अभी क्रोएशिया में हैं और वहाँ से रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ, लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून, मुकेश यादव हैं गाने की फरमाइश के साथ, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। और आज की अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है व्हाट्सएप के माध्यम से, संदीप शाशाराम बिहार से जुड़े हुए हैं और उनको सुनना है गाना तो अपना ओढ़निया पे हमारा नाम लिख दो। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुंच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और भी गाना सुन रहे थे। संदीप जी की फरमाइश थी और इनके तरफ से मैसेज पहुंच गया लिख रहा है थैंक यू सॉन्ग सुनाने के लिए। बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है और शंभू यादव जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका और फरमाइश के साथ है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि जब रात में कुत्ते रोते हैं और लिखते हैं जब रात में कुत्ते रोते हैं विदेशी सोचते हैं कि डॉग्स की मीटिंग हुई होगी और हिंदुस्तान में कोई आत्मा दिखती होगी तब गलत होने वाला होता है भाई। और इस मैसेज के साथ है सन्यासी रंजन बाबा जी बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है और हजरत जी हैं लिख रहे हैं कि भैया के हार ना सिंगार राधेश्याम रसिया की आवाज़ में गाना सुनना है तो बिल्कुल आपकी बारी आते ही हम आपकी गाने की फरमाइश प्ले करेंगे और लगातार गाने चेंज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करिए। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि मिलना बिछड़ना सब किस्मत का खेल है, कभी नफरत तो कभी दिलों का मेल है, बिक जाते हैं हर रिश्ते दुनिया में, सिर्फ दोस्ती ही यहाँ नॉट फॉर सेल है। और मैसेज के साथ है धनेश मिश्रा जी दिल्ली से। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैडम जी। दीपक जी जुड़ चुके हैं मुंबई से, लिख रहे हैं कि सॉन्ग सुना दीजिए आज तुझसे जो कहना है कहने दे, बिल्कुल आपकी आने की फरमाइश है प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ आगे एक और मैसेज और लिख रहे हैं कि गाना सुनवा दीजिए प्लीज़। तो बिल्कुल अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, गाने को इंजॉय करिए। और गाने की फरमाइश करने वाले हैं अरविंद कुमार जी और सुपौल बिहार से जुड़े हुए हैं और उनको सुनना है गाना ये बाबा कैसन मिलल दुल्हावा। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ।

0: करें 9006978856 या 6203139564।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
4: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अगर आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, जिस माध्यम से चाहे आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज है, लिख रहे हैं कि दीजिए नमस्कार, कल हमारे गाने की फरमाइश किए थे नहीं बजा पाई थी, आज प्ले कर दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका ब्रजेश मिस्त्री जी, जुड़े हुए हैं चरमा जिला उत्तर प्रदेश संभल से। तो बिल्कुल बने रही हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, बहुत बहुत स्वागत। एक और यहाँ मैसेज है, राहुल टेलर जुड़ चुके हैं जिला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और लिख रहे हैं गाने का नाम है अपनी आंखों को सितारों में छुपा लूंगा, और गाने की फरमाइश के साथ है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरा करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास कॉल के माध्यम से है। तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है।
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: निसार अहमद लखवी दरगाह सिवान
0: जी, कैसे हैं निसार जी?
1: ठीक है, ठीक है
0: जी।
1: आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया। खाना पीना हुआ कि नहीं?
1: जी जी, खाना पीना हो गया।
0: चलिए, तो कौन सा गाना सुनवा दे आज आपको?
1: वो लता का आवाज में है, जब भी जी चाहे। जब भी जी चाहे दुनिया बसाने, ये सही गाना है
0: जी। और सुनवाना भी है,
1: पहले तो आपको, भारती जी को, दिनेश मिश्रा है दिल्ली वाले, और प्रमुख भाई लुधियाना पंजाब वाले, इरफान भाई, रानी हरकुआ, और किसका किसका नाम भी है
0: जी,
1: मैं लोग सुन रहे हैं उनको, सभी लोग को सुना दी।
0: चलिए, तो प्ले कर दिए गाना आपकी
1: जी, थैंक यू,
0: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं कॉल किया,
1: शुक्रिया।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे निशार अहमद जी की फरमाइश थी, काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश। और बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, मैसेज काफ़ी सारे हैं लेकिन फरमाइश से भी है, तो बिना देरी की अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश है हजरत अली जी हैं, इनकी फरमाइश है और इनको सुनना है राधे श्याम रसिया के आवाज़ में, बहिया के हार ना पाई बोल। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दिए, इंजॉय करिए अपने गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम पे।
1: तुम इतनी बदल जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, अब हम न जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं, हम क्या करें गजल क्या करें, हम प्यार में धोखा खा बैठे, ये चैनो करार गवां बैठे, अपने ही हाथों से हम खुद इस दिल में आग लगा बैठे, हम कांटों पर करवट बदलें वो प्यार की सेज सजा बैठे, हम प्यार में धोखा खा बैठे, धोखा

मगर हमारी तरह कौन तुझको चाहेगा, जरूर कोई तुझको हसरतों से देखेगा, ए जरूर कोई तुझको हसरतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164। 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
0: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
1: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करे 87-894-18744।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। 3:15 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, और अगर शो से आप भी जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ

0: दीपक, चूँकि फरमाइश थी मुंबई से और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले हाँ मैसेज है और लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, राकेश चौहान दुबई से जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं साथ में मेरे दोस्त हैं अमित जी, वो भी जुड़ चुके हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, बने रहिए साथ में। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं नमस्ते नमस्कार मैडम जी कैसी हैं, और प्रीति रैदास हैं ब्लेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से, लिख रहे हैं मेरा भी हाजिर लगा दीजिए और अभी जुड़ गई हूँ शो से बहुत और शो को सुन रही हूँ, चलिए अच्छी बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अगली फरमाइश से पहले यहाँ मैसेज है वारिस खान कतर से, लिख रहे हैं कि तेरी मेरी बात होना जरूरी है, जैसे दिन के बाद रात होना जरूरी है, जरूरी है दोस्ती के लिए एक बार बात होना, पर मोहब्बत के लिए एक मुलाकात होना जरूरी है। तू मेरे पास हो या ना हो इतना जरूरी नहीं, पर तेरी एक तस्वीर मेरे पास होना जरूरी है। और आगे एक और लिख रहे हैं कि दोस्ती होती है ऑन टाइम, हम निभाते हैं फुल टाइम, याद करोगे एनी टाइम, तुम खुश रहो ऑल टाइम, और यही दुआ है मेरी लाइफ टाइम। और मैसेज के साथ है वारिस खान जी कतर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं और सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है।
1: जी
0: का हाल चाल बा
1: मैडम जी, अपन समाचार बताई।
0: हमरो बढ़िया बा,
1: अब 12 वर्ष से कांग्रेस हम सुने नहीं, जब स्कूल बंद बताया 1 तारीख से लेके 22 के खुली।
0: अच्छा जून में 22 के, मतलब ये महीना के 22 के।
1: हाँ यही में जून में 1 तारीख का बंद हो गया हुआ है,
0: गर्मी की छुट्टी।
1: हाँ गर्मी की छुट्टी मैडम जी।
0: अच्छा अच्छा चलिए फिर बढ़िया बा।
1: हाँ तो खाना में हम कहना हूँ मैंने कौन में ऐसी होने जरूरी रहे लगता है ना, तो घर दुबारे अपना।
0: तो कौन गाना सुना दिया आज?
1: गाना हम तन के सक जाओ तनी।
0: जी बिल्कुल।
1: बिना मतलब के प्यार करे उतमाईया, बिना मतलब के प्यार करे उतमाई, रोग जावन भी हो खे उ सब के दवाई है, रोग जावन भी हो खे उ सब के दवाई है, बिना मत

0: आई मैडम जी
1: प्ले कर देने गाना जी
0: सुनी ना सबसे पहले रहुआ के सुनवाओ के चाहता नहीं जानी जितना लोग मैंने रेडियो रिमजी से जुड़ल बस सब लोग के सुनवाओ के चाहता नहीं देखी हम परिवार पालो वही हमारा सब लोग सुनवाओ के चाहता नहीं जानी
1: जी जी बिल्कुल
0: हम सुने ना कहनी एगो बती है कि 12 बजे से कम देर से मैंने कब चढ़ाइयो कह दी है किसी आए मौत कबो कबो मैंने फोन लाग जा रहा लेकिन एने ओने हो जा रहा तो वैसा कोनो हमारा बात नहीं क्या हम कहे नहीं कि लागी चाहे ना लागी
1: जी चले ठीक बात है
0: और हम टाइम मिला आदमी सुना लाजन नहीं
1: जी बिल्कुल समय जब मिले तब रेडियो ऑन करी और जुड़ जाए शो से
0: छोटका मोबाइल में सब सुने नहीं हम जल नहीं अच्छा
1: अच्छा अगर
0: छोटके को रख ले बनी छोटके को रख ले बनी वही से अभी फोन में कर लेनी
1: अच्छा मतलब दो को फोन बाटे एगो से सुने नहीं एगो से कॉल करे नहीं
0: सुनी ना एगो पुरान रहे के चाचा ला मोबाइल पुरान तो वही में ईयर फोन वाला लगा के वही में सिम नहीं छे
1: अच्छा
0: तो वही से सुने नहीं ईयर फोन लगा के आई छोटका एगो 1000 में किनवी है जियो वाला जियो भारत वाला
1: अच्छा अच्छा
0: हां तो ऐसा सुने नहीं आप मैंने फिल्म में सब समाचार उस रात 100 दिन में चल ला
1: चलो फिर बढ़िया बा
0: बजा दिया बजाने खातिर थैंक यू कहे कि हम मैसेज मैंने कॉल कर के जानते नहीं ठीक बनू
1: ठीक बा एंजॉय करे पूरा फैमिली के साथ अपन गाना के
0: ठीक बा प्रणाम
1: प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल करनी

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख का ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे ने कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने राजसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।

94.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो संजय यादव है दुबई से लिख रहे हैं कि अच्छा गाना बा मैम। और एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि नमस्कार मैडम जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है और प्रोग्राम सुनकर हम लोग ने भी मैसेज कर दिया। और मैसेज करने वाले हैं गुरु नानकपुरा बठिंडा पंजाब से किशोर शबलनिया जी। और आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ मैसेज है, शकील अहमद जुड़ चुके हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत आपका, सिर्फ तुमसे गाना सुनना चाहते हैं तो सिर्फ तुमसे। और गाना सुनना है यार भी मिलेगा दीदार भी मिलेगा, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश रहेगी नेक्स्ट वाली। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है और गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं अली मोहम्मद जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बनी रही हमारे साथ में। और आपके गाने की फरमाइश जहाँ तक है, कल ही आपके गाने की फरमाइश पूरा किए थे तो अगली फरमाइश एक सप्ताह बाद पूरा करेंगे, फिलहाल अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है गुड्डू रंगीला की आवाज़ में, गाना है जुदाई डोली डो का एक कहार। और गाने की फरमाइश करने वाले हैं साधु राय जी छपरा बिहार से, तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दिए, इन्जॉय करिए अपने गाने को। रेडियो रंजन पे

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे साधु राय जी छपरा बिहार से और इन्होंने गाना सुन लिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि बेस्ट सॉन्ग मैम, और मैसेज करने वाले हैं अमित कुमार जी समस्तीपुर से। और बढ़ेंगे आगे इसकी अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है सिर्फ तुमसे गाना सुनना है। और शकील अहमद है मुंबई से और इनका सुनना है गाना कभी यार भी मिलेगा दीदार भी मिलेगा। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दिया, एंजॉय करिए अपने गाने को, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम।

94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे, नाम है इनका शकील अहमद जी, हैं मुंबई से, और इनकी तरफ से मैसेज है कि गाना सुन लिया है इन्होंने। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है लिखते हैं कि मैडम जी मेरा गाना बजा दीजिए, बिल्कुल आपकी भी गाने की फरमाइश प्ले करेंगे, लेकिन आज का समय जो है वो ख़त्म होने की कगार पे है। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम आज के लिए बाय बाय, और दिनेश मिश्रा दिल्ली से जी बिल्कुल बाय बाय। और बढ़ते हैं आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास है वो है संभल जिला उत्तर प्रदेश से विजय मिस्त्री जी का, और इनको सुनना है गाना। कल भी इनके गाने की फरमाइश थी और प्ले नहीं हो पाया था, तो आज प्ले करते हैं आपसे पहले ना आपके बाद गाने की फरमाइश के साथ है अलका याग्निक की आवाज़ में ये गाना और विनोद राठौर की आवाज़ में। तो इंजॉय करते हैं विजय मिस्त्री जी की फरमाइश पे इनके पसंद का गाना सिर्फ और सिर्फ रेडियो रंज।

और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश है ब्रजेश मिस्त्री जी के, और खड़ी इशारा कर रहे हैं शो से विदा लेने का। तो आप सभी दीजिए इसी गाने के साथ मुझे आज के शो से जाने की इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। आप सभी से फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक

0: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग

0: कास्टिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
1: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
8: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
9: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
8: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
3: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
8: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द, या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
10: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
11: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
11: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
12: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
13: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
12: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
13: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
8: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
13: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
8: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो, तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
13: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
8: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
14: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
15: रेडियो रिमझिम,
14: सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84-710-30-992 या 97-65-65-750।
5: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान, संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03 62042434-03।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
10: All right.

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
1: और 9097-6160-02।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9797065775।
8: तू जो है,
9: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
6: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
7: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
8: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
7: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
8: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27, बंजारी, गोपालगंज।
8: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
8: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क 99393965930।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
5: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
0: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
1: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
0: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्ते लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
5: उत्तर बिहार का गौरव,
9: सारण प्रमंडल की शान,
5: गोपालगंज की धड़कन
9: और अपने भाषा की पहचान,
5: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
9: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
2: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर

0: इंसान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल।
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते, अनिल बात कर रहा हूँ छोटपुर से।
2: जी नमस्ते, क्या हाल चाल है अनिल जी?
1: बस बढ़िया है, आप आ गई, बाहर आ गया और इस तापमान में भी लग रहा है ठंडक आ गया।
2: ये तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
1: हाँ, एक ना आप गायब थी, मतलब सॉरी गायब नहीं कहा जा सकता, कोई कार्यवश ही बाहर थी, थोड़ा सा गलती हो गया बोलने में।
2: कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है।
1: हाँ, मान भी ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं अभी।
2: तो कोई इरादा नहीं था मेरा भी इतना दिन रहने का, लेकिन समय का कुछ कह नहीं सकते।
1: इसीलिए दो दिन कार्यक्रम में आपके जुड़े हैं लेकिन गाने का फरमाइश नहीं की।
2: चलिए कोई नहीं, आज बता दीजिए।
1: अभी तो कॉल मिला रहे थे, एक ही बार में लग गया।
2: पहला कॉल भी है आपका?
1: पहला ही है। चलिए तो और अच्छी बात है, खुशी दुगना हो गया और ये भी चमत्कार से कम नहीं है।
2: बिल्कुल, ये तो और भी बड़ा चमत्कार है कि पहला कॉल लग जाए। तो बताइए,
1: गाना सुना दीजिएगा। कुमार सानू का एक गाना है, इस फिल्म कौन सा फिल्म है, कुली नंबर वन मूवी से है, क्या मजनू क्या रांझा क्या फरहान।
2: अच्छा, और गाना डेडिकेट भी है।
1: सबसे पहले आपको और सारे लिसनर्स को,
2: आपका लल्ला का क्या हाल है?
1: लल्ला ठीक है।
2: चलिए,
1: कभी कभी से खिलाते खिलाते बोलते थे कि आपकी सोनी बुआ जो है वो पता नहीं कहाँ चली गई है।
2: अच्छा,
1: तो अब तो खिलखिलाता है, बहुत अच्छा हंसता है, अब शरारती थोड़ा थोड़ा

0: हो रहा है।
1: कितना दिन का हुआ? 4 महीना का हुआ तो
0: नहीं, 3 महीना हुआ अभी।
1: 3 महीना हुआ अभी। हाँ। तो अब शुरू होगा। 5 महीना होते होते बच्चा तो थोड़ा हो ही जाता है।
0: हाँ, आशीर्वाद रहेगा तो सब सही है। मान लीजिए कि आप पाना क्या है, एक शुभचिंतक के रूप में ही तो आप पूछ रही हैं।
1: जी बिल्कुल
0: जी, नहीं तो आपसे तो एक रेडियो का ही दोस्ती है जो भी है।
1: सामने से तो नहीं जानते हैं, जो भी है बातचीत रेडियो पे ही है।
0: जानती हैं, वक्त इतना मतलब मासूमियत से निकल जाता है ना कि उसका कोई मतलब ये नहीं है। हम सोचते सोचते आज तक नहीं आए गोपालगंज।
1: कोई नहीं, जिस दिन आना होगा उस दिन खुद तो खुद आ जाइएगा। और पता भी नहीं रहेगा कि आज जाना है, और आदमी जब जाना होता है तो चला ही जाता है।
0: चला ही जाता है। और ये भारती जी आई थी, वो
1: है अभी। अच्छा, बोले कि आज हमें रिकॉर्ड करने दीजिए, काफी दिन हुआ लिसनरों से बात किए हुए।
0: हम भी सोच रहे थे अगर आज के रिकॉर्डिंग में आप नहीं होती ना तो हम खुद कॉल करते आपको।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो तब तक आप मिल ही गई, शायद मन में था वो मन में आ गया।
1: बोलते हैं ना कि अगर शिद्दत से कुछ चाहो तो मिल जाता है।
0: मिल जाता है। हाँ
1: चलिए फिर बात होगी।
0: ठीक है
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल किए।
0: थैंक यू,
1: वेलकम।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टिमचिम 90.4 FM में।
0: हम रामा जी बोलते हैं ठाणे से।
1: जी, क्या हाल चाल बा रामा जी?
0: हाल चाल क्या कहा जा, हम इतना होता कि पसीना से कपड़ा भींग जाता।
1: कोनो बात ना, पानी से नहाए के जगह पसीने से नहा ली।
0: वह तो कम होता, कहा से जा। गाना सुना दी?
1: जी बिल्कुल, बता दी गाना के नाम।
0: कहे का सब कोई अपन अपन कहे वाला केहू नहीं के।
1: नहीं, वो तो बात बढ़ ले, अभी के समय ऐसा बा। तो गाना डेडिकेट भी रही,
0: जितना तो सुन जा सब कोई रही।
1: चली कर दी गाना।
0: हाँ कर दी। नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
10: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
11: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
12: बात, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो, हूँ
14: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टीम 90.4 FM में।
13: गुड मॉर्निंग मैडम
14: जी। गुड मॉर्निंग
13: रामा संसारी बोल रहे हैं
14: जी। क्या हाल चाल है?
13: बढ़िया है, आपने सुनिए।
14: मेरा भी बढ़िया है। तो क्या हो रहा था अभी?
13: बस सिलाई का काम करते हैं, काम हो रहा है।
14: अच्छा अच्छा, दुकान पे है अभी
13: जी।
14: तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
13: हमको कुल्ली फिल्म का गाना है लम्बू जी लम्बू जी
14: जी।
13: और ये गाना इसमें रेडियो रंजन सुनने वाले श्रोता है सबको सुनाना चाहता हूँ, जो हमारे दुकान पे कारीगर काम करते हैं सब सुनेंगे
14: जी। तो प्ले करे गाना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुने कॉल।
13: धन्यवाद।

0: तेरा स्पेशल इनाम।
1: हम इस लड़की के बेजार हो गए। ये लड़की घर से बार बार भाग जाती।
2: अब हमारे पास पैसा नहीं ला, तुम इसको शादी बना के लेके जाओ, ये तुम्हारा स्पेशल इनाम।
1: लंबू जी।

0: हेलो।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजान 90.4 FM में।
0: जी हम बनारस से रमजान
1: जी। कैसे हैं रमजान जी?
0: बढ़िया है।
1: तो क्या हो रहा था अभी?
0: जी हम लोग काम कर रहे हैं, अभी त्योहार था, अभी काम खुला है, त्योहार बीत गया, काम खुला है, काम हम लोग काम चालू कर रहे हैं रेडियो रमजान सुन रहे हैं।
1: तो अच्छी बात है। तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
0: सुनवा दीजिए मूवी रक्षक का, सो सट्टी का।
1: मूवी रक्षक का
0: उसमें का वो गाना है कुची कुची।
1: अच्छा, और डेडिकेट भी करिएगा
0: जी। सबसे पहले आपको और जितने श्रोता सभी को, अपने हम भी सुनेंगे, अपने दोस्त लोग को भी साथ सुनेंगे।
1: चलिए तो प्ले करना गाना
0: जी।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R।

0: और अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार, महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-30912 या 9765-65750।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
7: बात, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो रेडियो रिमझिम
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: जी हेलो मोर चॉइस ने।
7: जी जी हेलो माय चॉइस में।
8: धन्यवाद बहन जी।
7: जी आप अपना नाम बता दीजिए।
8: जी मैं ग्राम जुनवानी, स्मृति नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आपका नियमित श्रोता सुरित रमेश साहू बोल रहा हूँ बहन जी।
7: जी जी क्या हाल चाल है?
8: बहुत बढ़िया है बहन जी, और हम तो अभी एकदम बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है और अपने खेती बाड़ी के कार्यों में व्यस्त है बहन जी।
7: ये बढ़िया है, वो भी है।
8: और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं बहन जी कि जितने हमारे रेडियो रिमझिम के आर्य उद्घोषक भाई बहन हैं, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे, भगवान से यही प्रार्थना है।
9: धन्यवाद। तो आज गाना कौन सा सुनवा दे आपको?
8: आप कौन बोल रही हैं? आपकी आवाज जो है बहुत ही मधुर, मनमोहक, मीठी और प्रोग्राम पेश करके क्या कहने बहन जी।
9: जी मेरा नाम सोनी है।
8: सोनी बहन जी, तो आपके लिए दो लाइन

0: पंक्ति है, अगर इजाजत हो तो बोलूं।
1: जी बिल्कुल
0: जी। खामोश रात के पहलू में सितारे नहीं होते, खामोश रात के पहलू में सितारे नहीं होते, इन आँखों में रंगीन नजारे नहीं होते। हम भी न करते परवाह अगर रेडियो रिमझिम से बहन सोनी जी के द्वारा पेशकश किया गया कार्यक्रम हेलो चॉइस। इतने प्यारे न होते, इतने प्यारे न होते, इतने प्यारे न होते सोनी बहन जी।
1: क्या बात है।
0: और गीत ऐसा है बहन जी, गीत तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ आपके कुछ प्रशंसक श्रोताओं का भी नाम ले लूं क्या बहन जी, इजाजत हो तो। जी तो हमारे कन्या दमोह बालाघाट से श्रीमान धुरवा राम साहू गुरु जी है, अखिलेश यादव जी है, डोंगरिया मलाटन से मुन्ना लाल पटले जी है, मालेगांव मलाजखंड मध्य प्रदेश से हमारे बसंती बघेल बहन जी है, और हमारे सकर सोमनी जिला राजनांदगांव से नारायण लाल साहू जी है, गणेश धाम परसुली से जितेंद्र दास मानिकपुरी है, आर्यन रेडियो के आप ही की तरह आरजे उद्घोषिका बहन पूनम गौतम जी है, और हमारे सागर मध्य प्रदेश से बहन जी प्रोफेसर भाई साहब हमारे चंद्रेश गौहर जी है, दुल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप है, ब्रिजेंद्र भाई विश्वकर्मा साहब जी है, और हमारे मुकेश नायक सर जी है
1: जी।
0: तो बहन जी और गीत ऐसा है बहन जी कि हम तो आपके रेडियो रिमझिम से बहुत ही प्रेम मोहब्बत करते हैं बहन जी,
1: जी।
0: तो ऐसा है कि उससे संबंधित एक गाना है, बात इतनी सी है कह दो कोई दीवानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। क्या है बहन जी, आज इंसान जो है इतनी बुद्धिजीवी है कि आज मानव जो है चांद सितारों पे पहुंच गए बहन जी। आपको भी भगवान ने इतनी बढ़िया आवाज और इतनी बढ़िया आवाज के नेमत दे रखी है बहन जी कि आपके आवाज के माध्यम से कहां नहीं पहुंच गए बहन।
1: चलिए तो फिर बात होगी आपसे।
0: जी बहन जी।
1: जी
0: बहन जी, तो यह गाना यदि आपके उपलब्ध होगा या कहीं मोबाइल स्क्रीन पर निकल जाए तो जरूर सुनवाइएगा बहन जी, क्योंकि यह गाना बहुत ही भावपूर्ण गाना।
1: जी ये गाना बिल्कुल चलेगा, शाम को 5 से 7 के बीच में चलेगा और कल सुबह 9 से 11 के बीच में, ठीक है।
0: जी धन्यवाद सोनी बहन जी, आपने मेरी कॉल उठाए, कॉल रिसीव की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं रेडियो रिमझिम का सदैव दिल से आभारी हूँ बहन जी।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हेलो माई चॉइस में कॉल किया।
0: धन्यवाद बहन जी।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं, तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
9: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, सुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
8: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
10: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
8: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
8: और 90-97-61-60-02।
11: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
12: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
11: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा।

0: आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
1: आँखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: नमस्कार सोनी जी।
4: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंची 90.4 FM में।
3: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं सहारनपुर से।
4: जी, कैसे हैं धर्मेंद्र जी?
3: बढ़िया
4: है। तो क्या हो रहा था अभी?
3: अभी काम ड्यूटी चल रहा है।
4: अच्छा अच्छा, तो आपको कॉल रिसीव करते कैसे पता चला कि मैं ही हूँ?
3: आवाज तो पता चल गई।
4: अच्छा, चलिए फिर तो अच्छी बात है।
3: लगा था ना बीच में, एक महीने घर पे गए थे, कॉल नहीं किया। शादी था घर पे।
4: किसका शादी था?
3: भाई का शादी था, 12 मई का अभी खत्म हुआ। मैं आया इधर परसों, आया इधर कल को पहुंचा, कल से ड्यूटी कर रहा हूँ।
4: चलिए बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
3: दूध का कर्ज में तो सुनवा दीजिए, तुम्हें दूध से जुदा कैसे करेंगे।
4: और सुनवाना भी है?
3: रंजीत है इधर, अपना वरुण पांडे है, रिंकू पांडे है, अपना
4: प्ले कर रहे हैं गाना आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल की।

0: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजी में।
1: थैंक यू मैम। मैं अहमद रंजी साढ़े आवाज नंबर 1 से।
0: जी जी, क्या हाल चाल?
1: ठीक है, सनी मैम बोल रहे हैं?
0: हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं।
1: क्या हाल चाल है मैम?
0: एकदम बढ़िया। तो क्या हो रहा है?
1: आशी मैम भी काम करके वो, लेकिन आवाज से आपको पहचान दिया जाता है।
0: वही करने वाली थी, लेकिन बोले कि दीजिए आज हम बात करते हैं, थोड़ा काफी दिन हुआ लिसनर से बात की
1: है।
0: जी जी,
1: तो नाश्ता हुआ है?
0: हाँ जी, नाश्ता हो गया है, हम खाना खा के आए हैं।
1: लेके आई है?
0: हाँ, लेके भी आए हैं।
1: नहीं लेके आइएगा तो बोलिएगा, हम आएंगे।
0: बिल्कुल, हम आ जाएंगे।
1: आइएगा मैम, आइए, आपका स्वागत है।
0: जिस दिन नहीं लेके आएंगे, फुर्सत में रहेंगे तो जरूर आएंगे, ज्यादा दूर थोड़ी है।
1: आइए,
0: तो गाना कौन
1: के लिए बन रहा है?
0: अच्छा जी, बिल्कुल,
1: अभी कभी के साथ, ऐसा नहीं अकेला।
0: हाँ, वो भी तैयार है, ऐसा तो बात नहीं है, आप तैयार है तो वो नहीं रहेंगे। तो बताइए, आप गाना कौन सा सुनवा दें?
1: गाना हमको सुनवा दीजिए, बेखुदी मूवी से, आए ही मेरे याद, जब होगा पूरा हाल तो फिर ये रुमाल मुझे याद करना।
0: और गाना डेडिकेट भी रहेगा
1: सबसे पहले आपको, कमरान भाई को, दिलीप भाई को, राघव जी को। चलिए, आप सुनाना है जो भी रेडियो जिन तरह से भी सुन रहे हैं सभी को।
0: चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना।
1: थैंक यू मैम, सलाम।
0: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर माय कॉल।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी।

0: के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादा पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
7: बात, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: मैम
9: जी, गुड मॉर्निंग,
8: कैसी हैं मैम?
9: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं?
8: मैं भी अच्छी हूँ।
9: आपकी आवाज कट रही है।
8: हेलो, बताइए।
9: सब बढ़िया है जी, आप बताइए, आपके घर परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
8: सब लोग अच्छे हैं। बढ़िया है।
9: आपकी आवाज कट रही है, आप थोड़े नेटवर्क वाले एरिया में जाइए।
8: हेलो
9: जी, कौन बात कर रही हैं आप?
8: निशा कुमारी, बढ़िया सुंदर।
9: अच्छा अच्छा, तो निशा जी आप हैं कहाँ अभी, घर के अंदर है रूम में?
8: रूम में,
9: इसलिए आवाज कट रही है, दरवाजे पे चले जाइए।
8: ठीक है, बोलिए। सुनाई दे रहा है
9: जी? जी, तो क्या कर रही थी निशा जी?
8: अभी कॉल लगा रही थी, लगाते लगाते अब जाकर लगा है।
9: चलिए, लग तो गया, तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
8: मैम, आपका खाना पानी हो गया है कि नहीं?
9: नहीं, खाना पानी तो हो गया है, वो तो घर से ही करके आते हैं।
8: चलिए ठीक है, धूप तो बहुत तेज हुई है।
9: धूप तो हुई है, क्या करे, धूप से बचने का कोई तरीका बताइए।
8: धूप से बचने का बहुत तरीका है, चार लाना है।
9: धूप देख के तो बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है।
8: धूप होते होते घर में सब लोग चले जा रहे हैं।
9: 9 बजते कोई बाहर दिख नहीं रहा है। चलिए फिर बात होगी, बता दीजिए गाने का नाम।
8: तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ यादें आता है।
9: अच्छा, और गाना डेडिकेट करिएगा।

0: जी मैम, आपको और दिव्या मैम को और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरजे को और मेरी दीदी है उनको भी और छोटे भाई है उनको भी।
1: चलिए तो प्ले करेगा ना
0: जी
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय
0: जी
1: चॉइस में कॉल के।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
10: Now pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
10: Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: जी, योगेश जांगड़े के मैं सर छत्तीसगढ़ से।
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी धन्यवाद
2: जी। क्या हाल चाल है योगेश जी?
1: बढ़िया है, अच्छा है, घर ही में है अभी।
2: अच्छा अच्छा
1: जी।
2: तो मौसम कैसा हुआ है आपके उधर?
1: मौसम तो वही धूप छाव रहता है, लेकिन बारिश का इंतजार है।
2: बारिश का इंतजार तो हम लोग को भी है इधर।
1: जी,
2: तो परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
1: सभी अच्छे हैं।
2: ये तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
1: फिल्म ब्रह्मचारी से सुनवा देंगे, आजकल तेरे मेरे चर्चे हर जो प्यार के चर्चे हर जो बान पर।
2: जी, सबको मालूम है और सबको खबर होगी।
1: सबको खबर हो गई जी।
2: चलिए, और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
1: श्रीपाल गोयल जी है, लोकेश वर्मा जी है, दिलीप पहुजा जी है, रोशन देवांगन जी है, तुकाराम जी है, भगवान सिंह परमार जी है, गौतम जी है, प्रेम सिंह जी है और तमाम साहब।
2: चलिए तो प्ले करे गाना।
1: जी धन्यवाद
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे इसमें कॉल किया।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।
0: पहचान गए?
1: पहचान तो रहे हैं, ठीक है, काफी दिन बाद आवाज सुन रहे हैं। तो धनेश मिश्रा?
0: हाँ हाँ जी
1: जी। जी जी।
0: कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: आज आपको मिल गया रिकॉर्डिंग करने का?
1: हाँ मिला, और हम भी बोले कि काफी दिन हुआ तो थोड़ा बात करें।
0: हाँ हाँ जरूरी भी है।
1: जी जी।
0: उनसे सारे लोग दुखी है।
1: ऐसा नहीं बोलिए, वो भी बात नहीं है।
0: नहीं तो हम क्या बोले, सब लोग तो यही बोल रहा है।
1: नहीं सब लोग नहीं, दुखी क्यों है भाई, वो उनको भी मौका दीजिए।
0: मौका दे ही रहे हैं। हाँ। बिल्कुल मौका दे रहे हैं, बिल्कुल मौका दे रहे हैं।
1: नहीं है तो थोड़ी सी हिचकिचाहट तो होगी बात करने में।
0: उनके उनके ऊपर आप थोड़ा वो करो कि सीख जाए।
1: हाँ तो चलाए। वही किया जा रहा है।
0: हाँ, क्योंकि आप छुट्टी पर आएंगे तो मैम चला लें।
1: हम नहीं थे उस बीच में, वो आई है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो गई।
0: तो थोड़ी सिखाइए, ढंग से सिखाइए।
1: बता रहे हैं, उनका भी ट्रेनिंग चल रहा है, बहुत जल्द आएंगी वो भी।
0: ऐसे ठीक है, हम उनकी नहीं कह रहे हैं कि वो, मैंने और सारे लोग तो बोल रहे हैं ना कि नहीं चलाती है।
1: हाँ बस बात ये है कि अब सबको मेरी आदत हो गई थी, अब अचानक से चेंज हुआ तो थोड़ी सी परेशानी हुई सबको। जैसे उनको भी नए लोग मिल रहे हैं तो उनको भी परेशानी हो रही है, आप लोगों को भी है बस। और कुछ नहीं, वो भी आदत हो जाएगा उनको भी सुनते सुनते।
0: नहीं ठीक है।
1: तो बता दीजिए गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
0: मेरा तो आज एक लिकेश तबाही का गाना है। लिकेश तबाही और अवकाश दिखा देलू, टेड सॉन्ग है।
1: अच्छा अच्छा,
0: वही आज सुना दीजिए।
1: और डेडिकेट भी करिएगा।
0: डेडिकेट पहले नंबर तो आपको तो सुनाना ही नहीं था, लेकिन आपको ही पहले नंबर सुनाएंगे। दिव्या मैम सुनेंगी और भारती मैम भी सुनेंगी। वही आबादी सुनेंगे, सारे लोग सुनेंगे।
1: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
0: चलिए तो चलेगा ना?
1: जी बिल्कुल चलेगा।
0: चलिए ठीक है,
1: चलिए। थैंक यू
0: मैम।
1: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं कॉल किया।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा नर्सरी से क्लास 10वीं तक कंप्यूटर एजुकेशन बस फैसिलिटी रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
0: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए
0: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: गुड मॉर्निंग
11: जी। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है गणेश जी?
10: अच्छा पहचान गए क्या?
11: बिल्कुल।
10: इतना दिन से कहाँ भागे थे आप?
11: भागे नहीं थे भाई, कुछ काम था।
10: बाकी ज्यादा दिन छुट्टी हो गया, 10-15 दिन हो गया। और सब बताइए?
11: सब बढ़िया है।
10: भारती जी कहाँ पे हैं?
11: भारती जी भी यही है, दूसरा काम कर रही है।
10: तो धूप निकला है ना?
11: धूप का तो पूछिए मत।
10: खाली है कि नहीं?
11: नहीं खाना तो खा के ही आए हैं, घर से बिना खाए मम्मी आने देगी क्या?
10: नहीं नहीं ऐसे ही है।
11: वही तो,
10: बड़ा दिन हो रहा है, भूख तो लगेगा।
11: हाँ तो लंच टाइम में लंच करेंगे तो लंच भी लेके आते हैं। तो और बताइए दीदी का क्या हालचाल है? ससुराल से वापिस आई कभी घूमने के लिए?
10: घूमने के लिए तो कल आई थी, कल नहीं सोमवार के दिन।
11: अच्छा तो एक ही दिन
10: मेरे गाँव पर रहनी है तो वहाँ पे कलश उठाते हैं तो वहीं पे आई थी।
11: हाँ देखे थे हम भी वीडियो में, सिवान में कहीं हुआ
10: बरहानी बाजार बोलता है, बरहानी बाजार
11: वो चौरा के तरफ से गया था कल।
10: हाँ हाँ, मेरा मम्मी भी बोल रही थी, सुनी थी हट गई क्या, मेरे को नहीं बोल रहा है क्या पता जिसके से हट गई।
11: नहीं हटेंगे तो बता के जाएंगे।
10: नहीं तो भारतीय ना, भारतीय दीदी तो उसका उतना थोड़ा बोलने के हैबिट नहीं है।
11: तो नहीं है अभी, उन लोग को पता नहीं है, जब वो भी पहचान लेंगी तो वो भी हो जाएंगी बात करने में।
10: ये
11: चलिए बात बहुत जी जी,
10: अभी पर इतना भी फोन करेगी कपड़ा सी
11: रही। बढ़िया है, आप बता दीजिए गाने की फरमाइश, फिर उनसे भी बात होगी, कॉल करेंगी तो
10: बजा दीजिए। शादी का गाना बजा दीजिए हिंदी सॉन्ग में।
11: शादी का गाना हिंदी में, तो वही आप भी बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है शादी का हिंदी।
10: बजा दीजिए अपना कोई पसंद से बजा दीजिए।
11: इतने दिन बाद कॉल किए हैं, आपसे बात हो रही है, आप आज आप बता दीजिए फिर हम प्ले करेंगे।
10: मुबारक है तुमसे शादी तुम्हारी, यही गाना बजा
11: दीजिए। और डेडिकेट किसे रहेगा गाना?
10: आपको रहेगा, भारती मैम को रहेगा, करिश्मा को रहेगा, पूरा रेडियो रूम को रहेगा।
11: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना
10: जी।
11: बहुत बहुत धन्यवाद आप।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे।
0: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
1: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87-894-18744।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
10: बात, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-9911। जी हाँ, 8029-94-9911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग में।
12: नमस्ते दीदी।
11: नमस्ते, क्या हाल चाल बहु करिश्मा जी?
12: ठीक बा, आप कहे?
11: हमरो बढ़िया बा।
12: का होता?
11: बस रउआ लोनी से बात होता।
12: कहाँ गए रनिया का दीदी से की ना होता नहीं
11: गए रनिया कहीं घूमे फिरे?
12: हमने के पूरे समय से भारती मैम से कहाँ गए बनी कभी अब वहाँ के बारे में हमी के ना पता
11: है। भारती मैम के कैसे पता रही, क्या की भारती मैम के भी तो बता के ना गए रनिया।
12: वही सुन कहते रनिया जगह दिव्या मैम निकल गई रउआ से चुपके से निकल गए
11: नहीं जी, तो हम निकल रही तो हम आवे खातिर निकल रही है ना, हम तो घूमे फिरे गए रही।
12: हाँ, साफा के लिए चल गए
11: नहीं। हाँ, तो सिलाई हो गई?
12: हम इसको आता नहीं।
11: अच्छा, क्या सियत रही है?
12: मम्मी की फैला।
11: तब अब तो दीदी नहीं की तो सारा काम करे के पड़ता अकेले।
12: हाँ,
11: तब मन ना कर लगे तनी कबो कबो झगड़ा करती दीदी रहती तो
12: ना। मोबाइल पे करे नहीं?
11: अच्छा, मोबाइल पे करे नहीं, मैंने झगड़ा जारी बा। चली बढ़िया बा, फिर एकदम नहीं छोड़े के।
12: हाँ, तो चले
11: जी बिल्कुल बिल्कुल चली सो
12: लेकिन सदियम ना होनी ठीक बा
11: जी परेशानी रहो कोनो समझल करी बात के शादी में ना आईनी ये आयम कब तो आ जाए
12: भैया के शादी में आयम
11: तो बराती ले जाए
12: ना लेके जाए
11: ना बहुत जगह लड़की लोग के ना ले जाला लो इसे बोलनी है
12: लेके जाए
11: तब हम आ जाए क्या हमारे बराती जाए में बहुत अच्छा लगे
12: तो कोई आई है नहीं भेंट करे
11: बिल्कुल पूरा कोशिश है फिलहाल बता दी गाना कौन सुने के बाद
12: गाना सुने के बाद कैसे ना भरोसा करी प्यार के पावर पता जाने हम चढ़ गई मरे टावर पर
11: मरे ला की हमरे ला
12: दोनों तरह बटे
11: अच्छा दोनों उतना ज्यादा नहीं सुन रहे वैसे पूछ लेनी है
12: दोनों तरह से
11: चलिए बढ़िया बात है गाना डेडिकेट भी रही
12: हाँ सबसे पहले रहुआ के रही है भारती मैम के रही भैया क्या जितना सुनता नहीं लोग लेकर हम
11: चलिए तो प्ले कर दिल बनी गाना बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल के लिए

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंडिया में, बदस नो 4 FM में।
0: जी मैम, धन्यवाद। नमस्कार मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर MP से।
1: जी कैसे हैं सुनील जी?
0: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम। अभी हम सोचे अभी टाइम हो गया तो फोन लगाए, फोन भी लगाए मैम। हमारे यहाँ तो अभी बारिश चालू है मैम, आपके वहाँ के मौसम के क्या हाल चाल मैम?
1: हमारे यहाँ मौसम भी वैसे ही हुआ है बारिश जैसा, लेकिन अभी तो बारिश हो नहीं रही है।
0: जी जी जी जी
1: जी।
0: तो आज एक फरमाइश है मैम, गाने के बोल तेरे इश्क़ में पागल हो गया दीवाना, यही अब सुनवाएंगे अपने रेडियो रिमझिम, जो लोग सुनते हैं सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके चलिए, तो प्ले करेगा ना?
0: ओके मैम, धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लंबाई चौड़ी कॉल किया।

0: हाँ जी खबर पक्को है। वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर।

0: दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाज़त और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
10: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
5: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
4: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: RR मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
4: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
4: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करें बेहतरीन खरीदारी।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571।

भोगल वाणी लेके अपना माटी के सुगंध से सरोबोर कार्यक्रम भोजपुरी बिरहा। तो चलिए आज के कार्यक्रम के हमने के आगाज कर जाओ और सुनल जाओ ई बिरहा।

जितना भी भोजपुरिया भाई बाणन, भोजपुरी समझे वाला, जितना भी हमार फैंस बाणन, हमार विरहा सुनने वाला, लोकगीत सुनने वाला, हम सब भाई के बहुत बहुत प्रणाम करत बनी। और हमेशा आप लोगन के बीच में जौन पेपर पत्रिका से कहानी निकलेला उकरा में कुछ एहर ओहर कही के आप लोगन के जरूर हम भेजे के काम करीला। आप लोगन बड़ा प्यार दुलार अपन दिहिला। एक और कहानी प्रकाश में आई है बाबू, और आप लोगों के बीच में भेज रहा हूँ। हमें आशा नहीं, ये पूर्ण विश्वास है कि पहले जैसे आप लोग प्यार दुलार हमें देते आए हैं, इसी तरह से प्यार दुलार इस गाना में भी आप लोग दे देंगे। तो सुनी एक और कांड कैसन।

और मजबूर होकर के कहानी को गाना के रूप में हमें गाना पड़ा। एक लाइन तर्ज बा मास्टर का, तर्ज का लाइन बा। बड़ा पुरान गजल का लाइन कवि जी लगा दे हलन का, कि ए मुसाफिर ए मुसाफिर भटक

इहवें से बात के शुरुआत बा। कहानी केकर बा, कैसन बा, कहाँ का कहानी बा, आप लोगन अगर ध्यान दे के सुनियन तब बाबूजी केतनो पत्थर का कलेजा होई पानी बन जाए, मोम बन जाएगा। कहानी बिरहा एकदम हमार शीशा जैसन झलके लगी, शीशा में जैसे साफ साफ सूरत लुकेला वही तरह साफ साफ कहानी सबके समझ में चली आई। नजम के लाइन में लिखल गई मास्टर का,

0: तनी बात समझ ल बाबू, कहानी बा यूपी राज्य का, यूपी में कहाँ का, लखनऊ का। लखनऊ में जे गई हुई कॉलोनी चार बाग जरूर देखले होगा लोग। वहीं कॉलोनी चार बाग में लखनऊ में नीरज और नीलम दो व्यक्ति ऐसा भी रहते रहे।
1: ठक ठक
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
8: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
9: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
8: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
9: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
9: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लकी ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथ है कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
10: जी हाँ कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
0: पति का नाम नीरज, पत्नी का नाम नीलम, जब उनकी उलो के शरीर से एक थे बेटी रहे, बेटी का नाम संजना बा। संजना बड़ा माई बाबू के लाड़ प्यार में पलत बे, माई बाबू बड़ा दुलार करें, अपन मेहनत मजदूरी की के धीरे धीरे बिटिया सयान होखे लागल, पढ़ावे लिखावे लगलन लोग। जब 16 पार कैले बे वो लड़की संजना, ता देखें एक लड़का जेकर नाम बा राजू, राजू उर्फ राज, राज से प्यार करे लगल। राजू नाम के लड़का से प्यार करत बे संजना। आज जब संजना प्यार करे लगल तो एक दिन राजू कहले बा संजना से, तरज बा का तरज कलाइन बा मास्टर? ई है तरज बा।

कहलस राजू की संजना ए तरह हमनी के प्यार कितना दिन छुप छुपा के चली। एक काम कर की सारा भेज जाके अपने मम्मी पापा से बता दे। आखिरकार संजना वो दिन घरे गई अजा के सारी बात अपना मम्मी पापा से बतौलस। मम्मी पापा इतराज कैलन की ना बेटी ऐसा काम करबू तो कुल का इज्जत का पगड़ी माटी में मिल जाये, ऐसा ना कल जला। लेकिन संजना प्यार में दीवाना बे राजू के, अब एकदम ओके समझ में ना आवे कि का करी। आखिरकार माई बाबू समझावत रही गेलन लेकिन वो लड़की संजना ना मानल, जाके शादी कह ली हलस अपने माई बाबू के विरोध से, विरोध कह के। और मंदिर में जाके कोर्ट में जाके दोनों राजू और संजना शादी कह ली हलन। आ जब शादी कह ली हलन तो दोनों राजू और संजना के देह से एक ठे लड़का भइल। आ जब एक ठे लड़का भइल तब तक दोनों और खुश भइलन, और खुश भइलन। दोनों प्राणी अपन मजे में खुशी में रहत हवन। कुछ दिन बीतल बा समय, लेकिन देखें छुपी छुपाई बात, ये संजना को पता नहीं था कि उसका पति राजू जो है कुछ गिरोह के साथ रहता है। राजू कुछ अतताइयों के साथ रहता था, गिरोह के साथ रहता था, जो लोग उपद्रवी थे, उपद्रवियों के गिरोह में रहता था, शामिल था। आखिरकार बाबू एक दिन नतीजा ये निकला कि पुलिस से मुठभेड़ हो गई। उस गिरोह से और पुलिस से मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में ये जो राजू नाम का लड़का था संजना का पति, ये काउंटर किया जाता है, मुठभेड़ में मारा जाता है। और जब मारा जाता है तब तो बेचारी ये लाचार हो गई, विधवा हो गई, अपने छोटा सा मासूम बेटा को लेकर रो रही है, लेकर रोती है। ये खबर जब संजना के माई बाबू के पता चलल बा, कहे कि माई बाबू तो शादी के उना विरोध में रहलन। जब शादी संजना कह लियलस तो माई बाबू कह दियलन कि से जाओ, तुम अपने मर्जी से शादी की हो तो आज से ये समझ जाना कि तेरे इस दुनिया में माँ बाप नहीं है। माँ बाप से नाता टूट गया। लेकिन जब ये घटना घटल बा तो माई माई होले बाबू बाबू होले। माई बाबू खाती औलाद बाबू कितना प्रिय होला, अब हमरे बतावला से ज्यादा आप लोगन समझत हो बा। आखिर माई बाबू के ना रह गई। एकर दुख देख के नतीजा निकलल का भैया,

बतिया के मानो बेटी, बतिया के मानो बेटी, घरे चल संगावा हो। बिलखे

माई बाबू समझाओ तो उनकी बेटी हमन का तो माना कर ली जा, लेकिन तू ना मन लू, लेकिन चला जो उन भाई तो उन भाई चला घरे चला, काहे कि लमहर जिंदगी आके ए बेटी जोखिमा में डाला माती।

0: माई बाबू समझाओ तन की बेटी बहुत लमहर जिंदगी बा, आखिर तेरे जिंदगी कैसे तू कटबू। संजना रोत देखत देखे हमें छोट लड़का के छोड़ के कहा जाए। तब तक संजना के सास मतलब राजू के मतारी उकरे पति के मतारी रोए लगल आ रो के कहली कि बिटिया तू माई बाबू ठीक कहता तार लमहर जिंदगी बा, तू चल जा माई बाबू के संगे, ए लड़का के चिंता मत कर, ए लड़का के हम संभाल ले। समझावला बुझावला से संजना तैयार तो भइल बाबू, आइल अपने मम्मी पापा के घरे। जब तक दो चार पांच छ महीना बीतल मम्मी पापा के साथ रहत रहे तो दो दिन चार दिन दस दिन पजा के अपने बेटा के देख ले। लेकिन मम्मी पापा ओकर एक दिन शेखर नाम के लड़का से दिल्ली में शादी तय कर दिया। शादी हो गई, दोबारा शेखर की दुल्हन बनी और शेखर के दुल्हन बन के जिंदगी अपन जिंदगी का निर्वाह करे लगल। शेखर दिल्ली में मोबाइल वगैरह का उनका दुकान रहे, बिजनेसमैन रहलन, अच्छा रहलन। अपन दोनों प्राणी वही मोबाइल के दुकान पर जाए सुबह शाम के लौटे और ए तरह जिंदगी अपन कटे लगल संजना के। तो कवि जी का भाव देवे के पड़ल, बढ़ के दा मास्टर।
1: अरे चकोरी को अब चान मिल गया, ए भैया चकोरी को अब चान मिल गया, पुलकित हुआ परिंदा पाके सुबह का भान।
0: तरजबा मास्टर का तरज कलाइन बा, बढ़ के दा।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
8: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
8: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या। दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
8: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे कॉलेज रोड गोपालगंज।
11: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज एक्सचेंज तो मांगता है।
12: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
13: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आए और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाए और बनाए अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
12: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
14: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
15: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
16: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
17: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
1: कि गोरी तोरी मुसुकी चवनिया रे, गोरी तोरी मुसुकी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी पुलों का नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट कराने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यूरिया समेत किसी खाद की कोई कमी नहीं है, कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। और मॉनसून ने केरल में दी दस्तक, 18 से 20 जून के बीच पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते बिहार पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने बताया कि मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कर उनके निकटतम परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इस टीम को मामले के हर बिंदु की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि घायलों के समुचित उपचार के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने भी हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी इसके लिए दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी पुलों के नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। पटना में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में श्री चौधरी ने कहा कि सड़क और पुल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने मुंगेर परियारपुर भागलपुर सवेर सबौर फोरलेन गंगा पथ परियोजना का निर्माण पीपीपी मॉडल के तहत कराने को कहा। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बढ़ती आबादी और यातायात की जरूरतों को देखते हुए ग्रामीण सड़कों की चौड़ीकरण की योजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने ग्रामीण सड़कों की नियमित निगरानी और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। श्री सिन्हा ने बताया कि राज्य में 3,76,000 मीट्रिक टन यूरिया, 1,54,000 मीट्रिक टन डीएपी, 2,38,000 मीट्रिक टन एनपीके और 1,17,000 मीट्रिक टन एसएसपी का भंडार उपलब्ध है। यह भंडार जरूरत के अनुरूप पर्याप्त है। कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरक वितरण में अनियमितता की जाँच के लिए मुख्यालय स्तर पर उड़नदस्ता टीम गठित की गई है और कालाबाजारी तथा जमाखोरी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा है कि रोजगार मेले के तहत मई महीने में 10,882 युवाओं को विभिन्न कंपनियों ने रोजगार प्रदान किया। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जुलाई महीने तक 20,000 और युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है।
1: 10,882 लोगों को अभी मई महीने में हमने रोजगार से जोड़ा और आगे फिर जुलाई तक, जुलाई से पहले हम लोग कम से कम 20,000 लोगों को और रोजगार से जोड़ेंगे और प्रत्येक 2 महीने पर ये रोजगार मेला लगाएंगे।
0: इधर विभाग की ओर से दरभंगा के अलग अलग प्रखंडों में आज से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेले 6 जून तक अलग अलग प्रखंडों में आयोजित होंगे। खगड़िया और मोतिहारी में भी आज एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी और कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि अब 99% एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और 96% से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी ओटीपी के माध्यम से की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना आवास पर आज पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, मंत्री दिलीप जायसवाल और रामकृपाल यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में विधान परिषद चुनाव को लेकर रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए में जल्द ही सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस संबंध में एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के बीच विचार विमर्श जारी है।
2: विधान परिषद के कौन कौन उम्मीदवार होंगे वो सब बड़े नेता मिल बैठ के तर्क रहे हैं। एक्सरसाइज जारी है, समीक्षा हो रही है, बहुत जल्द ही आप तक निर्णय पहुंचाएंगे।
0: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि राज्य में संगठन का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब डिजिटल माध्यम से प्रखंड अध्यक्ष से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष तक का चुनाव होगा। श्री राम ने कहा कि पार्टी ने डिजिटल माध्यम से ही सृजन साथी नामक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं।
3: अपने चुनाव परिणाम से भूल को, सबक को लेते हुए हम संगठन सृजन के माध्यम से अपनी संगठन को तैयारी कर रहे हैं। हम अपने संगठन को संतोषजनक हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये माध्यम इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि कोई भी व्यक्ति अनुशंसा पर अब नहीं बनता है। संगठन सृजन साथी अभियान से ये ट्रांसपेरेंसी है और वही चयन होकर के आएंगे जो अपने आप को मजबूती दिखाएंगे।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को नई पहचान मिली है और करोड़ों लोगों ने इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाया है।
1: एक दशक पहले भारत संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव लेकर गया था। हम प्राचीन भारतीय परंपरा को पूरी मानवता के स्वास्थ्य और सामूहिक कल्याण से जोड़ना चाहते थे और तब यूएन में 190 देशों ने भारत के इस प्रस्ताव को समर्थन किया। आज यह देखकर बहुत खुशी होती है कि करोड़ों लोग योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं।
0: दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने केरलम में दस्तक दे दी है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से 3 दिन देरी से पहुंचा है। मौसम विभाग ने कहा कि मॉनसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग ने कहा कि 18 से 20 जून के बीच पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते मॉनसून बिहार में दस्तक दे सकता है। इसके बाद यह राज्य के अन्य हिस्सों में पहुंचेगा। अनुकूल परिस्थितियां रहने पर 25 जून तक पूरे राज्य में मॉनसून की बारिश शुरू होने की संभावना है। प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं कल राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
2: दिनांक 5 जून राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।
0: वयोवृद्ध फिल्म निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज नीलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। पहलाज नीलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहलाज नीलानी के निधन पर दुख जताया है। श्री चौधरी ने कहा कि भारतीय फिल्म जगत में उनके योगदान और रचनात्मक कार्यों को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा। नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने तारापुर नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भागलपुर जिले के गोपालपुर के पोखरिया चौक के पास अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पहले से खात लगाए अपराधियों ने कारोबारी के सिर में 7 गोलियां मारी जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पटना पुलिस ने एक कोचिंग संस्थान के सुरक्षा गार्ड द्वारा फायरिंग के मामले में 2 गार्ड को हिरासत में लिया है। घटना में प्रयुक्त हथियारों को जब्त कर FSL जांच के लिए भेज दिया गया है। अररिया नगर थाना क्षेत्र के कोढ़ी चौक के पास पुलिस ने छापेमारी कर एक यात्री बस से 708 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के हनुमान चौक के पास पुलिस और SSP की टीम ने 110 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जहानाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र और परसा बिखा थाना क्षेत्र में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की टीम ने लगभग 700 लीटर शराब और बियर बरामद की है। गया रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल और GRP की टीम ने 3 महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से से चोरी के 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत आज शिवहर के तरियानी प्रखंड के अलग अलग गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शेखपुरा मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गयी। रोहतास जिले के आलमपुर पंचायत भवन में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए सीनियर अंडर 23, अंडर 19 और अंडर 15 वर्ग की T20 और वनडे प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। प्रतियोगिताओं की शुरुआत 8 जून से होगी और मैच पटना, भागलपुर तथा सोनपुर के विभिन्न मैदानों पर खेले जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी पुलों का नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट कराने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यूरिया समेत किसी खाद की कोई कमी नहीं है, कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। और मॉनसून ने केरल में दी दस्तक, 18 से 20 जून के बीच पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते बिहार पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

दोनों संजना और शेखर मरद मेहरारू गाड़ी से अपना जासन दुकान पर, दिन भर दुकान पर रहसन, शाम के लौटसन। जब रिंग रोड बीच पर जासन त वहाँ ट्रैफिक पर जब गाड़ी रुके तब बाबू भिखमंगा केहू भीख मांगे, केहू कौन आके शीशा उसा साफ करे लागे, दो चार रुपया मिल जाए, केहू वही में कुछ बेचे लागे, केहू कौनो लड़का फुलौना बेचता, ले लो मैडम ले लो मैडम, केहू लड़का कलम बेचता, कुछ भी अपन ए तरह के रोजगार रोज का रोजाना का काम रहे। एहर कतनी बात ही हमें छोड़ दा। अब ओहर जवनु राजू का लड़का रहे, संजना का जो लड़का बा जो छोड़ के आई बे, धीरे धीरे बड़ा हो गई आ ओहर ओके तकलीफ होके लागल, काहे कि मतारी भी संजना का सास मतलब वो लड़का का दादी भी पुरान हो चुका रहे, कहीं से कमाए का स्रोत ना रहे, तो वो लड़का का बुआ मतलब राजू का बहिन दिल्ली में रहत रहे। तो जब सुनलस तो कलस की मम्मी तू बबुआ के लेके चली आवे, अभी हो का काला की बूढ़ी राजू के मतारी संजना के सास अपन लड़का के लेके अपने लड़की के पास दिल्ली चली गई। अभी लड़का धीरे धीरे बड़ होके लगल लड़कन के संगे रहे, देखे कि कुल लड़का हमारा संग के जाता सा कोनो भीख मांगता कोनो कुछ बेचता, अपना दादी से कलस की दादी हम लेकन के संगे जाई भीख मांगे, मरलस दू थपरा दादी कलस की तू भीख मांगबा, हाँ तो कलस की तब हम के कुछ दे दा पैसा किन के हम कुछ बेचब, सही 50 दादी के मुंह माया लेकन के लड़का के नाती के अपन सही 50 दे दियलस, अभी गुब्बारा बेचे लागल। वही रिंग रोड पर जब ट्रैफिक पर गाड़ी रुके तो गाड़ी के सामने जाके मैडम साहब ले लीजिए गुब्बारा ले लीजिए लाल पियर गुब्बारा, इसी तरह से बाबू संजना की गाड़ी के सामने रोज आता था और संजना धीरे धीरे उस बच्चा से प्यार करने लगे। वो का जानते कि हमारे लड़का है, अब तो बड़ा हो चल बा, गुब्बारा रोज जाके कहे कि मैडम गुब्बारा ले लीजिए बहुत सुंदर गुब्बारा है आपके बच्चे खेलेंगे। संजना कहती है कि नहीं बाबू मेरा तो कोई बच्चा नहीं है, इस तरह से 10-20 रुपया इसी तरह से वो दे देती थी। आखिर अंजाम निकला क्या बाबू, तर्ज बा का तर्ज का लाइन बा, वह तरह जो

त एकरो नाव राजुए रख लेबे। ओकर जैसन कि राज उर्फ राजू नाव रहे आ एकर केवल राजू नाव रख लेबे कि कम से कम हमर बेटा के यादगार बन रहे। एहू लड़का का नाम

संजना के गाड़ी रुकल बे ट्रैफिक पर, दौड़ के गइल बाटे। आ दौड़ के गइल बा त संजना बतौली पहलवे कि धीरे धीरे मने मने वो लड़िका से बड़ा प्यार करे लगल। ओकर रहन स्वभाव देख के वो लड़िका पर ओकरा बड़ा दया आवे। संजना के पास गइल बा कलश कि मैडम आंटी बड़ी सुंदर गुब्बारा लिए हैं, गुब्बारा ले लो। संजना कहल कि बेटा मैं गुब्बारा लेकर क्या करूंगी, जबकि संजना उस समय गर्भवती थी। ये आप लोगों के बतावल जरूरी बा कि संजना उस समय गर्भवती थे, गर्भवती रहे। ता संजना कहल कि बेटा गुब्बारा लेकर क्या करूंगी, मेरे घर में तो गुब्बारा कोई खिलने वाला नहीं है। कहल कि मैडम ले लो ना, ले लो। जब जीत लैका कैलस तब 20 रुपया निकाल के संजना दिहलस आ गुब्बारा ले लिहलस। आखिर बाबू गुब्बारा लेके संजना चल गई, लेकिन लड़का के वो सूरत हमेशा ओकरा दिमाग पर नाचत रहे। देखें एक दिन घटना घटल बा। सुबह सुबह के बेला में उहे राजू लड़का संजना के, राजू लड़का वो अपन दुकान छनले बा, अपन गुब्बारा उबारा फुलौले बा आ लेके रिंग रोड पर बेचे खाते निकलल बा। नतीजा निकलल का बाबूजी,

0: वही लड़का अपनी बैलून वगैरह फुला करके पीठ पर झोरा है, हाथ में बैलून फुला हुआ है और दिल्ली का रिंग रोड पार करना चाहता था। बाहर भगवान तेरी भी लीला गजब है। तब तक एक बस रफ्तार में आती है और उसे धक्का मार कर निकल जाती है।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
9: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
10: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
10: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
10: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
9: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
8: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
9: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
11: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर गोपालगंज।
12: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
13: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
0: छोटा सा 8-9 वर्ष का वो लड़का

पर जब गाड़ी रुकी है, संजना चारों तरफ, संजना की निगाहें दौड़ने लगी। भाई रोज तो लड़का आ जाता था दौड़ करके गाड़ी के नजदीक, आज नहीं आ रहा है, क्या बात है? कुछ लड़कों से पूछती है उसके साथ में जो बेचते थे कि अरे आज वो राजू नहीं दिखाई पड़ा रहा है। लड़के से बताए कि मैडम राजू आज नहीं आएगा, राजू का एक्सीडेंट हो गया है। अभाक हो जाती है संजना, कहती है क्या एक्सीडेंट हो गया, कैसे? सब लड़के खिस्सा बताते हैं, बोली कि है कहाँ वो? लड़के सब बताए हैं कि सहद्रा हॉस्पिटल में है, दिल्ली के साथ सहद्रा हॉस्पिटल। अपने पति से संजना कहती है कि देखिए आज आप जाइए, जाइए दुकान पर, आज मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाती हूँ उस बच्चा से भेंट करूंगी। उसका पति शेखर कहता है कि ठीक है जाओ, और उस बच्चे को कुछ 10,000-20,000 रुपया दे देना, मदद कर देना, और फिर तुम आ जाना। पति चला गया दुकान पर, संजना गाड़ी लेकर के इधर चली आई सहद्रा हॉस्पिटल। और जब सहद्रा हॉस्पिटल आती है तो क्या देखती है बाबू? सुनी

बाबू तब तक देखती है कि एक कोने में उसकी पहली सास राज उर्फ राजू की माँ बैठी है कोने में रो रही है। संजना अभाक हो जाती है, दौड़ कर जाती है उस सास माँ के पास, कहती है कि माँ ये क्या, यहाँ क्यों तुम बैठी हो, क्या बात है, कैसे तुम यहाँ दिल्ली में आई। तब

बुढ़िया सास बताती है शुरू से लेकर के अंत तक कहानी की, बेटी ऐसी ऐसी घटना घटी, हम दिल्ली आ गई राजू को लेकर के तुम्हारे बेटे को, और आज वो बेटा बैलून बेच रहा था, वो बेटा एक्सीडेंट हो गया है, जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। भगवान क्या मेरे नसीब में लिखे हैं बेटी, तुम्हारा भी साथ छूट गया, बेटा का भी साथ छूट गया, अब लग रहा है कि नाती भी नहीं बचेगा। इससे पहले तो मैं मर जाती तो ठीक था। ओ बुढ़िया रो रो जब पूरी कहानी बताई है, रो रही एक तरफ बुढ़िया सास और एक तरफ इस बात को सुन करके वो संजना रो रही है उस हॉस्पिटल में। लेकिन जब जान गई कि मेरा ही बेटा है राजू, मेरा ही बेटा है, डॉक्टर के सामने जा करके संजना एक बात कहती है। क्या कहती है बाबू?

तीन दिन तीन रात बेहोश वो राजू लड़का हॉस्पिटल में पड़ा रहा। तीन दिन के बाद वो बच्चा होश में आया है। डॉक्टर साहब आकर के उस संजना से और बुढ़िया से कहते हैं कि बूढ़ी माता बधाई हो, आपका नाती जो है सकुशल अब खतरा से बाहर निकल चुका है, होश में आ गया है, आप लोग चाहें तो जाकर के आईसीयू में मिल सकती हैं। अरे संजना दौड़ल नब्बे हो, सास पतोई दौड़लिन है, देखलिन है राजू के संजना। सबसे पहले वो प्रणाम किया राजू उस मैडम को देख करके, वो क्या जानता है कि यही मेरी माँ है। प्रणाम किया, कहा कि मैडम आंटी मैं जानता था कि और कोई आए चाहे नहीं आए लेकिन आप जरूर आओगी। संजना उसकी बात को सुन करके रो रही है कि आज मेरा ही बेटा मुझे पहचानता नहीं है, न मैं उसे पहचानती हूँ, लेकिन आज अब तो बताना जरूरी है, बताना ही होगा। आखिर वो मैडम कहती हैं कि बाबू मैं तेरी आंटी नहीं हूँ, मैं तेरी आंटी नहीं हूँ, तो मुझे माँ कह करके बुलाओ, मम्मी कह करके बुलाओ, मैं ही वो अभागन तेरी जन्म देने वाली मम्मी हूँ, माँ हूँ। राजू सुनता है, बहुत खुश होता है। दादी बताती है कि हाँ मुन्ना, हाँ राजू यही तेरी मम्मी है, इन्होंने ही तुझे जन्म दिया था। लेकिन बाबू होखल का अल्लाह के लाइन में कभी जी भाव दिहलन हूँ,

0: उधर फोन पर फोन करते जा रहा है शेखर, अरे संजना क्या कर रही हो, अभी तक तू आई नहीं, दो दिन बीत गया, तीन दिन बीत गया। संजना कहती है कि अब मैं नहीं आऊंगी।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी चार सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोर्ट,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी दो शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
2: कुचाई कोर्ट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
6: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 9097160602।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला, सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
10: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
11: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
12: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गली के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
0: अब आके इधर शेखर सोचता है कि अरे, शेखर सोचता है कि क्या ऐसा भी होता है, अरे तुम गई थी उस बच्चा को कुछ पैसा कौड़ी देकर मदद कर दो, ऐसा थोड़ी होता है, तुम घर चली आओ। संजना कहती कि अब मैं नहीं आऊंगी। शेखर सोचा है कि बात क्या है, तीन दिन के बाद, चार दिन के बाद कार लेकर के स्वयं हॉस्पिटल में आ गया। कहा कि संजना क्या बात है, जब सारी हकीकत ओ शेखर जाना है। बुढ़िया उसकी पहली सास राज उर्फ राजू की माँ बताई है उस शेखर से पूरी बात। तब ये कहता है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ चलो घर, लेकिन ये घर जाने से शेखर के साथ जाने से इनकार करती है संजना। तब शेखर क्रोध में आ गया, कैला ना का
13: कि कहेला ना घरे चला संजना तू ला।

0: गाली दे करके वो लौट जाता है। शेखर अपने घर चला गया। दो चार माह बीतने के बाद शेखर की अब जो माँ है वो कहती है कि सुनो शेखर, बहू घर से चली गई है और अच्छा नहीं लग रहा है, चलो हम भी चलते हैं और बहू को हम लाएंगे। माँ के कहने से शेखर अपनी माँ को लेकर के और जाता है, आता है यहाँ संजना के पास। संजना उस बुढ़िया के घर रह रही थी अपने बेटा के साथ। आ करके और उसकी सास, दूसरी सास मतलब शेखर की माँ कहती है कि बहू चलो कोई बात नहीं है, जो हुआ हुआ, लेकिन चलो घर, तेरे बिना घर अच्छा नहीं लग रहा है। जाने से इनकार करती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं अब घर में नहीं जाऊंगी, मैं अपने बच्चा के साथ रहना चाहती हूँ। कहती है शेखर की माँ की अरे पागल, हम केवल तुम्हें नहीं कहते हैं चलने के लिए, तुम अपने बच्चे को भी ले लो, ओ हम लोगों का बेटा है, और अपनी माँ को भी ले लो। देखें एक मानवता, इसी को कहते हैं मानवता। कहती है कि अपने बेटे को भी लो, अपनी माँ को भी लो, और सभी लोगों को हम लोग अपने घर ले चलने के लिए आए हैं। दूसरी सास के कहने से वो संजना अपनी पहली सास को भी लेती है, अपने बेटा को भी लेती है, और फिर पुनः शेखर के घर में आकर पति पत्नी दो दो सास के साथ रह करके, अपने बेटा के साथ रह करके आज आराम से जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन कबीर जी भाव दिए हैं क्या,
1: अब सुन के निहोरा साजन के संजना मा।

0: आज बाबू वही लड़का राज 18 साल का हो गया। राज उर्फ राजू उसका बेटा, उसके शरीर से जो संजना का बेटा है बड़ा वाला, वो राजू 18 साल का हो गया। और जो शेखर के शरीर से संजना का लड़का था गर्भ के रूप में पल रहा था, वो आज 8 साल का हो गया। ये कहानी 2017 में दिल्ली में माँ बेटा का मिलान हुआ है। कहानी का अंतिम लाइन है, आज सभी लोग, सभी परिवार एक घर में एक छत के नीचे हंसी खुशी से जिंदगी लोग बिता रहे हैं। गाना का अंतिम प्रमाण था।
1: जय जखार श्री स्वामी जी के, ओम प्रकाश फुलवारी। कथन करे कबीर रविंद्र

0: तो श्रोता लोगिन ई रहल रेडियो रिमझिम पर आज के बिरहा। हमरा पूरा उम्मीद बा कि आज के बिरहा रवा सभी के बहुते अच्छा लागल होई। तो अगर रवा सभी चाहत बानी ए पर अपन सुझाव या शिकायत हमनी तक पहुंचावे के तो हमनी के व्हाट्सएप नंबर बा 98527888291 और ईमेल आईडी बा radiorimjhim@gmail.com और हमनी के खत के पता बा रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज पिन कोड 84 14 28। रोज सभी कोनो भी माध्यम से अपन सुझाव या शिकायत हमनी के लगे भेज सकत बानी। तो चलिए अब हमके जाए के दी इजाजत, नमस्कार और इस सुनत रहे अपना बोली के पहचान रेडियो रिमझिम 90.4।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
11: All right.

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
7: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
8: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
7: तो देर मत कीजिए,
8: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9947434468 पे।
13: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
14: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1 जुलाई 2027 से प्रारंभ होने वाले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों के 158वें पाठ्यक्रम तथा भारतीय नौसेना अकादमी के 120वें पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 13 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा 2026 की विस्तृत सूचना दिनांक 20 मई 2026 को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 9 जून 2026 और उम्मीदवार केवल ऑनलाइन मोड द्वारा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता है upsconline.nic.in। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति आधार पर 3 वर्षों की अवधि के लिए निदेशक के एक पद को भरने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख अब 18 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में आगे के विवरण के लिए देखिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट www.iwai.nic.in। इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मेकॉन लिमिटेड में कनिष्ठ अधिकारी प्रशासन का एक पद रिक्त है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.mekonlimited.co.in।
15: G20
14: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में सदस्य पर्यावरण एवं पुनर्वास का एक पद रिक्त है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए देखिए जल संसाधन नदी विभाग और गंगा संरक्षण विभाग की वेबसाइट jalshakti-dowr.gov.in। इसके अतिरिक्त ये जानकारी dopt.gov.in और nca.gov.in पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय महिला आयोग जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सीनियर पीपीएस एक पद, सहायक विधि अधिकारी एक पद, अनुभाग अधिकारी एक पद, अनुसंधान अधिकारी दो पद, निजी सचिव एक पद, सहायक पीआरओ एक पद, विधि सहायक आठ पद, अनुसंधान सहायक चार पद, सहायक अनुभाग अधिकारी दो पद, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक एक पद और वैयक्तिक सहायक पांच पद। निर्धारित प्रारूप में आवेदन समुचित माध्यम से अवर सचिव स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग प्लॉट संख्या 21 जसोला संस्थागत क्षेत्र नई दिल्ली 25 को अग्रेषित किए जा सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 30 मई से 5 जून 2026 का रोजगार समाचार पत्र। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
15: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
15: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
16: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
15: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
16: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
15: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
16: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
17: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
18: भरोसे वाले से लेंगे,
17: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
18: और कीमत भी।
17: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
19: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
20: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
21: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
22: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
21: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
23: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
21: कॉल करें 85070-32042 पे।
24: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
25: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
24: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
25: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
24: संपर्क 99-393-65-930।
26: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके से या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170085।
3: लाल शर्मा, मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक, केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेन्द्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
4: The discussions also
5: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
4: Can enter the Venezuelan market successfully?
3: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
6: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इम्पोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इम्पोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इम्पोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
3: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है, स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
8: अहमदाबाद का एक्का एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
11: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
12: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
13: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
14: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
15: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपाल।

0: बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
4: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
5: क्यों, क्या हुआ है?
4: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा साड़ी और गाउन दिलाओगे।
5: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
4: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
6: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
9: नमस्कार, रेडियो रिंजिन से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। पत्नी से विवाद को लेकर पति पर हुआ चाकू से हमला, सदर अस्पताल में भर्ती। 2 नाम से अलग अलग पासपोर्ट बनवाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। SC ST और NDPS में 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई, 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। जिला विधिक संघ के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू। जिला पदाधिकारी ने EVM और VVPAT वेयरहाउस का किया निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। पत्नी के मोबाइल फोन का कॉल रिकॉर्डिंग करने वाले एक पति पर जानलेवा हमला किया गया, चाकुओं से गोद कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया, जिसके बाद पीड़ित उमेश शाह के पुत्र विवेक शाह सदर अस्पताल में भर्ती हैं, इनका इलाज चल रहा है। मामला हथुआ थाना क्षेत्र के मठिया गांव निवासी उमेश के पुत्र विवेक शाह का बताया जा रहा है, जिनका अपनी पत्नी से अक्सर विवाद होता रहता था। विवाद के वजह से पत्नी का किसी अन्य युवक से फोन पर बातचीत होता था। इसी बीच विवेक शाह ने पत्नी के बातचीत को लेकर अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लिया, जिससे विवाद और बढ़ गया। आरोप लगाया जा रहा है कि इसके बाद पत्नी ने अपने मायके वालों को इसकी जानकारी दी और इसके बाद विवेक शाह को देख लेने की धमकी दी गई। गुरुवार को जब विवेक शाह गोपालगंज

0: में किसी वकील से मिलने जा रहे थे, तभी तुरकाहा पुल के पास दो अज्ञात हमलावरों ने उन्हें रोक लिया। पहले गाली गलौज की, फिर मार पिटाई शुरू कर दी गई और इसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों के मदद से घायल विवेक शाह को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ इनका इलाज चल रहा है और पुलिस अब पीड़ित के आवेदन पर मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। बरौली थाना क्षेत्र के बलहा गांव के रहने वाले इरशाद आलम पिता मोहम्मद नूरैन को बरौली थाना की पुलिस ने दो अलग अलग नाम से दो पासपोर्ट बनवाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पासपोर्ट कार्यालय से मिली सूचना के बाद बरौली पुलिस ने जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल में इरशाद आलम को दो अलग अलग नाम से पासपोर्ट बनाने, दो अलग अलग जन्म तिथि, जन्म स्थान भी अलग अलग और अन्य व्यक्तिगत विवरण भी अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने के मामले में पुलिस ने तथ्य सामने आने के बाद आरोपी पर तथ्यों को छुपाकर भ्रामक जानकारी देते हुए पासपोर्ट प्राप्त करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में पासपोर्ट कार्यालय पटना के प्रतिवेदन के आलोक में बरौली पुलिस ने कांड भी दर्ज किया है और अब आरोपी को गिरफ्तार कर इस पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिला विधिज्ञ संघ का चुनाव होना है, इसको लेकर प्रचार प्रसार और नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि उम्मीदवार 11 जून तक अपना नामांकन कर सकेंगे। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के बीच गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। जानकारी के अनुसार कुल 28 पदों के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। 24 जून को मतदान होना है और 25 जून को मतों की गिनती होगी और परिणाम घोषित भी हो जाएगा। इसको लेकर अधिवक्ता समुदाय में काफी उत्साह है और जो लोग भी उम्मीदवार हैं वे सभी अधिवक्ताओं के घर घूम घूम कर जन संपर्क कर रहे हैं और अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। इधर दो अलग अलग थाना क्षेत्रों की पुलिस ने एससी एसटी और एनडीपीएस के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई नगर थाना की पुलिस ने की। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विभिन्न कांडों में वांछित फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर थाना की पुलिस ने एससी एसटी कांड के एक प्राथमिकी अभियुक्त, जो पिछले वर्ष जनवरी में एक केस में नामजद आरोपी है और तभी से फरार चल रहा है, इसको गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी का नाम विवेक कुमार सिंह है, जो बंजारी नौका टोला थाना नगर के झगरू सिंह उर्फ जोगिंदर सिंह का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर भोरे थाना की पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए आरोपी सीडू कुमार पिता जितेंद्र सिंह साकिन लक्षी चक थाना भोरे को गिरफ्तार कर लिया। इसके घर से ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इस पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज है और यह फरार चल रहा था, अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने आज ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का त्रैमासिक औचक निरीक्षण किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय समय पर इसका निरीक्षण किया जाता है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की उपलब्धता, उनके रखरखाव एवं सुरक्षा मानकों की गहन समीक्षा की, साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। सभी मशीनों का रखरखाव निर्धारित मानकों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करने तथा वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था का भी विस्तार से निरीक्षण किया। उन्होंने आगंतुक पंजी के भी समुचित संधारण, सीसीटीवी कैमरों की निरंतर क्रियाशीलता एवं नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इधर भीषण गर्मी और उमस के बीच मरीजों और डॉक्टरों के बीच आज विवाद हो गया, जिसको लेकर डॉक्टरों ने कई घंटों के लिए ओपीडी में कार्य को ठप कर दिया। बताया जा रहा है कि मरीजों और डॉक्टर तथा स्वास्थ्य कर्मियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया, जिससे नाराज होकर स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टरों ने कार्य को ठप कर दिया। करीब 1.5 घंटे तक मरीजों का इलाज नहीं हो सका, डॉक्टर उठकर चले गए, जिसके बाद काफी देर तक लोग ओपीडी में लाइन में खड़े रहे। इस भीषण गर्मी में मरीजों की परेशानी को देखते हुए सिविल सर्जन और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने स्थिति को संभाला और समझा बुझाकर मामले को सुलझाया गया और फिर से इलाज की प्रक्रिया शुरू की गई। सिविल सर्जन ने कहा कि इस मामले में कोई आधिकारिक रूप से आवेदन नहीं मिला है। अगर डॉक्टर की ओर से कोई लिखित शिकायत आती है तो पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जादोपुर थाना क्षेत्र के जादोपुर दुखरन गांव में बकरी के खेत में घुसने को लेकर मामूली विवाद हिंसक रूप में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुए, लाठी डंडे चले, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि घायल महिला उर्मिला देवी है, जिनका उम्र 60 वर्ष है। यह स्वर्गीय दिनेश राम की पत्नी है। जानकारी के अनुसार उर्मिला देवी की बकरी गाँव के एक खेत में चली गयी थी। इसी बात को लेकर गाँव की ही सुनीता देवी और पुष्पा देवी के साथ कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। मामला गाली गलौज के बाद मारपीट तक पहुंच गया। उर्मिला देवी पर लाठी डंडों से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल है। इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों से अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए कुल 24 लोगों को आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस दौरान 24 घंटों के अंदर पुलिस ने लगभग 344 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को भी जब्त किया है। साथ ही वाहन जांच अभियान चलाकर जुर्माने की राशि भी वसूल की गई है। इधर 2 मोटरसाइकिल और 1 पिकअप गाड़ी को भी शराब तस्करी में जब्त किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत आज भोजपुर के हेतमपुर एवं सिंधी टोला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कुल 99 किसानों ने कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिकों से बातचीत की। वैज्ञानिकों ने भी किसानों को मृदा उर्वरता सुधारने, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि करने तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में हरित खाद की भूमिका के बारे में जानकारी दी। किसानों को उपयुक्त हरित खाद फसलों के चयन, बुआई के समय तथा फसल को मिट्टी में मिलाने की उचित अवस्था के बारे में भी बताया गया। मीरगंज थाना क्षेत्र के बसंतपुर चंवर से एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रशिक्षु डीएसपी सह मीरगंज के थानाध्यक्ष नीरव कुमार और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। युवक की मौत के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल घटना के बाद से परिजनों में हड़कंप मचा है और पुलिस ने अभी जांच पड़ताल शुरू किया है। इस मामले में अब तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पत्नी से विवाद को लेकर पति पर हुआ चाकू से हमला, सदर अस्पताल में भर्ती। 2 नाम से अलग अलग पासपोर्ट बनवाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एससी एसटी और एनडीपीएस में 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई, 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। जिला विधिक संघ के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू। जिला पदाधिकारी ने ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का किया निरीक्षण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ठक ठक
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड,
1: हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-6575।
10: सुनिए सुनिए सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
10: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
10: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
12: प्रसाद क्लिनिक,
13: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
12: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
13: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
14: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो MCM 94.4 FM पे। समय 9:19 हो रहे हैं हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो पुराने गाने की फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं आप सभी तो बिल्कुल इस कार्यक्रम में अभी टेक्स्ट मैसेज करें हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। फिलहाल लिख के गाने प्ले करते हैं और इस गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

काफी प्यारे गाने सुन रहे हैं हम सभी रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे। सोशल एसएमएस फरमाइश का, यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो आप पुराने गाने की फरमाइश करें या 90s के गाने की फरमाइश करें, ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। और आज कोई दिक्कत नहीं होगी, और आज डिवाइस चेंज हो चुके हैं, और जैसे आप मैसेज करेंगे वैसे हमारे पास मैसेज पहुंच जाएगी। इसका आप लोग टेंशन ना लें, फिलहाल आप लोग मैसेज ज़रूर करें और अपनी फरमाइश ज़रूर बताएं हमें, ताकि आपकी फरमाइश हम सुना सकें आपको और आप सुनकर इंजॉय कर पाएं। आगे कुछ मैसेज पहुंचे, और मैसेज में लिखा गया है कि हाय सर, हम सफरोज अली आखिल टोला से, और हमको गाना सुनना है, गाने का बोल सोना चांदी। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। आगे भी शब्द बताना चाहिए था इस गाने का, ताकि क्लियर हो सके। फिलहाल हम गाने प्ले करते हैं और आप सुने इंजॉय करें, और आगे से ध्यान रखिएगा कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो थोड़ा सा और लंबी लाइन बताएं, ताकि आपकी फरमाइश जो पसंद है वो सुनाई जा सके। अब पता नहीं ऐसे गाने कई आ जाएंगे, फिलहाल गाने तो हम प्ले कर रहे हैं, आप सुने इंजॉय करें।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
1: यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
5: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
10: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। सोशल लेस में फरमाइश का और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं? तो बिल्कुल बढ़िया है और कहते हैं कि आप और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ। मैं रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि उसके लिए सॉरी सर और थैंक्स गाना बजाने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और गाने जब पूरे लाइन बताई जाती है तो थोड़ा सा हम लोग को सहूलियत मिलती है गाने को सुनाने में। और आप लोग आधे या बीच में से गाने के फरमाइश बताते हैं लोग, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है गाने के फरमाइश को पूरा करने में। यदि आप इस कार्यक्रम से जो भी श्रोतागण सुन रहे हो वो अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि पुराने गाने या 90s के गाने के फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। ऐसा ना हो कि आप मैसेज करें और नए गाने के साथ फरमाइश वाले मैसेज करें तो आपकी फरमाइश तो पूरी नहीं की जा सकती है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि हाय सर, मैं राजेश सोनी गोपालगंज नोनिया टोली से, और मुझे सॉन्ग सुनना है। और सॉन्ग का बोल देते हैं, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। तो बिल्कुल काफ़ी प्यारे गाने के फरमाइश है। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

कभी प्यारे सॉन्ग रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब। कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सोना भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, मुझे गाना सुनना है जिसका बोल है छन में बदल गई ला। कल्पना जी की आवाज़ में ओल्ड सॉन्ग सुनना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं आपको। सबीता जी, बबीता जी, सरफोदीन भाई, पंकज भाई, राघव भैया जी को, गुड़िया जी, शफक जी, काजल जी, संतरा जी, सलेहा जी, सचिदा जी, आशा जी, सबीना जी, साजदा जी, रानी जी, रोशनी जी, पायल जी, गुलफाम जी, नेहा जी, हिन्ना खान जी, शाहजहाँ जी, ब्यूटी परवीन जी, गट्टा शर्मा जी, सगीर अंसारी जी, मुकेश भाई जी, तूफानी जी, आज़ाद अंसारी जी, रोजादीन भाई, अफसर भाई, जावेद आलम जी, उपेंद्र भाई जी, अख्तरी जी, अहमद भाई, वीरेंद्र भैया जी को और सभी दोस्तों शकियों को। दिलीप राम दिल्ली से मैसेज करते हैं, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या गाना है सर। नाइस सॉन्ग कुमार शानू का, शफरो जल्ली। बिल्कुल काफ़ी प्यारे गाने के फरमाइश किया गया था और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सॉन्ग है चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा और मैसेज करती हैं निशा भारती। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम दिलीप जी की गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी कल्पना जी की आवाज़ में रेडियो रिमझिम 94.4 FM पर।

94 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। और अभी हम सभी गाने सुन रहे थे दिलीप जी की फरमाइश। और क्यों ऐसा किए दिलीप जी, पगली के हाल बनाकर क्यों बदल गए, क्षण भर में नहीं बदलना चाहिए था। इनके तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि क्यों रोते हो उसकी याद में, कि क्यों रोते हो उसकी याद में जो तुम्हारा था ही नहीं। आंसुओं से भरकर, आंसुओं से अगर तकदीर बदलती तो आज भी कोई मेरा भी होता। सुनो भाई नमस्कार, समीर जी की सुपर सॉन्ग। दिलीप राम जी मैसेज करते हैं, बिल्कुल काफ़ी प्यारे गाने के फरमाइश उनके तरफ से भी की गई थी। और आगे मैसेज ओहो, समीर जी की तो फरमाइश अभी आज आई ही नहीं। शुरुआती सॉन्ग जो था वो शफरोज अली जी की थी और उन्हीं के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है तो अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है निशा भारती के तरफ से, और उनके तरफ से कहा जा रहा है कि 3 दिन से मैसेज भेज रही हूँ, तीनों सॉन्ग आपके पास है, कोई भी सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो कोई तो नहीं, आज जो गाने के फरमाइश की हैं उसी गाने को हम आपको सुनाते हैं। आप सुने, इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो एमछम 94.4 FM पे। और जो भी श्रोतागण अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं वो अभी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं 7277-16-65-96 पे। जैसे आपकी मैसेज पहुंचेगी वैसे आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

कभी प्यारा संग रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम सुन रहे आप सब। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि शुक्रिया भैया गाना सुनाने के लिए। दिलीप राम जी मैसेज करते हैं, चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, मेरा भी वेलकम कीजिए और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। शबीना खातों फ्रॉम दुलिया से और कहती हैं कि तुझे चाहना मेरी आदत बन गई है, तेरे साथ जीने की चाहत बन गई है, दूर होकर भी पास रहते हो, ये मोहब्बत अब मेरी ताकत बन गई है। काफ़ी प्यारी लाइन। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक्स, इस सॉन्ग की एक्टर शांति प्रिया का लुक एंड फेस

आप भी बन रहे हैं हमारे साथ। आगे आप जब भी मैसेज करें तो अपना नाम भी बताया करें ताकि आपकी पहचान हो सके। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक्स मैसेज शामिल करने के लिए, शबीना खातून मैसेज करती हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, प्रिया कुमारी और रजोखर नवादा से मैसेज करती हैं और गाने के फरमाइश करती हैं, जेठ के दोपहर में पाँव जले हो सैया, डेडिकेट करती हैं रेडियो एमसीएम सुनने वाले और लिसनर को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एमसीएम 90.4 FM पे।

4FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सुनो भैया, मैं स्वीटी वृंदावन से और मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम सुनाएंगे। और गाने की फरमाइश करती हैं, ऐसा कोई ज़िंदगी में आए जो ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाए। बिल्कुल काफ़ी प्यारे गाने की फरमाइश है, तो आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँच रहे हैं, आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कुछ सुपर सॉन्ग थैंक्स, मैसेज करती है निशा भारती। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है

और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर, मैं सनी राज पटेल हजियापुर से और सॉन्ग सुनना है मैं तो। बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है हाय, तो आप कौन है अपना भी परिचय दें। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो सर जी, मुझे भी यही गाना सुनना है, नाम दीप्ति कुमारी घर तिवना से जुड़ गई हूँ, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कौन से गाने सुनना है आप नाम बताएं। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सोनू भैया, कैसे हैं आप, और आशा चौहान मिले सराफरा परसौनी से, तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कहते हैं कि सभी दोस्त लोग कैसे हैं, तो उम्मीद के अनुसार सब कोई ठीक ठाक ही है और कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आगे गाने को प्ले करते हैं क्योंकि काफ़ी समय निकल चुके हैं और कई मैसेज, तो आगे गाने एंजॉय किया जाए और सुना जाए। अगली फरमाइश स्वीटी जी की।

रेडियम जिम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं और आप? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा, और मैं भी शो से जुड़ गई हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए और मुझे भी सॉन्ग सुनना है। और सॉन्ग का बोल अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो, डेडिकेट आपको एंड मेरी सिस्टर हैं सब, प्रियांशी पूजा कुछ प्यारे प्यारे रेडियो दोस्त हैं, रानी रजनी, संतरा कुशवाहा, सविता चौहान, आशा चौहान, नीतू सिंह, निशा सिंह, निशा भारती, शबीना अपी गुड़िया, अपी शिल्पी सिस्टर, इरफान भैया, कमरान भैया, हरकेश भैया, समीर भैया, गुलाम भैया और दिलीप भैया, वीरेंद्र भैया और लवली भाभी एंड ऑल रेडियो फ्रेंड्स को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और इस मैसेज को करती हैं रोशनी, कहती हैं आगे काफ़ी प्यारा सॉन्ग, बिल्कुल चेहरा नहीं देखना चाहिए। ओह, काफ़ी पहले मैसेज की थी, और चलिए आगे कई मैसेज की हैं और आगे समय देखे तो काफ़ी समय निकल चुके और अंतिम समय भी, समाप्ति का भी हो चुका है, तो अंतिम गाने इन्हीं का रहेगा और इन्हीं के गाने के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। और जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है। आगे मैसेज कुछ पहुंचा और लिखा गया है बाय बाय एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू, और मैसेज करती हैं शबीना खातू। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर, मैं सनी राज पटेल। तो सनी राज जी, आज भी आपकी फरमाइश पूरी नहीं हो पा रही है, कल कोशिश रहेगा जो भी श्रोतागण आज छूट जा रहे हैं, कल छूटे हुए श्रोतागण की फरमाइश पे ध्यान दिया जाएगा और उन्हीं के स्पेशली गाने को पूरा किया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें आप सब रेडियो 94.4 FM, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

बांधी न।

0: गुजरिया है।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully?
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए

0: नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council NEC, Mr. Shah in a social media post said, "Today NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agarwood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said yoga is India's timeless gift to humanity. Virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship being held at the EK Arena in Ahmedabad, the Prime Minister said yoga unites mind, body and spirit and inspires a healthier and more harmonious world. He expressed confidence that the maiden World Yoga Championship will give Yogasan a global sports identity and open up a wide range of opportunities for the youth. Mr. Modi highlighted that every major sport brings among

0: And along its own comprehensive ecosystem. He stated that yoga, since sports expand globally, it will create significant new possibilities and career paths for athletes. The Ministry of Women and Child Development has invited women students, scholars, social activists and teachers for its internship program during August-September term. The program is open to women students, scholars, social activists and teachers who are enrolled in or associated with any university, academic or non-academic institution. The Ministry of Women and Child Development informed that women candidates in the age group of 21 to 40 years from non-tier 1 cities and rural areas of India are eligible to apply. It added that applicants are to be submitted online through the internship program portal wcd.intern.nic.in. The Bharatiya Janata Party announced that the party Manipur President Adhikari Mayum Sharda Devi will be party candidate for the upcoming Rajya Sabha election of Manipur. The party announced today that the party's prominent woman leader of Manipur will contest the lone Rajya Sabha seat of Manipur, which voting will be held on 18th June. It may be mentioned that the term of the current Rajya Sabha MP of Manipur, Leshimba Sanaja Uba, who represents the Bharatiya Janata Party, ends on 21st of June. India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Lamboria climbed to world number one in the women's 57 kg category, while Asian Championships Priya Gangas in 60 kg and Vishwanath Suresh in 50 kg. And that's the end of the news.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: दिस इज आकाश। समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रमजिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रमजिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रमजिम का आनंद ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

बताए पालमा, का बताए पालमा, चाह

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते, अनिल बात कर रहा हूँ छोटपुर से।
2: जी नमस्ते, क्या हाल चाल है अनिल जी?
1: बस बढ़िया है, आप आ गई, बाहर आ गया और इस तापमान में भी लग रहा है ठंडक आ गया।
2: ये तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
1: हाँ, एक ना आप गायब थी, मतलब सॉरी गायब नहीं कहा जा सकता, कोई कार्यवश ही बाहर थी, थोड़ा सा गलती हो गया बोलने में।
2: कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है।
1: हाँ, मान भी ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं अभी।
2: तो कोई इरादा नहीं था मेरा भी इतना दिन रहने का, लेकिन समय का कुछ कह नहीं सकते।
1: इसीलिए दो दिन कार्यक्रम में आपके जुड़े हैं लेकिन गाने का फरमाइश नहीं की।
2: चलिए कोई नहीं, आज बता दीजिए।
1: अभी तो कॉल मिला रहे थे, एक ही बार में लग गया।
2: पहला कॉल भी है आपका?
1: पहला ही है। चलिए तो और अच्छी बात है, खुशी दुगना हो गया और ये भी चमत्कार से कम नहीं है।
2: बिल्कुल, ये तो और भी बड़ा चमत्कार है कि पहला कॉल लग जाए।
1: हाँ,
2: तो बताइए,
1: गाना सुना दीजिएगा। कुमार सानू का एक गाना है, इस फिल्म कौन सा फिल्म है, कुली नंबर वन मूवी से है, क्या मजनू क्या रांझा क्या फरहान।
2: अच्छा, और गाना डेडिकेट भी है।
1: सबसे पहले आपको और सारे लिसनर्स को,
2: और आपका लल्ला का क्या हाल है?
1: लल्ला ठीक है।
2: चलिए,
1: कभी कभी से खिलाते खिलाते बोलते थे कि आपकी सोनी बुआ जो है वो पता नहीं कहाँ चली गई है।
2: अच्छा,
1: तो अब तो खिलखिलाता है, बहुत अच्छा हंसता है, अब शरारती थोड़ा थोड़ा हो रहा है।
2: कितना दिन का हुआ, 4 महीना का हुआ? तो
1: नहीं, 3 महीना हुआ अभी।
2: 3 महीना हुआ अभी, तो अब शुरू होगा। 5 महीना होते होते बच्चा तो थोड़ा हो ही जाता है।
1: हाँ, आशीर्वाद रहेगा तो सब सही है। मान लीजिए कि आप पाना क्या है, एक शुभचिंतक के रूप में ही तो आप पूछ रही हैं।
2: जी बिल्कुल
1: जी, नहीं तो आपसे तो एक रेडियो का ही दोस्ती है जो भी है।
2: सामने से तो नहीं जानते हैं, जो भी है बातचीत रेडियो पे ही है।

0: हाँ, तो जानती हैं वक्त इतना मतलब मासूमियत से निकल जाता है ना कि उसका कोई मतलब ये नहीं है। हम सोचते सोचते आज तक नहीं आए गोपालगंज।
1: कोई नहीं, जिस दिन आना होगा उस दिन खुद तो खुद आ जाइएगा, और
0: हाँ,
1: पता भी नहीं रहेगा कि आज जाना है, और आदमी जब जाना होता है तो चला ही जाता है।
0: चला ही जाता है। और ये भारती जी आई थी वो
1: आई
0: है या?
1: नहीं है अभी,
0: अच्छा
1: बोले कि
0: अच्छा
1: आज हमें रिकॉर्ड करने दीजिए, काफी दिन हुआ लिसनरों से बात किए हुए।
0: हाँ, हम भी सोच रहे थे अगर आके रिकॉर्डिंग में आप नहीं होती ना तो हम खुद कॉल करते आपको, तो
1: अच्छा,
0: तब तक आप मिल ही गई, शायद मन में था वो में आ गया,
1: बोलते हैं ना कि अगर शिद्दत से कुछ चाहो तो मिल जाता है।
0: मिल जाता है। हाँ
1: चलिए फिर बात होगी
0: ठीक है, थैंक
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल किए,
0: यू।
1: वेलकम।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टिमझिम 90.4 FM में।
0: हम रामा जी बोलते हैं ठाणे से।
1: जी, क्या हाल चाल बा रामा जी?
0: हाल चाल क्या कहा जाए, घाम जितना होता है कि पसीना से कपड़ा भींग जाता।
1: कोनो बात ना, पानी से नहाए के जगह पसीने से नहाली।
0: हाँ, वह तो कम होता, क्या कह जा। गाना सुना दी?
1: जी बिल्कुल, बता दी गाना के नाम।
0: कहे के सब कोई अपन अपन कहे वाला केहू नहीं के।
1: नहीं, वो तो बात बढ़ ले बाबी के समय ऐसा बा। तो गाना डेडिकेट भी रही,
0: जितना तो सुन जा सब कोई रही।
1: चली प्ले कर दी गाना।
0: हाँ कर दी। नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो,
2: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
4: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: गुड मॉर्निंग मैडम।
6: जी गुड मॉर्निंग।
7: रामा अंसारी बोल रहे हैं।
6: जी क्या हाल चाल है?
7: बढ़िया है, आपने सुनाइए।
6: मेरा भी बढ़िया है। तो क्या हो रहा था अभी?
7: बस सिलाई का काम करते हैं, काम हो रहा है।
6: अच्छा अच्छा, दुकान पे है अभी।
7: जी
6: जी। तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
7: हमको कुल्ली फिल्म का गाना है लम्बू जी बोलो जी। और ये गाना जितने रेडियो रिमझिम सुनने वाले श्रोता है सबको सुनाना चाहता हूँ। जो हमारे दुकान पे कारीगर काम करते हैं सब सुनेंगे।
6: जी तो प्ले करें गाना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल।
7: धन्यवाद।

0: हमारा स्पेशल इनाम।
1: हम इस लड़की से बेजार हो गए। ये लड़की घर से बार बार भाग जाती।
2: अब हमारे पास पैसा नहीं ला, तुम इसको शादी बना के लेके जाओ, ये तुम्हारा स्पेशल इनाम।
1: लंबू
2: जी

0: टिंगू जी, लंबू जी, टिंगू,
1: लंबू,
0: टिंगू, लंबू।
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी हम बनारस से रमजान
2: जी। कैसे हैं रमजान जी?
1: बढ़िया है।
2: तो क्या हो रहा था अभी?
1: जी हम लोग काम कर रहे हैं, अभी त्योहार था, अभी काम खुला है, त्योहार बीत गया, काम खुला है, काम हम लोग काम चालू कर रहे हैं रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं।
2: तो अच्छी बात है। तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
1: सुनवा दीजिए मूवी रक्षक का 100।

0: जी का
1: मूवी रक्षक था,
0: उसमें का वो गाना है कुछ कुछ।
1: अच्छा, और डेडिकेट भी करिएगा
0: जी। सबसे पहले आपको और जितने श्रोता सभी को, अपने हम भी सुनेंगे, अपने दोस्त लोग को भी साथ सुनेंगे।
1: चलिए तो प्ले करना गाना
0: जी।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो,
3: भागे भागे फिरते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो रेडियो रिमझिम
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी हेलो मोर चॉइस ने।
4: जी जी हेलो माय चॉइस में।
5: धन्यवाद बहन जी।
4: जी आप अपना नाम बता दीजिए।
5: जी मैं ग्राम जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपका नियमित श्रोता सुरित रमेश साहू बोल रहा हूँ बहन जी।
4: जी जी क्या हाल चाल है?
5: बहुत बढ़िया है बहन जी, और हम तो अभी एकदम बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है और अपने खेती बाड़ी के कार्यों में व्यस्त है बहन जी।
4: ये बढ़िया है, वो भी है।
5: और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं बहन जी कि जितने हमारे रेडियो रिमझिम के आर्य उद्घोषक भाई बहन हैं सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे, भगवान से यही प्रार्थना है।
4: धन्यवाद। तो आज गाना कौन सा सुनवा दे आपको?
5: आप कौन बोल रही हैं? आपकी आवाज जो है बहुत ही मधुर, मनमोहक, मीठी और प्रोग्राम पेश करके क्या कहने बहन जी।
4: जी मेरा नाम सोनी है।
5: सोनी बहन जी, तो आपके लिए दो लाइन की पंक्ति है, अगर इजाजत हो तो बोलूं।
4: जी बिल्कुल।
5: जी, खामोश रात के पहलू में सितारे नहीं होते, खामोश रात के पहलू में सितारे नहीं होते, इन आँखों में रंगीन नजारे नहीं होते, हम भी न करते परवाह अगर रेडियो रिमझिम से बहन सोनी जी के द्वारा पेशकश किया गया कार्यक्रम हेलो चॉइस। इतने प्यारे न होते, इतने प्यारे न होते, इतने प्यारे न होते सोनी बहन जी।
4: क्या बात है।
5: और गीत ऐसा है बहन जी, गीत तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ आपके कुछ प्रशंसक श्रोताओं का भी नाम ले लूं क्या बहन जी, इजाजत हो तो? जी, तो हमारे कन्या दमोह बालाघाट से श्रीमान धुरवा राम साहू गुरु जी है, अखिलेश यादव जी है, डोंगरिया मलाटन के मुन्ना लाल पटले जी है, मालेगांव मलाजखंड मध्य प्रदेश से हमारे बसंती बघेल बहन जी है, और हमारे सकर सोमनी जिला राजनांदगांव से नारायण लाल साहू जी है, गणेश धाम परसुली से जितेंद्र दास मानीपुरी है, आर्यन रेडियो के आप ही की तरह आरजे उद्घोषिका बहन पूनम गौतम जी है, और हमारे सागर मध्य प्रदेश से बहन जी प्रोफेसर भाई साहब हमारे चंद्रेश गौहर जी है, दुल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप है, ब्रिजेंद्र भाई विश्वकर्मा साहब जी हैं, और हमारे मुकेश नायक सर जी हैं।
4: जी
5: तो बहन जी, और गीत ऐसा है बहन जी कि हम तो आपके रेडियो रिमझिम से बहुत ही प्रेम मोहब्बत करते हैं बहन जी, तो ऐसा है कि उससे संबंधित एक गाना है, बात इतनी सी है कह दो कोई दीवानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। क्या है बहन जी, आज इंसान जो है इतनी बुद्धिजीवी है कि आज मानव जो है चांद सितारों पे पहुंच गए है बहन जी। आपको भी भगवान ने इतनी बढ़िया आवाज और इतनी बढ़िया आवाज के नेमत दे रखी है बहन जी कि आपके आवाज के माध्यम से कहां नहीं पहुंच गए बहन।
4: चलिए तो फिर बात होगी आपसे।
5: जी बहन जी।
4: जी
5: जी बहन जी, तो यह गाना यदि आपके उपलब्ध होगा या कहीं मोबाइल स्क्रीन पर निकल जाए तो जरूर सुनवाइएगा बहन जी, क्योंकि यह गाना बहुत ही भावपूर्ण गाना।
4: जी ये गाना बिल्कुल चलेगा, शाम को 5 से 7 के बीच में चलेगा और कल सुबह 9 से 11 के बीच में, ठीक है?
5: जी धन्यवाद सोनी बहन जी, आपने मेरी कॉल उठाए, कॉल रिसीव की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं रेडियो रिमझिम का सदैव दिल से आभारी हूँ बहन जी।
4: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हेलो माय चॉइस में कॉल किया।
5: धन्यवाद बहन जी।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
3: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: नमस्कार सोनी जी।
7: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं सहारनपुर से।
7: जी कैसे हैं धर्मेंद्र जी?
6: बढ़िया है।
7: तो क्या हो रहा था अभी?
6: अभी काम ड्यूटी चल रहा है।
7: अच्छा अच्छा, तो आपको कॉल रिसीव करते कैसे पता चला कि मैं ही हूँ?
6: आवाज तो पता चल गई।
7: अच्छा चलिए, फिर तो अच्छी बात है।
6: लगा था ना बीच में एक महीने के लिए हम भी घर पे गए थे, इसलिए कॉल नहीं किया। शादी था घर पे।
7: किसका शादी था?
6: भाई का शादी था 12 मई का, अभी खत्म हुआ। पहुँचा कल से ड्यूटी कर रहा हूँ।
7: चलिए बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
6: दूध का कर्ज में तो सुनवा दीजिए, तुम्हें दूध से जुदा कैसे करेंगे।
7: और सुनवाना भी है?
6: रंजीत है इधर, अपना वरुण पांडे है, रिंकू पांडे है, अपना सब सुनेंगे।
7: प्ले कर रहे हैं गाना आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माय चॉइस में कॉल की।

0: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजी में।
1: थैंक यू मैम। मैं अहमद मंजिल सड़े आवाज नंबर 1 से।
0: जी जी, क्या हाल चाल?
1: ठीक है, सनी मैम बोल रहे हैं?
0: हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं।
1: क्या हाल चाल है मैम?
0: एकदम बढ़िया। तो क्या हो रहा है?
1: आशी मैम भी काम करके वो, लेकिन आवाज से आपको पहचान दिया जाता है।
0: वही करने वाली थी, लेकिन बोले कि दीजिए आज हम बात करते हैं, थोड़ा काफी दिन हुआ लिसनर से बात
1: की है। जरूरी है
0: जी जी।
1: तो नाश्ता हुआ है?
0: हाँ जी, नाश्ता हो गया है, हम खाना खा के आए हैं।
1: लेके आई है?
0: हाँ, लेके भी आए हैं।
1: नहीं लेके आइएगा तो बोलिए, हम आएंगे।
0: बिल्कुल, हम आ जाएंगे।
1: आइए ना मैम, आइए, आपका स्वागत है।
0: जिस दिन नहीं लेके आएंगे, फुर्सत में रहेंगे तो जरूर आएंगे, ज्यादा दूर थोड़ी है।
1: आइए
0: तो गाना कौन
1: के लिए बंदा हाजिर है?
0: अच्छा जी, बिल्कुल।
1: अभी के साथ ऐसा नहीं, अकेला?
0: हाँ, वो भी तैयार है, ऐसा तो बात नहीं। आप तैयार है तो वो नहीं रहेंगे। तो बताइए, आज गाना कौन सा सुनवा दें?
1: गाना हमका सुनवा दीजिए, बेखुदी मूवी से, आए ही मेरे याद, जब होगा पूरा हाल तो देख के ये रुमाल मुझे याद करना।
0: और गाना डेडिकेट भी रहेगा
1: सबसे पहले आपको, अक्षर जी को, कमरान भाई को, दिलीप भाई को, सराहन जी को। चलिए, आप सुनाना है जो भी रेडियो जिन तरह से भी सुन रहे हैं सभी सुन रहे।
0: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
1: थैंक यू मैम, सलाम।
0: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर माय कॉल।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो,
3: भागे भागे फिरते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: मैम
4: जी, गुड मॉर्निंग,
5: कैसी हैं मैम?
4: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं?
5: मैं भी अच्छी हूँ।
4: आपकी आवाज कट रही है।
5: हेलो, बताइए।
4: सब बढ़िया है जी, आप बताइए आपके घर परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
5: सब लोग अच्छे हैं। बढ़िया।
4: आपकी आवाज कट रही है, आप थोड़े नेटवर्क वाले एरिया में जाइए।
5: हेलो
4: जी, कौन बात कर रही हैं आप?
5: मनीषा कुमारी, तरिया सुंदर।
4: अच्छा अच्छा, तो मनीषा जी आप हैं कहाँ अभी? घर के अंदर हैं, रूम में?
5: रूम में,
4: इसलिए आवाज कट रही है। दरवाजे पे चले जाइए।
5: ठीक है, बोलिए। सुनाई दे रहा है?
4: जी जी। तो क्या कर रही थी निशा जी?
5: अभी कॉल लगा रही थी, लगाते लगाते अब जाके लगा है।
4: चलिए, लग तो गया। तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
5: मैम आपका खाना पानी हो गया है कि नहीं?
4: नहीं, खाना पानी तो हो गया है, वो तो घर से ही करके आते हैं।
5: चलिए ठीक है, धूप तो बहुत तेज हुई है।
4: धूप तो हुई है, क्या करे, धूप से बचने का कोई तरीका बताइए।
5: धूप से बचने का बहुत तरीका है, चार जाना है।
4: धूप देख के तो बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है।
5: धूप होते होते घर में सब लोग चले जा रहे हैं।
4: 9 बजते कोई बाहर दिख नहीं रहा है। चलिए फिर बात होगी, बता दीजिए गाने का नाम।
5: तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ यादें आता है।
4: अच्छा, और गाना दे दीजिए, करिएगा
5: जी। मैम आपको और दिव्या मैम को और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरजे को और मेरी दीदी है उनको भी और छोटे भाई है उनको भी।
4: चलिए तो प्ले करें गाना
5: जी।
4: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल के।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone ring, they watch the head, go get the hell.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हाँ जी, योगेश जांगड़े के मैं सर 36 वर्ष से।
4: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी धन्यवाद
4: जी। क्या हाल चाल है योगेश जी?
5: बढ़िया है, अच्छा है, घर ही में है अभी।
4: अच्छा अच्छा
5: जी।
4: तो मौसम कैसा हुआ है आपके उधर?
5: मौसम तो वही धूप छाव रहता है लेकिन बारिश का इंतजार है।
4: बारिश का इंतजार तो हम लोग को भी है इधर
5: जी।
4: तो परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
5: सभी अच्छे हैं।
4: चलिए, तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
5: फिल्म ब्रह्मचारी से सुनवा देंगे, आजकल तेरे मेरे चर्चे हर जो प्यार के चर्चे हर जो बान पर।
4: जी, सबको मालूम है और सबको खबर होगी।
5: सबको खबर हो गई जी।
4: चलिए, और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
5: दीपाल गोयल जी है, लोकेन वर्मा जी है, दिलीप पहुजा जी है, रोशन देवांगन जी है, तुकाराम जी है, भगवान सिंह परमार जी है, गौतम जी है, प्रेम सिंह जी है और तमाम सब।
4: चलिए तो प्ले करे गाना
5: जी। धन्यवाद
4: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी चॉइस में कॉल किया।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।
1: पहचान गए?
0: पहचान तो रहे हैं, ठीक है, काफी दिन बाद आवाज सुन रहे हैं। तो धनेश मिश्रा।
1: हाँ हाँ जी
0: जी
1: मैम।
0: जी जी
1: कैसे हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: आज आपको मिल गया रिकॉर्डिंग करने का?
0: हाँ मिला, और हम भी बोले कि काफी दिन हुआ तो थोड़ा बात करें।
1: हाँ हाँ जरूरी भी है।
0: जी जी।
1: उनसे सारे लोग दुखी है।
0: ऐसा नहीं बोलिए, वो भी बात नहीं है।
1: नहीं तो हम क्या बोले, सब लोग तो यही बोल रहा है।
0: नहीं सब लोग नहीं, दुखी क्यों है भाई, वो उनको भी मौका दीजिए।
1: मौका दे ही रहे हैं। हाँ। बिल्कुल मौका दे रहे हैं, बिल्कुल मौका दे रहे हैं।
0: नहीं है तो थोड़ी सी हिचकिचाहट तो होगी बात करने में।
1: उनके उनके ऊपर आप थोड़ा वो करो कि सीख जाए।
0: हाँ तो वही किया जा रहा है।
1: हाँ, क्योंकि आप छुट्टी पर आएंगे तो मैम चला लें।
0: हम नहीं थे उस बीच में, वो आई हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो गई।
1: तो थोड़ी सिखाइए, ढंग से सिखाइए।
0: बता रहे हैं उनका भी ट्रेनिंग चल रहा है, बहुत जल्द आएंगी वो भी।
1: ऐसे ठीक है, हम उनकी नहीं कह रहे हैं कि वो, मैंने और सारे लोग तो बोल रहे हैं ना कि नहीं चलाती है।
0: हाँ बात ये है कि अब सबको मेरी आदत हो गई थी, अब अचानक से चेंज हुआ तो थोड़ी सी परेशानी हुई सबको। जैसे उनको भी नए लोग मिल रहे तो उनको भी परेशानी हो रही है, आप लोगों को भी है बस। और कुछ नहीं, वो भी आदत हो जाएगा उनको भी सुनते सुनते।
1: नहीं ठीक है।
0: तो बता दीजिए गाना कौन सा सुनना आज आपको?
1: मेरा तो आज एक लिकेश तबाही का गाना है। लिकेश तबाही
0: और गाना
1: और अवकाश दिखा देलू, टेड सॉन्ग है।
0: अच्छा अच्छा,
1: वही आज सुना दीजिए।
0: और डेडिकेट भी करिएगा।
1: डेडिकेट पहले नंबर तो आपको तो सुनाना ही नहीं था, लेकिन आपको ही पहले नंबर सुनाएंगे। दिव्या मैम सुनेंगी और भारती मैम भी सुनेंगी। वही आबादी सुनेंगे, सारे लोग सुनेंगे।
0: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
1: चलिए तो चलेगा ना?
0: जी बिल्कुल चलेगा।
1: चलिए ठीक है,
0: चलिए।
1: थैंक यू।
0: थैंक यू
1: मैम।
0: वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: Hello, hello, hello, hello, hello.
3: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
5: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: गुड मॉर्निंग
5: जी। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है गणेश जी?
6: अच्छा, पहचान गए क्या?
5: बिल्कुल।
6: ऐसे कहाँ भाग गए थे आप?
5: भागे नहीं थे भाई, कुछ काम था।
6: बाकी ज्यादा दिन छुट्टी हो गया, 10-15 दिन हो गया। और सब बताइए?
5: सब बढ़िया है।
6: भारती जी कहाँ पे हैं?
5: भारती जी भी यही है, दूसरा काम कर रही है।
6: तो धूप निकला है ना?
5: धूप का तो पूछिए मत।
6: खाना खा लिया है कि नहीं?
5: नहीं, खाना तो खा के ही आए हैं। घर से बिना खाए

0: मम्मी आने देगी क्या?
1: नहीं, ऐसे ही नहीं।
0: वही तो,
1: अब बड़ा दिन हो रहा है, भूख तो लगेगा।
0: हाँ तो लंच टाइम में लंच करेंगे, तो लंच भी लेके आते हैं। तो और बताइए दीदी का क्या हालचाल है? ससुराल से वापिस आई कभी घूमने के लिए?
1: घूमने के लिए तो कल आए थे, कल नहीं सोमवार के दिन।
0: अच्छा, तो एक ही दिन
1: मेरे
0: में
1: गांव
0: चली गए?
1: जो इधर मेरे गांव पर रहनी है तो वहाँ पे कलश उठाते हैं, तो वहीं पे आई थी।
0: हाँ देखे थे हम भी वीडियो में, सिवान में कहीं हुआ था।
1: बरहानी बाजार बोलता है, बरहानी बाजार,
0: वो चौरा के तरफ से गया था कल।
1: हाँ। और मेरा मम्मी भी बोल रही थी, सुनी थी हट गई क्या, मेरे को नहीं बोल रहा है, क्या पता किसके से हट गई।
0: नहीं हटेंगे तो बता के जाएंगे।
1: नहीं तो भारतीय ना, भारतीय दीदी तो उसका उतना थोड़ा बोलने के हैबिट नहीं है।
0: तो नहीं है अभी, उन लोगों को पता नहीं है, जब वो भी पहचान लेंगी तो वो भी हो जाएंगी बात करने में कॉर्ड।
1: हाँ ये सही।
0: चलिए बात बहुत हुआ जी जी।
1: अभी पर इतना भी फोन करेगी, अभी तो मशीन चला रही, कपड़ा सी रही है।
0: चलिए बढ़िया है, आप बता दीजिए गाने की फरमाइश, फिर उनसे भी बात होगी, कॉल करेंगी तो।
1: बजा दीजिए शादी का गाना, बजा दीजिए हिंदी सॉन्ग में।
0: शादी का गाना हिंदी में, तो वही आप भी बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है शादी का हिंदी।
1: अभी बजा दीजिए अपना कोई पसंद से बजा दीजिए।
0: इतने दिन बाद कॉल किए हैं, आपसे बात हो रही है, आप आज आप बता दीजिए फिर हम प्ले करेंगे।
1: मुबारक है तुमसे शादी, तुम्हारी यही गाना बजा दीजिए।
0: और डेडिकेट किसे रहेगा गाना?
1: आपको रहेगा, भारती मैम को रहेगा, करिश्मा को रहेगा, पूरा रेडियो रहेगा।
0: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना
1: जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ki hindi bajti hai to kehte hain hello.
5: Hello, hello, hello, hello, hello.
4: Bhaage bhaage phirte hain.
6: Break ke baad aap sabhi ka ek bar phir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: नमस्ते दीदी।
7: नमस्ते, क्या हाल चाल बहो करिश्मा जी?
8: ठीक बा, आप कहे?
7: हमरो बढ़िया बा।
8: का होता?
7: बस रउआ लोनी से बात होता।
8: कहाँ गए रनिया का दीदी से कि ना होता नहीं है?
7: गए रनिया कहीं घूमे फिरे।
8: हमने के पूरे के समय से भारती में कि कहाँ गए बनी तो कहीं अब वहाँ के बारे में हमने के ना पता है।
7: अब भारती में हमके कैसे पता रही क्या कि भारती में हमके भी तो बता के ना गए रनिया।
8: वही से कहते रनिया जगह दिव्या मैम निकल गई रउआ से चिपके से निकल गए रनिया
7: जी। तो हम निकल रही तो हम आवे खातिर निकल रही है, हम तो घूमे फिरे गए रनिया।
8: सफा के लिए चल गए नहीं।
7: तो सिलाई हो गई?
8: हम करता नहीं।
7: अच्छा, क्या सियत रनिया?
8: मम्मी की
7: फिलहाल। तब अब तो दीदी नहीं की तो सारा काम करे के पड़ता अकेले।
8: हाँ,
7: तब मन ना कर लगे तनी कबो कबो झगड़ा करती दीदी रहती तो
8: ना मोबाइल पे करे नहीं।
7: अच्छा, मोबाइल पे करे नहीं मैंने झगड़ा जारी बा। चली बढ़िया बा फिर एकदम नहीं छोड़े के।
8: हाँ, तो चली नहीं बेटा?
7: हाँ जी बिल्कुल चली सो।
8: लेकिन सदियम ना मैंने ठीक बा
7: जी, परेशानी रह गए को समझल करी बात के। शादी में ना आई नहीं है ती आयम कब तो आ जाए
8: भैया के शादी में आये
7: तो बराती ले जाए
8: ना लेके जाए
7: ना बहुत जगह लड़की लोग के ना ले जाला लो इसे बोलनी है
8: हम तो लेके जाए
7: अब तब हम आ जाए क्या हमारे बराती जाए में बहुत अच्छा लगे।
8: हाँ तो कोई आई ना फिर भेंट करे।
7: बिल्कुल पूरा कोशिश है। फिलहाल बता दी गाना कौन सुने के बाद?
8: गाना सुने के बाद कैसे नाम भरोसा करी प्यार के पावर पता जाने हम चढ़ गई मरे
7: मरे ला की हमरे ला
8: दोनों तरह बाटे।
7: अच्छा दोनों उतना ज्यादा नहीं की सुन ले वैसे पूछ लेनी है
8: दोनों तरह से।
7: चलिए बढ़िया बात है, गाना डेडिकेट भी रही।
8: हाँ सबसे पहले रहुआ के रही है भारती मैम के रही भैया क्या जितना सुनता नहीं लो लेकर हम।
7: चलिए तो प्ले कर दिल गाना। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल के लिए।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो प्रीमियम 94.4 FM में।
0: जी मैम, धन्यवाद। नमस्कार मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर एमपी से।
1: जी कैसे हैं सुनील जी?
0: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम, अभी हम सोचे अभी टाइम हो गए तो फोन भी लगाए मैम। हमारे यहाँ तो अभी बारिश चालू है मैम, आपके वहाँ का मौसम के क्या हाल चाल है?
1: हमारे यहाँ मौसम भी वैसे ही हुआ है बारिश जैसा, लेकिन अभी तो बारिश हो नहीं रही है।
0: जी जी जी जी
1: जी
0: तो आज एक फरमाइश है मैम, गाने के बोल है तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना, यही अब सुनवाएंगे अपने रेडियो रिमझिम, जो लोग सुनते हैं सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके चलिए, तो प्ले करे गाना।
0: ओके मैम, धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो, मैं चॉइस में कॉल किया।

0: राणा जी खबर पक्को है, वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर।

0: तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: मैया।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों
1: को। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।